मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। हेमंत कुमार का संगीत था। राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना फिल्म का नाम दुनिया झुकती है, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1960 में। और अब सुनते हैं ये संदेशात्मक गीत।

किशोर कुमार की आवाज से सजी ये सुंदर संदेशात्मक रचना अभी आपने सुनी इम्तिहान फिल्म से। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजी ये रचना अभी आपने सुनी माया फिल्म से 1961 रिलीज ये फिल्म। सलील चौधरी का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी। आइए अब ये सुनते हैं भक्ति वंदना, भक्ति रचना।

अनूप जलोटा और अनीता खंडेलवाल के स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी और अब प्रस्तुत है आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

पंडित जसराज के स्वर से सजी ये रचना आपने सुनी। ये थी आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। और अब भोर सुहानी कार्यक्रम समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

त्योहार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर वर्ष 2026 प्रातः के 5:53 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, 6:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम अर्पण। छह बजकर 44 मिनट 30 सेकंड पे आप सुन सकते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज अयोध्या कांड प्रसारित किया जाएगा साथियों, भाग 41। संस्कृत में समाचार आप सुन सकते हैं 6:55 पर, हिंदी में समाचार प्रातः 7 बजे, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:10 पर। आज सवेरे ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा प्रातः 7:30 पर। समाचार प्रभात के तहत हिंदी में समाचार सुनिएगा प्रातः 8 बजे। मॉर्निंग न्यूज के तहत अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 8:15 पर। उर्दू में खबरें प्रसारित की जाएंगी प्रातः 8:30 पर। म्यूजिकल दिल लगी ये कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 8:45 पर। हिंदी में समाचार प्रातः 9 बजे, 9:05 पर अंग्रेजी में। इसके बाद म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम जारी रहेगा। ये थी साथियों एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों की कुछ जानकारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है।

ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रार्थना में हम अक्सर अपनी इच्छाएं लेकर बैठते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब कहने को कुछ नहीं होता, बस आंखें बंद होती हैं और मन शांत। शायद उस खामोशी में भी भक्ति की अपनी एक भाषा होती है। 6:11:50 100.1 MHz FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अर्पण उर्वशी के साथ सुप्रभात।

मुताबिक बदलें, लेकिन हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। शायद ईश्वर के सामने सर झुकाने का अर्थ भी यही है कि हर चीज को नियंत्रित करने से हमें थोड़ा सा मुक्ति मिल जाए।

कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, फिर भी मन में एक विश्वास बना रहता है कि सब ठीक हो जाएगा। शायद यही विश्वास भक्ति का एक ऐसा रूप है जहां हर जवाब अभी नहीं मिलता, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत लगातार मिलती रहती है। आप सुन रहे हैं अर्पण उर्वशी के साथ 100.1 FM गोल्ड पर।

बाहर की दुनिया को बदलने में हम बहुत समय गंवा देते हैं, लेकिन मन की हलचल अक्सर वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए प्रभु के सानिध्य में कुछ पल अपने मन के साथ जरूर बिताइए। जब मन थोड़ा ठहरता है तो बहुत सी बातें अपने आप साफ साफ दिखाई देने लगती हैं।

अक्सर कहा जाता है कि दुख, कष्ट और तकलीफें हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, लेकिन हर दुख के पीछे कोई सीख हो ये ज़रूरी नहीं। कई बार दुख बस दुख होता है, लेकिन जब परिस्थिति से बचना हमारे हाथ में ना हो तब भी शायद हमारे पास

प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में श्री राम, सीता और लक्ष्मण को ग्राम तथा वन वासियों से हृदय स्पर्शी स्नेह प्राप्त हुआ। ग्राम वधुओं ने सीता जी के चरण छूकर उनकी मंगल कामना की, उन्हें आशीष दिया कि जब तक पृथ्वी कायम है उनका सुहाग बना रहे, वे पार्वती की भांति पति का प्रेम प्राप्त करें और वन से लौटते हुए इसी मार्ग से जाएं। लक्ष्मण ने जब विनीत भाव से आगे का मार्ग पूछा तो ग्रामवासियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। कर्म की गति कोई नहीं जान सका है, ऐसा मानकर वनवासियों ने उन्हें सुगम मार्ग बता दिया। स्नेह सिक्त वचन से श्री राम ने उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया। लौटते हुए स्त्री पुरुषों को ये विषाद है कि विधाता के सभी काम उल्टे होते हैं। यदि उसे इन्हें वनवास ही देना था तो व्यर्थ ही भोग विलास के साधन बनाए। व्यथित ग्रामवासी विधाता की करनी का विश्लेषण करते हैं। किसी को लगता है कि ये ब्रह्मा के बनाए न होकर अपने आप प्रकट हुए हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा इनका अनुपम रूप देखकर इन पर मुग्ध हो गया होगा और इन्हीं की छवि में स्त्री पुरुष बनाने लगा होगा, किंतु बहुत यत्न करके भी अपनी रचना को इन जैसा सुंदर नहीं बना सका होगा तो ईर्ष्यावश इन्हें वन में छिपाने की योजना बना ली।

0: करिष्यति। विदेशमन्त्रालयस्य अनुसारं एषा यात्रा भारत बेल्जियम देशयोः सहभागितां सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णम् अवसरं प्रदास्यति। सममेव व्यापार विनियोगयोः रक्षायाः सुरक्षायाश्च प्रौद्योगिक्याः नवीकरणीयोर्जायाः सम्पर्कस्य अथ प्रतिजनसम्बन्धानां च क्षेत्रेषु पारस्परिकहितस्य सहयोगमपि वर्धिष्यते। नेपालस्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहः उक्तवान् यत् गतसप्ताहे तिब्बत क्षेत्रात् भोटेकोशी नद्याः मार्गेण रसुवा प्रदेशं प्रविष्टः विनाशकारी जलाप्लावः वायुमण्डल परिवर्तनस्य परिणामः अस्ति। नेपालदेशे सहसा आगतस्य विनाशकारिणः जलाप्लावस्य कारणेन मृतानां संख्या 85,000 पर्यन्तं वर्धिता अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पुनः लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जताई।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे। उन्होंने नागरिकों से देश की प्रगति में योगदान जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां और इरादे सही हैं। देश में कच्चे तेल के बाद सोना ही ऐसी दूसरी वस्तु है जिसका सर्वाधिक आयात किया जाता है। सोने की थोक मात्रा में खरीद बंद करने से देश के कुल आयात बिल में भारी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। चीनी भंडारण की नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी स्टॉक को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता है और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी गई और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के विरुद्ध जांच जारी

0: रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे। और इसलिए आइए देशवासी, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें। हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।
1: Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains. Taking a swipe at his critics, he said some people within the country, drowned in an atmosphere of despair, are spreading the lies all around. Mr. Modi said the country's youth will see their dreams being realized through the hard work being put in today. He also called on citizens to continue contributing to the country's progress, saying the government's policies and intentions are right. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, said in a media briefing that the Prime Minister expressed concern with the ongoing conflicts in different parts of the world. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals effective from the 15th of this month till 30th of November this year. The new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability. At present, a stock holding limit of 4,000 quintals on sugar dealers across the country is effective from 1st of August this year. Under the amended provisions, a sugar dealer shall not hold any stock for a period exceeding 30 days from the date of receipt of such stock. The government said the country has adequate availability of onion and it has begun a calibrated and targeted release of buffer stocks through Kanda Express and road transport to ensure moderation of seasonal price pressures. The Consumer Affairs, Food and Public Distribution

बुधवार और हरा रंग, इन दोनों का कनेक्शन तो आपने शायद नोटिस किया होगा। कई लोग बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वैसे ग्रीन को अक्सर फ्रेशनेस और कामनेस से भी जोड़ा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे हफ्ते के बीच में कि कोई एक छोटा सा ग्रीन सिग्नल मिल गया हो कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी ग्रीन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की सुबह। गोल सुप्रभात 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं उर्वशी के साथ।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

2 सितंबर की सुबह आसमान पर बादलों की मौजूदगी और मौसम में बारिश के पूरे पूरे आसार। इस मौसम का ये टाइम कुछ ऐसा ही होता है कि बादल अचानक से घिर आते हैं और बेधड़क बरस पड़ते हैं। तो आज का मौसम थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, तो बाहर देखिए और मौसम का मिजाज समझिए और दिन की शुरुआत कीजिए म्यूजिकल दिल्लगी के साथ।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: साधुष्कर 22 मिनट और 52 सेकंड हो चुके हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल पर आप हैं उर्वशी के साथ और सुन रहे हैं गोल सुप्रभात। दोस्तों, एक ही बुक को कई लोग पढ़ सकते हैं और हर किसी को उसमें एक अलग स्टोरी दिखाई देती है। किसी को कोई करेक्टर रिलेटेबल लगता है, किसी को कोई सीन बड़ा समझ आ जाता है, कुछ पुरानी याद एकदम से ताज़ा हो जाती है जब वो सीन देखता है, और किसी को शायद उसमें कुछ भी खास फील नहीं होता। लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसे ही होती है, सिचुएशन सेम हो सकती है पर हम उसका मीनिंग अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से निकालते हैं। सो मे बी लाइफ की एक कोई फिक्स स्टोरी नहीं होती, हम सब उसे अपने अपने तरीके से पढ़ रहे होते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं इस आगे गाने की तरफ। बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म त्रिशूल से।

सवाल जवाब कुछ भी हो, मिलते रहिए, पूछते रहिए, बताते रहिए और चलते रहिए। बुधवार की सुबह प्यारा सा मौसम, मेलोडियस म्यूजिक और मस्ती भरे गानों के साथ ये जो सफ़र है वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और अब आगे सफ़र में आप सुनेंगे समाचार, समाचार सेवा प्रभाग के द्वारा। और यहाँ जो आप सुनेंगे आज सवेरे सुनेंगे, तो चलिए मैं आपसे मिलूँगी अब थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर में नहीं, 8:45 पर आपसे मिलूंगी। तब तक आप सुनिए समाचार।

0: कर्म भूमि पर चलो निरंतर, थमना यहाँ निषेध है। जीवन की हर राह कठिन है, संघर्षों का ही गेह है। आशा मत बांधो फल की, केवल कर्म तुम्हारा सत्य है। परिश्रम से ही खिलते हैं सफलता के मधुर रथ, परिश्रम से ही खिलते हैं सफलता के मधुर रथ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये ओजस्वी पंक्तियाँ हमें जीवन में कभी ना रुकने और फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा देती हैं। दिनकर कहते हैं, हमारी इस कर्म भूमि यानी इस संसार में हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ रुकना या ठहरना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। वे मानस के मन के भीतर जीवंतता की अलख जगाने के लिए कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही अटल सत्य है और सच्ची लगन और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। कर्म सिद्धांत के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात इंसान का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल के विषय में विचार करने का नहीं। तो इन्हीं सद्विचारों के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। रेणु, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड वेरी वेल सेड व्हेन यू सेड कि कर्म ही हमें करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दिस वर्स कम्स फ्रॉम भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47 वेयर लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन दैट यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज बट यू आर नेवर एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। सो विद दिस थॉट मुकेश, लेट अस बिगिन आवर डेली न्यूज मैगजीन program Aaj Savere, wherein we are going to give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 2nd of September, to all our listeners. पर उससे पहले लेट अस बिगिन विद द न्यूज फर्स्ट।
0: जी बिल्कुल।
1: सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिन्यूड हिज कॉल टू एम्ब्रेस स्वदेशी गुड्स एंड अवॉइड अननेसेसरी परचेज ऑफ गोल्ड एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स अब्रॉड। इन अ वीडियो मैसेज प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड इंडियंस टू शन लेजर ट्रिप्स अब्रॉड, अवॉइड गेटिंग मैरिड ओवरसीज एंड रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग गोल्ड अनलेस नेसेसरी।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए, और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे, और इसलिए आइए देशवासी, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखे। हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है, और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।
1: Mr. Modi also congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. Prime Minister said, India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crisis and disruptions to supply chains.
0: सरकार ने डीलरों के लिए चीनी के भंडारण की सीमा घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। पहले ये सीमा 4000 क्विंटल की थी। नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। सरकार ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य चीनी की जमाखोरी रोकना, बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना और चीनी की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखना है। डीलरों को चीनी प्राप्त होने के बाद उसे 30 दिनों से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कोलकाता और उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्रों में 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा जारी रहेगी, क्योंकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में चीनी की आपूर्ति के लिहाज से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है।
1: Of course, Mukesh, keeping prices of essential commodities under check remains a key priority. And now let us turn to another kitchen staple, onions, where the government has stepped up transportation to major markets. The government has started releasing onion buffer stocks through Khanda Express trains and road transport to control seasonal price increases. The initiative now covers 19 cities with more than 30 trucks deployed for the purpose. Two consignments from Nasik carrying 450 metric tons and 840 metric tons of onions have reached Delhi and Chennai. Around 1,000 metric tons of onions are also being transported by road to major markets. The government says onion prices have started declining and supplies are expected to improve further in the coming days. From moving essential commodities across the country, Mukesh, we now move to something that connects people in a different way. Language and technology. India and Nepal are working together to take language AI closer to local communities.
0: जी बिल्कुल, इस कड़ी में डिजिटल इंडिया भाषणी संभाग ने नेपाल में भाषा आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी लैंग्वेज AI को मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस पहल का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत और नेपाल के बीच भाषा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य में निर्धारित है। ये कार्यक्रम काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ हुए समझौता ज्ञापन पर आधारित है। इसके अंतर्गत दोनों देश स्थानीय भाषाओं और समुदायों की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक, डेटा सेट और एप्लीकेशन विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तकनीक समुदायों को जोड़ सकती है, लेकिन मजबूत परिवार पीढ़ियों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। रेणु, और इसी कड़ी में अगली खबर ऐसी है जो एक नई पहल से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य बच्चों, माता पिता और दादा दादी के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाना है।
1: Yes, coming to that, the Department of Social Justice and Empowerment has signed an MOU with Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission to strengthen bonds between children, parents and grandparents, जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। सो द इनिशिएटिव विल बी पायलटेड इन 200 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। इट विल आल्सो स्टडी फैमिली रिलेटेड चैलेंजेस एंड डेवलप 20 co-learning games for schools aimed at encouraging greater interaction and understanding among different generations।
0: और परिवारों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के बाद अब रुख करते हैं तकनीक और नवाचार के जरिए श्रमिकों के लिए नए अवसरों को मजबूत करने की दिशा में। देशव्यापी डिजिटल श्रम संकल्प हैकथॉन में भाग लेने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 18 सितंबर भी किया गया है। इस हैकथॉन का उद्देश्य ई श्रम, नेशनल करियर सर्विस और श्रम सुविधा पोर्टल 2.0 जैसे प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए तकनीक आधारित नए विचार सामने लाना है। प्रतिभागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए श्रमिक कल्याण, रोजगार सेवाओं और अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने के समाधान पेश कर सकते हैं। अब तक 1,300 से अधिक विचार इस हैकथॉन के लिए जमा किए जा चुके हैं।
1: And innovation is also driving the clean energy transition. And in the national capital, the government is taking another step to encourage households to adopt rooftop solar. The Delhi government has introduced the second amendment to its solar energy policy to promote rooftop solar installations. Under the new provision, domestic consumers using up to 400 units of electricity per month can get rooftop solar systems

0: को सब्सिडी देने का नहीं है, बिल कम करने का नहीं है, बल्कि बिजली पैदा करने वाले घर ऐसा बनाने का है। तो दिल्ली में दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घर घर सोलर पावर से जोड़ने का विजन इस पॉलिसी में हम लेकर के आए हैं। दिल्ली सरकार उसी विजन को मजबूत करते हुए दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी के तहत जो दिल्ली में सोलर के लिए जो रिकरिंग इंसेंटिव की जगह अप फ्रंट फाइनेंशियल सपोर्ट को प्राथमिकता दी जाएगी, 100% जो कॉस्टिंग है सोलर रूफटॉप लगाने की वो सरकार बियर करेगी।
1: सौर ऊर्जा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण पहल के बाद अब रुख करते हैं एक ऐसे क्षेत्र की ओर जहां पारंपरिक ज्ञान आधुनिक तकनीक के साथ एक साथ चल रहा है।
2: जी,
1: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने आयुर्वार्ता नाम से एक डिजिटल संवाद श्रृंखला भी शुरू की है। इस श्रृंखला में विशेषज्ञ आयुर्वेद आधुनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों, शोध, शिक्षा और क्लिनिकल प्रैक्टिस जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके एपिसोड की अगर हम बात करें तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस से पहले संस्थान के आधिकारिक डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
2: जी, एंड फ्रॉम हेल्थ एंड ट्रेडिशनल नॉलेज वी नाउ टर्न टू ह्यूमन राइट्स वेयर एन ऑनलाइन क्विज इज इनवाइटिंग सिटीजंस टू लर्न मोर अबाउट राइट्स, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन पार्टनरशिप विद माई गव हैज लॉन्च द ह्यूमन राइट्स क्विज 2026 अहेड ऑफ इट्स 33rd फाउंडेशन डे। द ऑनलाइन क्विज विल रिमेन ओपन अंटिल अक्टूबर 10। द टॉप 3 विनर्स विल रिसीव कैश प्राइजेस ऑफ 15,000, 10,000 and 5,000 rupees along with certificates. 7 other winners will receive consolation prizes of 2,000 rupees each.
1: और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को खेल के मैदान की ओर जहां भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी आज चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। चीन के गुआंगडोंग में चल रहे इस टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तनिषा शर्मा आज चुनौती पेश करेंगी। वहीं पुरुष डबल्स की अगर बात की जाए तो भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी अपने अभियान की आज शुरुआत करेंगे।
2: एंड फाइनली डियर लिसनर्स, वी टेक यू टू दुबई वेयर इंडियन कंपनीज आर शोकेसिंग देयर कैपेबिलिटीज इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर एनर्जी मार्केट्स। मिडल ईस्ट एनर्जी 2026 being held at the Dubai World Trade Center in the UAE till tomorrow. The event features more than 1,900 exhibitors from over 150 countries and is expected to attract over 35,000 visitors. The India Pavilion has 45 participating companies showcasing power, renewable energy, storage, electrical equipment and other technologies. The pavilion is supported by the Ministry of Commerce and Industry and coordinated by EEPC India with a focus on promoting Indian MSMEs in the international market.
1: और अब रुक करते हैं रेणु महानगरों की खबरों का। तो इस कड़ी में सबसे पहले हाल दिल्ली के समाचारों का।
2: जी,
1: तो दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज आयोजित होने वाले मोटर कार के रिहर्सल के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया है। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। इनमें सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बाराखंबा रोड सहित अन्य आसपास के रोड शामिल हैं। इसके अलावा हमने जैसे अभी बात की, सरकार प्याज की जो कीमतों हैं, कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए विभिन्न पहलें चला रही हैं, तो केंद्र सरकार ने राजधानी में प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली को 1000 मीट्रिक टन प्याज आवंटित करने का फैसला किया है। दिल्ली में उचित मूल्य वाली दुकानों पर ग्राहक 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज खरीद सकते हैं। इसके अलावा सभी 13 जिलों में उचित मूल्य की दुकानों और वैन के माध्यम से भी प्याज बेचा जाएगा।
2: एंड मोर न्यूज ऑन अनियंस इज फ्रॉम चेन्नई मेट्रो। द तमिलनाडु गवर्नमेंट विल सेल अनियंस एट 35 रुपीज पर केजी थ्रू 8,739 अर्बन राशन शॉप्स फ्रॉम टुमारो टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। अराउंड 80 लाख फैमिलीज विल बेनिफिट इन द फर्स्ट फेज विद ईच फैमिली अलाउड टू बाय 1 kg. The government has procured 1,000 tons of onions and onions are currently selling at 56 to 60 kilogram in the open market due to transport costs, bad weather and low arrivals from Maharashtra and Madhya Pradesh. Subsidized onions will also be available at

0: cooperative outlets and Amudam stores.
1: उधर मुंबई में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुले खाद्य तेल विक्रेताओं को मौजूदा कानून के अंतर्गत आवश्यक व्यवसायिक प्रक्रियाओं में बदलाव करने के लिए एक वर्ष का समय देने की घोषणा की है। इस संबंध में खाद्य और औषधि प्रशासन और व्यापारियों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। हालांकि इस अवधि के बाद कोई और विस्तार नहीं होगा और व्यवसायों को कानून का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में महाभूमि स्टैक नामक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। इससे नागरिकों को भूमि स्वामित्व और संबंधित अभिलेखों की जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी। राजस्व और वन विभाग द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म 7/12 एक्सट्रैक्ट 8A रिकॉर्ड भूमि मानचित्र म्यूटेशन रिकॉर्ड पंजीकृत लेन देन विवरण और माप संबंधी जानकारी जैसी सेवाएं प्रदान करता है। और मुंबई विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए ABC ID अपार ID अनिवार्य कर दिया है। विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरते समय अपनी वैध ABC ID अपार ID दर्ज कराना जरूरी होगा।
0: Moving on to Bengaluru, the Greater Bengaluru Authority Chief Commissioner Maheshwar Rao has ordered a compost plant at the Kalapalli Crematorium to manage floral and other waste scientifically. Officials were told to clear accumulated waste, improve footpaths and remove encroachments near SMVT railway station. A 50,000 rupee fine was imposed for waste accumulation and concrete work around trees near the Natraj Chole Bhature Cafe. Officials were also asked to clear waste along Old Madras Road and improve footpaths and road restorations in Indira Nagar.
1: उधर कोलकाता में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR पूर्वी भारत की चार प्रमुख प्रयोगशालाओं के सहयोग से IISE कॉन्क्लेव के छठे संस्करण से पहले एक मीडिया गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये सम्मेलन आज राजधानी कोलकाता में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा।
0: And the last news that I have is from Hyderabad. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy said the University of London and Northeastern University Boston plan to set up offshore campuses in Hyderabad. The announcement came after state delegations visited the UK and US to explore education, research, sports and investment partnerships. These initiatives are part of Telangana's plan to make Hyderabad a global education hub and support investment ahead of the Invest Telangana Summit in December.
1: और श्रोताओं, अब समय है इतिहास में। बात करते हैं अब आज के मौसम की। तो इधर राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उधर मुंबई में भी आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगर बात की जाए कोलकाता की तो वहां भी आज बादल छाए रहने और बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान शहर में आज न्यूनतम 26 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब बात हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम की, जिनका हाल रेणु से जानते हैं।
0: Thank you, Mukesh. Chennai is likely to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 27 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees while the maximum may reach 30 degrees Celsius. And Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 30 degrees Celsius. And now let us move on to our next segment, which is events that happened on this day in history. So let's begin with the year 1789. So dear listeners, on this day, that is the 2nd of September, the United States Department of the Treasury was officially established by the US Congress, with Alexander Hamilton appointed as its first secretary.
1: और बरस 1946 में भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का आधिकारिक तौर पर गठन भी आज ही की तारीख को किया गया था।
0: In 1960 on this day, the Central Tibetan Administration held the first election of the Tibetan Parliament in exile in Dharamshala, India, which is marked globally as the Tibetan Democracy Day, that is the 2nd ऑफ सितंबर।
1: इसके लगभग 10 बरस बाद यानी कि वर्ष 1970 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के बीच स्थित ऐतिहासिक और भव्य विवेकानंद रॉक मेमोरियल का औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा आज ही की तारीख को किया गया था।
0: एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑन 2nd ऑफ सितंबर इन द ईयर 1999 अक्लेम्ड इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर बूला चौधरी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एशियन वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल ट्वाइस।
1: और अब समय है उन महान विभूतियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिवस है
0: जी।
1: तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं विष्णु सखाराम खांडेकर की। उनका जन्म 19 जनवरी 1898 को सांगली महाराष्ट्र में हुआ। वे मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। उनके लेखों और कविताओं का प्रकाशन वर्ष 1919 से शुरू हुआ। पंडित विष्णु सखाराम खांडेकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया
0: जी। टुडे वी कैन नॉट बट थिंक ऑफ डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हु वाज अ साउथ अफ्रीकन कार्डियक सर्जन हु परफॉर्म्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाईली पब्लिसाइज्ड हार्ट ट्रांसप्लांट एंड द फर्स्ट वन इन विच द पेशेंट रीगेन्ड कॉन्शियसनेस। हिज टेक्निक सेव द लाइव्स ऑफ 10 बेबीज इन केप टाउन एंड वाज अडॉप्टेड बाय सर्जन्स इन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग जॉन Ronald Tolkien, who was an English writer, poet, philologist and academic, who is best known as the author of the classic fantasy works The Hobbit, The Lord of the Rings and The Silmarillion. And between 1951 and 1955, Tolkien applied the term legendarium to the larger part of these writings. And here, dear listeners, we are going to listen to a dialogue between Bilbo when he meets Gandalf in The Hobbit, An Unexpected Journey.
2: Good morning.
3: What do you mean? Do you mean to wish me a good morning, or do you mean that it is a good morning whether I want it or not? Or perhaps you mean to say that you feel good on this particular morning? Or are you simply stating that this is a morning to be good on?
2: All of them at once, I suppose. Can I help you?
3: That remains to be seen. I'm looking for someone to share in an adventure.
2: An adventure? Now, I don't imagine anyone west of Bree would have much interest in adventures. Nasty, disturbing, uncomfortable thing.
1: आज पुण्यतिथि है स्वतंत्रता सेनानी हबीबुर रहमान लुधियानवी की। वर्ष 1929 में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने लुधियाना के घास मंडी चौक पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग पानी के बर्तन का इस्तेमाल किया, तो हबीबुर रहमान लुधियानवी ने हिंदू, मुस्लिम और सिख कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसे खत्म किया और एक पर्चा लगवाया, सबका पानी एक, जिसके लिए उन्हें जेल भी भेजा गया था। उन्हें असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह के परिवार के सदस्यों को एक महीने तक आश्रय देने के लिए भी जाना जाता है
0: जी। एंड टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू चार्ल्स पियरी डे कुबर्टिन, हु वाज अ फ्रेंच एजुकेटर एंड हिस्टोरियन, को फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC एंड इट्स सेकंड प्रेसिडेंट। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ही वाज पर्टिकुलरली एक्टिव इन प्रमोटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट इन फ्रेंच स्कूल्स। Moving on to the birthday of a very known and popular Hollywood actor, Mukesh, we are going to talk about Keanu Charles Reeves, who is a Canadian actor, director and producer. He gained fame for his starring roles in several blockbuster films, including Point Break, Speed, the John Wick franchise, The Devil's Advocate, Constantine and The Matrix. And here, dear listeners, we're going to listen to a beautiful dialogue of this movie, The Matrix, wherein they're talking about there is no spoon and there is inner judgment over here. So let's listen into this dialogue.
4: Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth.
5: What truth?
4: There is no spoon.
5: There is no spoon?
4: Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself.
6: The Oracle will see you now.
0: And Keanu Reeves has also appeared in dramatic films such as Dangerous Liaisons, The Little Buddha and Dracula. And Mukesh, yahan par thoda sa main batana chahungi about the movie Little Buddha, wherein after

0: The prolonged and fruitless enterprises of asceticism, Gautam, who adopted the middle way, engages in yogic meditation to explore his inner self. And here in this clip that we are going to listen to, his final hindrance to enlightenment, which is nothing other than the grasping of certain truths, is portrayed. So let's listen into this.
1: You who go where no one else will dare, will you be my God? Architect, finally I have met you. You will not rebuild your house again. But I am your house, and you live in me. O Lord of my own ego, you are pure illusion. You do not exist. The earth is my witness.
2: श्रोताओं, आज जयंती है सुविख्यात अभिनेत्री साधना की. उन्होंने फिल्म अबाना से अपने फिल्मी करियर का सफर शुरू किया. साधना का पूरा नाम साधना शिवदासिनी था. वे अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी. अपने हेयर स्टाइल की वजह से अगर हम बात करें रेणु, तो साधना काफ़ी प्रसिद्ध रही थी. उनके हेयर कट को उस दौर की महिलाओं में, मतलब आज भी अगर हम देखें तो एक चर्चा का विषय माना जाता है, जिसे साधना कट के नाम से जाना गया.
0: जी.
2: उनकी अगर मुख्य फिल्मों की बात हम करें तो लव इन शिमला, मेरे महबूब, आरजू, वक्त, मेरा साया, हम दोनों, अमानत, इश्क पर जोर नहीं, गीता, मेरा नाम, और भी न जाने कितनी ही फिल्में हैं जो इस फेहरिस्त में शुमार हैं. तो आइए सुनते हैं साधना पर फिल्माए गए ये कुछ खूबसूरत से नगमे.

0: And today is the birthday of Sudeep Sanjeev, who is also known as Sudeepa, who is an Indian actor, director, producer, screenwriter, singer and television presenter, who primarily works in Kannada cinema. And here we are listening to a beautiful song picturized on Kicha Sudeepa. So let's listen into that.
1: और श्रोताओं, चलते चलते आजकल सुविचार कि कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देखता है। तो इसी सद्विचार के साथ दीजिए मुकेश और रेणु को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
0: स्टे अप ट्यून फॉर कमिंग अप समाचार प्रभात एंड फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन डियर लिसनर्स, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
3: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
2: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
3: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
3: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्य को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महान

0: नगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, ज़िरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक दल ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए DNA के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से DNA नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए DNA नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
5: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
6: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहां पर जो है उससे थोड़ा

0: खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी बड़े पदाधिकारी गए हुए हैं।
1: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है। हिंदुस्तान में है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
2: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज

0: 2021 को किया गया था। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन रायपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तीसरे जलसे तकसीम असनाद में शिरकत के लिए आज रायपुर का दौरा करेंगे। ये तकरीब इस इदारे की तालीमी सफर में एक

0: आईजीसी के ठिकानों पर ताज़ा हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, हुरमुज, जिरोफ्ट, जजीरा, कोनार्का, चाबहार और लावान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंट कॉम ने कहा है कि इसने ईरान के फौजी ठिकानों के खिलाफ हमलों का एक मरहला मुकम्मल कर लिया है, जिनमें फिजाई, दिफाई तनसीबात, बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियतें और मवासलाती मराकज समेत दीगर ठिकाने शामिल थे। इसके जवाब में ईरान के सिपाही पासदारन इनकलाब आईआरजीसी ने उर्दुन में वाकई अमरीकी फौजी कैंप टितिन पर हमला करने का दावा किया। 19 अरकान पर मुश्तमिल एक भारतीय फोरेंसिक टीम ने फोरेंसिक माहिरीन के साथ नेपाल में हालिया अचानक सैलाब से मुतासर लोगों की शिनाख्त में मदद की खातिर डीएनए सैंपल्स की जांच शुरू कर दी है। भारतीय सफारतखाना ने बताया कि इस टीम ने काठमांडू वादी के खुमलटार इलाके में नेपाल पुलिस सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तजजिए का काम शुरू किया है। भारतीय फोरेंसिक टीम की तैनाती हालिया अचानक आने वाले सैलाब के बाद नेपाल की मदद की खातिर जारी कोशिशों का हिस्सा है। नेपाल के वजीर आजम बालेन्द्र शाह ने कहा है कि पिछले हफ्ते तिब्बत से भोटेकोशी दरिया के रास्ते रसुआ में दाखिल होने वाला तबाहकुन सैलाब आबोहवा की तब्दीली के बाइस आया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने हिमालयी खित्ते के दर्ज हरारत में 1.8 डिग्री इजाफे का हवाला दिया। भारत और अमेरिका ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट के दरमियान मीटिंग के बाद अहम मादनियात पर करीबी तालमेल के साथ काम करने पर इत्तेफाक किया। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वेवर आज से भारत के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा तालुकात के तमाम पहलुओं और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई व आलमी उमूर पर बातचीत करेंगे। महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बैडमिंटन में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग सूबे के शेनजेन में शुरू होने वाले चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। आला दर्जे के खिलाड़ी सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी मर्दों के डबल्स मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने शंघाई तआवुन तंजीम के सरबरा इजलास से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के 26वें सरबरा इजलास के इनेकाद से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि दुनिया को दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वजीर आजम मोदी के इस तबसरे को भी आज के अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है कि आलमी बहरान के दौरान मुल्क की GDP में 7.8% का इजाफा हुआ, ये शहरियों की मेहनत का नतीजा है। गोवा दिल्ली फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग की खबर को इनकलाब और प्रताप समेत कई दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी मसनूआत अपनाने और गैर जरूरी तौर पर सोना खरीदने और बैरून मुल्क शादियों की तकरीबात मुनाकिद करने से गुरेज करने की अपील की है। वजीर आजम आज नई दिल्ली में जल शक्ति की वजारत के महकमा जाती इजलास के अख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। हुकूमत ने चीनी के जखीरे की हद 4000 क्विंटल से कम करके 2000 क्विंटल कर दी है। अमेरिका ने ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब आईआरजीसी के ठिकानों पर नए हमले शुरू किए। बंदर अब्बास और हुरमुज में धमाकों की आवाजें सुनी गई। भारत की फोरेंसिक टीम ने नेपाल में अचानक आने वाले सैलाब के महलुकीन की शिनाख्त के लिए डीएनए जांच शुरू कर दिया है। और भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में मुनाकिदा चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं और ऋषि के साथ म्यूजिकल दिल्ली में। और रोज की हमारी एक टू डू लिस्ट होती है, आज ये करना है वो करना है, तो हेल्दी रहना भी उसी लिस्ट का एक हिस्सा होता है जिसमें हम रोज बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करते हैं, माइंड एक्टिव रखने के लिए नए चैलेंजेस लेते हैं। तो हैप्पीनेस का भी तो एक डेली गोल होना चाहिए ना, क्योंकि ऑनेस्टली जब आप खुश रहते हैं ना तो बाकी के गोल्स अचीव करना आसान हो जाता है। तो हैप्पीनेस भी टू डू लिस्ट में एक छोटा सा टिक डिजर्व करती है ना।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आपने नोटिस किया है कभी कभी दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं और कोई कोई दिन ऐसा होता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा होता, इतना लंबा होता है, मिलते वही 24 घंटे हैं। स्पीड जो है टाइम की वो अपनी वैसी ही होती है दोनों में, पर एक फास्ट और दूसरा स्लो क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि हम कितने एंगेज हैं, कैसा फील कर रहे हैं, सिचुएशन को किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, ये हमारे टाइम के एक्सपीरियंस को बदल देता है। तो अगली बार अगर जब टाइम बहुत तेज़ या बहुत स्लो लगे ना, तो एक बार क्लॉक को नहीं, खुद को ऑब्जर्व करके देखिएगा।

जी हाँ, इन पलों को काटते काटते कभी कभी कन्वर्सेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. दो लोग एक ही बात में क्योंकि अलग चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहा होता है, दूसरा कन्फर्मेशन ढूंढ रहा होता है. अब ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि उस किसी भी बात का जवाब तुरंत देना ज़रूरी है. कभी कभी थोड़ी देर चुप रह जाना, कुछ ना कहना, किसी बात को वहीं ठहरे देना पर भी सोचा जा सकता है ना.

बुधवार की सुबह है, कुछ ना कहने से काम नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचना है और बहुत सारे काम भी निपटाने हैं, तो चलिए चलते हैं। फिलहाल अब मेरा भी चलने का समय हो गया है। रेखा रहेंगी आपके साथ, म्यूजिकल दिल्ली का सफर यूं ही जारी रहेगा। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार FM गोल्ड पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्य को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जताई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। वहीं 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया।

दोस्तों, आज की इस खूबसूरत सुबह एक बात याद रखिए, हर सुबह एक नया मौका है। कल क्या हुआ, कल किसने क्या कहा, कल कहाँ गलती हुई, ये सब कल की बात थी। वो पन्ना पलट चुका है, आज एक नया कोरा पन्ना आपके सामने है और इस पर क्या लिखना है ये सिर्फ आप तय करेंगे। हम अक्सर पूरे दिन की चिंता सुबह ही कर लेते हैं, दिन भर में क्या क्या होगा, काम होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, पर सुबह चिंता करने के लिए नहीं, खुद को तैयार करने के लिए होती है। आज सुबह बस दो काम करिए। पहला, मुस्कुराइए बिना किसी वजह के। आईने में खुद को देखकर कहिए, आज का दिन अच्छा होगा। आपकी ये मुस्कान, आपकी सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान, आपके पूरे दिन का रास्ता बदल देगी। और दूसरा, किसी का एक छोटा सा काम कर दीजिए, किसी की तारीफ कर दीजिए, घर में माँ को एक मीठी बात कह दीजिए, दोस्तों को प्यारा सा मैसेज कर दीजिए, या किसी अनजान को भी रास्ते में देखकर मुस्कुरा दीजिए, किसी एक का दिन अच्छा बना दीजिए। यकीन मानिए, जब आप किसी और की सुबह अच्छी बनाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। तो चलिए, आज के दिन को दिल से जिया जाए। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ, म्यूजिकल दिल लगेगा ये खूबसूरत सफर लेकर।

दोस्तों कहते हैं एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ देश की नींव रखती है। गर्भावस्था एक महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत पर सबसे नाजुक समय होता है। इस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है अच्छे पोषण की, आराम की और अपनेपन की। कई बार कुछ महिलाएं इस समय में भी मजदूरी करने को मजबूर होती हैं। अपने और अपने होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती इसी वजह से वो, और इसी तकलीफ को समझते हुए इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये हर गर्भवती माँ के प्रति हमारे देश का सम्मान है। एक ऐसी योजना जिसकी जरूरत हर माँ को है, हर घर को है, और उसकी हिम्मत को दिया गया एक सहारा है। तो आइए बताते हैं कि ये योजना क्या है और कैसी ये हर माँ के जीवन में खुशहाली ला सकती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY भारत सरकार की एक प्रमुख मातृत्व लाभ योजना है, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के उद्देश्यों की बात करूं तो गर्भवती महिलाओं को

गर्भावस्था के दौरान सही पोषण देना, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। और इसके अंतर्गत जो सहायता राशि मिलती है उसकी अगर मैं बात करूं तो पहले बच्चे के जन्म पर कुल 5,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में दी जाती है। अगर दूसरा बच्चा लड़की यानी बालिका है तो 6,000 की एक मुश्त जो सहायता है वो भी दी जाती है। सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार पाने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलता है। आप इस योजना के बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोर्टल पर जा सकते हैं। और अगर ऐसी कोई भी महिला आपके आसपास है या आपके परिवार में है जिसे इस योजना का लाभ मिल सकता है या इसके लिए एलिजिबल है तो फिर आपको उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें इस योजना के साथ जोड़ने के लिए आगे आना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जानने के लिए, लेकिन इस गीत के बाद।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: आज है 2 सितंबर और आज का दिन क्यों खास है ये बताऊंगी मैं आपको, लेकिन एक गीत के बाद। फिलहाल 9:27:02 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्ची रेखा, क्रिस्टल वॉइस।

मज़ा आया ना, मुझे पता है कि आप झूम रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना मन करता है कि हम झूमें नाचें गाएं, लेकिन हमारी सेहत हमारा साथ नहीं देती। और फिर हम सोचते हैं कि अरे, हमने थोड़ा टाइम से अपनी सेहत का ख्याल कर लिया होता। वैसे आपको एक बात बताऊं कि सेहत के लिए ना छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, और उन्हीं में से एक होता है कोकोनट वाटर। या फिर आप नारियल की गिरी भी खा सकते हैं। और सच बताऊं तो नारियल अपने आप में इतना खास क्यों है, चलिए यही बताने के लिए आज आपको याद दिला दूं कि 2 सितंबर है आज, और आज मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, यानी विश्व नारियल दिवस। आज इस दिन का जो विषय है वो है अनिश्चितता के दौर में नारियल, भोजन, ऊर्जा और आजीविका सुनिश्चित करना। कोकोनट इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, सिक्योरिंग फूड, एनर्जी एंड लाइवलीहुड्स। तो भाई क्या है इसके उद्देश्य, क्यों मनाया जाता है ये? दरअसल ये दिन गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य में नारियल के महत्व को उजागर करना इसका एक उद्देश्य है। और ये दिन दुनिया के सबसे उपयोगी प्राकृतिक उत्पादों में से एक के रूप में नारियल के महत्व को उजागर करता है। नारियल पानी और नारियल दूध से लेकर नारियल तेल, गुदा, उसका छिलका, खोल, नारियल का लगभग हर हिस्सा इस्तेमाल करने लायक है, उपयोगी है, और उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता भी है। सरल शब्दों में कहें तो विश्व नारियल दिवस नारियल के भोजन, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य जागरूकता, सौंदर्य उत्पादों और दैनिक जीवन में योगदान को सराहने के लिए मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो नारियल और उसके अनेक उपयोगों का जश्न मनाता है। नारियल के पेड़ को अक्सर जीवन का वृक्ष कहा जाता है क्योंकि इसके फल, पानी, तेल, पत्ते, खोल, भूसी और लकड़ी अलग अलग तरह के रूप में उपयोगी होते हैं और अलग अलग तरीके से उपयोग किए जाते हैं। नारियल का उपयोग खाना पकाने, पेय पदार्थों, पारंपरिक व्यंजनों, सौंदर्य प्रसाधनों, बालों की देखभाल, घरेलू सामान, कृषि उत्पादों और यहाँ तक कि औद्योगिक सामग्रियों में भी किया जाता है। नारियल पानी को एक ताजा पेय के रूप में भी पिया जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। नारियल का दूध उपयोग कर कई व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और नारियल तेल का इस्तेमाल खाना पकाने और व्यक्तिगत देखभाल के लिए भी किया जाता है। और इसके छिलके से रस्सियां बनाई जाती हैं, चटाइयां बनाई जाती हैं, ब्रश और कई ऐसी चीजें इससे बनती हैं। अगर मैं बात करूं इस दिन के इतिहास की तो विश्व नारियल दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था, और ये दिन एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय के नाम से जाना जाता है, इससे जुड़ा है। 2 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी समुदाय की स्थापना का ये दिन भी है। इस दिन का खास उद्देश्य है नारियल के आर्थिक, कृषि और दैनिक जीवन में महत्व को पहचानना, खास तौर से उष्णकटिबंधीय और नारियल उत्पादक क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता को पहचानना। भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और अन्य एशियाई प्रशांत देशों का नारियल उत्पादन और नारियल आधारित आजीविका से गहरा संबंध है, ये तो आप जानते ही हैं। विश्व नारियल दिवस खास है क्योंकि नारियल भोजन, कृषि, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और स्थिरता से जुड़ा है। कई तटीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नारियल के पेड़ किसानों, छोटे व्यवसायों, स्थानीय बाजारों और घरेलू जरूरतों को पूरा करते हैं। नारियल इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि इसके अलग अलग भागों का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जाता है, और खाने के लिए तो हम नारियल का इस्तेमाल करते ही हैं, पीने के लिए भी करते हैं, तेल के लिए भी करते हैं, और अगर मैं बात करूं तो सफाई में भी इसके छिलकों का जो रेशा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। खोल का जो इस्तेमाल है वो शिल्प में या फिर ईंधन के लिए किया जाता है। पत्तियों से इसकी पारंपरिक छत बनाने का काम किया जाता है। सजावट के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं, और इस पर कई जगह तो खाना भी परोसा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो आइए जीवन के वृक्ष यानी नारियल के वृक्ष और उसके अनेक उपहारों का जश्न मनाते हैं आज। नारियल हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें और भी ज्यादा देती है। भोजन से लेकर खेती तक नारियल कई तरह से जीवन को सहारा देता है। विश्व नारियल दिवस मनाते हुए हमें ये जानना चाहिए कि पेड़ कितनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। नारियल का पेड़ हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के हर हिस्से का अपना महत्व है। विश्व नारियल दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं मैं, क्योंकि आज का दिन किसानों का सम्मान करने का दिन है, फसलों को महत्व देने का दिन है और प्रकृति की रक्षा करने का दिन है। नारियल सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि उपयोगिता, लचीलेपन और स्थिरता के प्रतीक के रूप में भी इसे जाना जाता है। और भी कुछ बताऊंगी लेकिन फिलहाल आपको मेरे साथ रहना होगा इस सफर में, और ये खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाती हूं फिलहाल।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: दोस्तों सितंबर का पहला सप्ताह है ये और हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ताकि संतुलित आहार उचित पोषण और स्वस्थ जीवन शैली की आदतों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। भारत में इसे 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया था। जनता को कुपोषण से निपटने, पोषण संबंधी कमियों को रोकने और पोषण पौष्टिक भोजन को चुनने के बारे में शिक्षित करना इसका लक्ष्य है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध और किफायती खाद्य पदार्थों का उपयोग करके संतुलित पोषक तत्वों से भरपूर आहार के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य है। उचित आहार संबंधी आदतों, दीर्घकालिक स्वास्थ्य और रोग निवारण के बीच संबंध को उजागर करना भी इसका एक उद्देश्य है और सामुदायिक जागरूकता अभियान, स्कूली गतिविधियां और पोषण शिक्षा पर केंद्रित स्वास्थ्य अभियान को इसके जरिए प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ पेट भरना ही काफी नहीं है बल्कि रोजाना भोजन में कुछ तत्वों का शामिल होना भी जरूरी है। इन पोषक तत्वों की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के साथ साथ थकान, कमजोरी और कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां

हो सकती हैं। तो आइए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर जानते हैं कि शरीर को रोज किन जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है और इन्हें किन खाद्य पदार्थों से आसानी से पाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। ये मांसपेशियों, त्वचा, बालों और शरीर के ऊतकों के निर्माण और उनकी मरम्मत में खास भूमिका निभाता है। शरीर में कई एंजाइम, हार्मोन और कई जरूरी पदार्थ बनाने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। खासतौर पर बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय लोगों के लिए पर्याप्त प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी होता है। दाल, चना, राजमा, मूंग, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, अंडे, मछली, मांस प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं और शाकाहारी लोग दालों या सोया, पनीर, दूध, नट्स के जरिए प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। हेल्दी फैट भी बहुत जरूरी होता है सेहत के लिए। अक्सर लोग फैट को सेहत के लिए नुकसानदायक मानते हैं, लेकिन शरीर को सही मात्रा में वसा की भी जरूरत होती है। फैट ऊर्जा देने के अलावा शरीर में कुछ जरूरी विटामिन को अवशोषण में मदद करता है और कोशिकाओं के सामान्य कामकाज में खास भूमिका निभाता है। बादाम, अखरोट, मूंगफली, तिल, अलसी, चिया सीड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कई तरह के हेल्दी बीज होते हैं जो कि आपको हेल्दी फैट देने में काफी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की मात्रा पर भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत ज्यादा तला भुना या ट्रांस फैट वाला भोजन जो है वो नियमित रूप से खाने से बचना चाहिए। और अगर मैं बात करूं विटामिन्स और मिनरल्स की, तो विटामिन्स और मिनरल्स शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी भूमिका खास होती है शरीर के लिए। ये इम्यून सिस्टम, हड्डियों, आंखों, खून बनने में, मेटाबॉलिज्म और शरीर की कई अन्य प्रक्रियाओं को सामान्य बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि कैल्शियम हड्डियों के लिए और दांतों के लिए खास होता है, जबकि आयरन, अगर आप आयरन लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में ये मदद करता है। अलग अलग रंगों के फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, दालें, साबुत अनाज, नट्स और बीज विटामिन और मिनरल्स के अच्छे सोर्स होते हैं, तो आप इनको जरूर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अलग अलग तरह के फल और सब्जियां भी शामिल करना फायदेमंद होता है। और अगर मैं बात करूं फाइबर्स की, तो फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में खास भूमिका निभाता है। ये मल को सामान्य रखने और कब्ज की समस्या से बचाने में मदद करता है। फाइबर युक्त भोजन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ फील कराता है और इससे मदद मिलती है कि आप कम खाते हैं। फल, सब्जियां, दालें, चना, राजमा, बीन्स, साबुत अनाज, ओट्स और बाजरा या फिर कई मोटे अनाज फाइबर के लिए अच्छे सोर्स होते हैं। डाइट में फाइबर बढ़ाते समय अच्छा खासा पानी पीने की भी जरूरत होती है। रोजाना अलग अलग स्रोतों से फाइबर लेना संतुलित आहार का एक खास हिस्सा है। तो अपनी डाइट को सिर्फ दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुनगाओ तक मत रखो। कोशिश करो कि ऐसी चीजों को भी आप अपनी डाइट में शामिल करें। कभी थोड़ा फ्रूट जरूर लीजिए, नट्स लीजिए, दूध लीजिए, हरी सब्जियां, फल, सब कुछ ऐसा जरूरी है। तो जरूरत है कि जितना हम अफोर्ड कर सकें उसे हम जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। और बाकी चीज़ों को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, फैशन थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सेहत अच्छी है तो फिर किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और अपनी ही नहीं बच्चों की सेहत पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और भी कुछ खास काम की चीजें बताऊंगी मैं आपको, लेकिन गीतों के साथ साथ इस सफर में चलते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए सुनते हैं गीत।

आप चील लगे या ना लगे भाई जाना तो पड़ता है। बाहर देख रही हूँ मैं विंडो से ना, बहुत सुंदर मौसम हो गया है, बहुत मज़ेदार। तो मैं ज़रा मौसम का मज़ा लेके आऊँगी, 10:30 बजे फिर से मिलूँगी। फिलहाल एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ और 10:30 बजे आपकी पसंद के गीत भी आपको सुनवाऊँगी। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। इस गीत के बाद आप सुनेंगे समाचार। तो भाई फिलहाल तो ये गीत और मैं चली मौसम का मज़ा लेने। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं

0: अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जतलाई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की तैनाती के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच गई है और बाद में इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली NCR क्षेत्र में वितरित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंची और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। और खेलों में भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। 13 सितंबर को इस श्रृंखला का पहला मैच नई दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas and refrain from buying gold unless necessary. Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. remarks. The Prime Minister said India is progressing

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को

0: आने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और हुरमुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने पर सहमत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में विवाह आयोजन करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: श्री मोदी ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, हुरमुज, असालुवेह, ज़िरफ्त, केशम द्वीप और कोनाराक सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान पर इससे भी बड़ा आक्रमण किया जा सकता है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन के कैंप टिटिन में अमरीकी सेना की बैरकों पर हमलों की जिम्मेदारी ली। ईरान की सेना ने कहा कि उसने बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे पर तैनात अमरीकी सैन्य बलों को निशाना बनाया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिका ने ईरान के मुद्दों पर चीन और रूस के साथ गुप्त रूप से चर्चा की। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि चीन ने हुरमुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में मदद करने के लिए कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई है। बेसेंट ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक अभियान के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। बेसेंट ने कहा कि चीन इस बात से सहमत है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। चीन इस बात से भी सहमत है कि हुरमुज जलडमरू मध्य में निर्बाध समुद्री व्यापार होना चाहिए। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों का विश्लेषण शुरू कर दिया है।
3: बाढ़ के बाद नेपाल को सहायता प्रदान करने के लिए जारी प्रयासों के रूप में भारतीय फोरेंसिक दल को वहां तैनात किया गया है। नेपाल बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि अब तक 1068 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से 400 के केवल आंशिक अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के लिए कई लावारिश शवों से डीएनए नमूने

0: एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल पुलिस के अनुसार 583 विदेशी नागरिकों सहित 4600 लोग अभी भी लापता हैं, जिससे मृतकों की संख्या में और वृद्धि होने की आशंका है। रसुआ और नुवाकोट जिलों में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी गलियारों के किनारे स्थित विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं में लापता लोगों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर पांचवां भारतीय विमान रवाना हो गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक आवश्यक सामग्री है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। वे मुंबई में हीरा बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स से जुड़े क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, संपर्क तथा लोगों के बीच संबंधों सहित आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ेगा। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। कल उत्तरी कैरोलिना के एशविले में G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा भारत अमेरिका आर्थिक वार्ता के केंद्र रही। इस अवसर पर वित्त मंत्री सीतारामन ने श्री बेसेंट को इस वर्ष के अंत में भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी संबंधी बैठक के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस इस महीने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत इस वर्ष ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संगठन के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेनजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष डबल्स में खेलते नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पहला मैच 13 सितंबर को होगा, वहीं ये नई दिल्ली में मैच खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की पहचान के लिए DNA जांच शुरू की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। और भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने पर सहमत। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 10:31:05 हो चुके हैं और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। आप तो जानते हैं कि इस सफर में हम क्या करते हैं, आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाते हैं। और तरीका क्या है हम तक आपकी फरमाइशें पहुंचाने का, तो आपको बता दूं कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने मैसेजेस, अपने पसंद के गीत, अपने नाम और शहर के नाम के साथ 9868867 पर, यानी 9868867 पर। और या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmgold@gmail.com पर। एक ही चीज करिए, काफी है, fmgold@gmail.com पर आप हमें ईमेल करिए या फिर व्हाट्सएप करिए अपने मैसेजेस। लेकिन याद रहे कि एक ही मैसेज में पूरे गांव के नाम मत लिखिएगा, क्योंकि फिर मुश्किल होती है बहुत सारे नाम पढ़ने में और कुछ ना कुछ श्रोता हमारे रह ही जाते हैं। वैसे मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम पढ़ूँ, लेकिन असल बात ये है कि फिर गीत कम सुना पाती हूँ, है ना। तो कोशिश करेंगे कि नाम कम हो और गीत ज़्यादा। तो चलिए अब नामों को शामिल करते हैं। गांव खोखरावली श्रीनगर श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास और रोशनी का हमें मैसेज मिला है। महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़ का हमें मैसेज पहुंचा। सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा का और शिवानी का मैसेज हमें फरुखाबाद साहबगंज से मिला। और हमें मिला है ये मैसेज कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान का। दत्ता ढूंढ के आष्टी जालान हमें जालना और हमें ये लिख रही हैं महाराष्ट्र से। इसके अलावा हमारे पास एक बेनाम मैसेज भी पहुंचा है। हितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज लिखा है। मास्टर अशोक वर्मा जिला खरगोन सेनावत मध्य प्रदेश से, अर्चना अनुज आयुषी, रमेश चंद्र शेख मूसा भाईजान भाई राजकुमार बुड़ाना के साथ, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदी रोहित ऋतु मुकेश जगताप का मैसेज। ओम प्रकाश तेग चिंदानी ग्रेटर कैलाश से हमें लिख रहे हैं और हमें ये मैसेज पहुंचा है। अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप, राजू, रज्जन, रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना, हनी, यश, पूरे परिवार का उनके मम्मी पापा के साथ। धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिवार परिहार का भोपालगढ़ राजस्थान से, अरविंद कुमार गुड़िया, भव्या भाव्या, निवेश, नियति का हमें मैसेज पहुंचा है। बेनी पट्टी मधुबनी बिहार से, मुंबई से अनुबर जातिया, शमसुल खान, अनुराज बेनारा, ए के झा जी ने हमें लिखा है शेख अल्लाह बख्श जी के साथ, लक्ष्मण जगताप भी हैं इनके साथ मधुबनी बिहार से, मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति का हमें मैसेज मिला है। राजापुर जिला सूरजपुर से रामचंद्र गुप्ता, पांडेराम राजवाड़े का हमें काला पारा सरगुजा से मैसेज पहुंचा है। और इसके अलावा हमें ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू का मैसेज, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका, बेबी वामिका, वाणी थांदी का हमें मैसेज पहुंचा। नवा शहर पंजाब से सुरेश मालोद, वर्षा मालोद का हमें कोपर गांव से, शेव गांव से हमें श्रीराम गोंदली, उषा गोंदली का मैसेज मिला। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार ने हमें गांधी चौक बाड़मेर से लिखा है। खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिलेश चौहान, डांगरी से बाबू राम राज जयपाल का हमें मैसेज मिला है। और हमें लिखा है अफरोज शेख ने नेमुआ सुपोल बिहार से, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा का मैसेज, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और पूरे परिवार का मैसेज। और इसके अलावा उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कुरवाल, कमला रानी, गीतिका कुरवाल, भानु प्रकाश का मैसेज, और जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु का मैसेज हमें होली चौक उत्तम नगर से मिला है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, की सुतासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद पाकुड़ झारखंड से लिख रहे हैं। बोणा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत का मैसेज, उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा यादव का न्यू दिल्ली से मैसेज, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री का मैसेज,

और सुदर्शन चापल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी का मैसेज हमें पद्मा टॉकीज नेपानगर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सादीब, नाजिया अफिया, इब्राहिम सद्दाम का सहारनपुर से मैसेज। और मैसेजेस को शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक गीत शामिल कर लेती हूँ जिसकी फरमाइश हमें भेजी है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश और नियति ने, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: Leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: वेलकम बैक. 10:42 हो चुके हैं और अब जल्दी से आपके कुछ और मैसेजेस को शामिल कर लूं. मजनू का ठीला से हमें कमल बलूजा, मधु सागर का मैसेज और सतना एमपी से उमंग मलिक का मैसेज मिला है. जयराम कोरवाल, सचिन कोरवाल, अमन और दीपांशु का होली चौक से, शायद दोबारा ये मैसेज पढ़ दिया है मैंने. और इसके अलावा दीपेश वर्मा, पूनम और ज्योति शिवांश का मैसेज, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, सलीम अख्तर रेशमा बेगम अलीगढ़ से और बहादुरगढ़ हरियाणा से हमें अनिल आनंद, अरविंद चौधरी मॉडल टाउन से हमें लिख रहे हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजन, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ग्राम दुल्हापुर से हमें लिख रहे हैं, महाराष्ट्र से ये तो मैंने ले लिया, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया का मैसेज, गिडी झारखंड से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जीवियम, माल्यान, सरधना मेरठ से लिख रहे हैं, प्रदीप सलूजा ने जनकपुरी से लिखा है और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से, कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, पूजा रेखा, रघुवंशी, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा, पूवराज वानखेड़े, लक्ष्मी नारायण, भाऊ खंड से खट से. और आप थोड़ा सा नामों को अगर ऊपर नीचे करके लिखेंगे तो ज्यादा इजी होगा पढ़ना. सुरेश चौरसिया, सरोज, संजू, लला, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ. और इसके बाद ये मैसेज, बहुत सारे मैसेज हैं जो रिपीट होते हैं, तो कृपया अगर आपका नाम शामिल हो गया तो फिर आप उसे ना करें दोबारा से. अरमान गेरा, विनोद गेरा, ओल्ड राजेंद्र नगर से हमें लिख रहे हैं, बड़ा बम चौक से, खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू का मैसेज, नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवेद हसन, सुहेल, अनम, यशफ, रसीद वारसी का, महाराष्ट्र मारहरा एटा, दरवाजा एटा से, किदवई नगर, सिद्धपुरा टाउन से, जुबैर अली, सभी हांजुमन खान का मैसेज, पंकज मोहड, अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, भवपुर बसना से चंपा देवांगन, राधेश्याम, नेहा राजू, जगदीश देवांगन का मैसेज, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका का पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर से, शमसुल कमर राही, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान, अनु खान का गंजरुणवारा से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत प्रवीण, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरे परिवार का, ऊपरकोट मोहल्ला चुखुंडी से, बुलंदशहर से, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से, और मधु किरण का भवगति सोलंकी के साथ, मधुरानी, अनीता वर्मा, कौशल्या देवी, दयावती का दिल्ली से मैसेज, गंजरुणवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, अनु खान, शायद ये मैंने दोबारा पढ़ा, डॉक्टर पारुल, आद्विक, अंजलि, अनुज, राजकुमारी, अतर सिंह, भाव्या, समयपुर दिल्ली से हमें लिख रहे हैं, दिवाकर शिनॉय ने मैंगलोर से हमें लिखा है, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का मैसेज, और तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा, राहुल, रचिता, केशोरिधान खुराना का हमें गोवर्धन कॉलोनी बिहारी दिल्ली से मिला है मैसेज, और फारूक अली खान का मैसेज हमें पहुंचा, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज का मैसेज, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा का मैसेज, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस का मैसेज, जनकपुरी सहारनपुर से, और प्रकाश गोगिया ने हमें लिखा है, कहां से कुछ नहीं पता, सुधाकर राजे यादव, देशमुख, प्रशांत राजे यादव, जगुताई राजे, कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वत, कल्पना, सानवी और प्रणाली देशमुख का मैसेज जाफराबाद से, और हमें ये मैसेज पहुंचा है कृष्णा, आर्यन और पीहू स्वर्णकार का, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई, पिंकी और कृष्णा के साथ, शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली का मैसेज, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, झारखंड से. अब इससे पहले कि कुछ और मैसेजेस को शामिल करूं, एक गीत को शामिल कर लेते हैं, और ये गीत की फरमाइश हमें भेजी है ए के झा जी, शेख अल्लाह बख्श जी, लक्ष्मण जगताप ने, मधुबनी बिहार से. तो ये रहा आपकी पसंद का गीत.

जल्दी से कुछ और मैसेजेस को शामिल कर लूं। बक्सर बिहार से शफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश राहू, रमेश साहू का मैसेज, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम, दानिश अंसारी का मैसेज और श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य गोला बाजार बक्सर से, सरीमपुर बक्सर से राजेश टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। कृपया एक ही मेल में इतने मैसेजेस, इतने नाम शामिल ना करें। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, पा ढिंगिया का बागपत उत्तर प्रदेश से मैसेज, धनोरा विटाली तहसील नांदुरा महाराष्ट्र से, भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल हरिद्वार उत्तराखंड से, आजाद नगर से हमें लिख रहे हैं गुलाम साबिर राही, मिराज जहां का मैसेज मोहम्मद अंसारी के साथ, गांव फ्रांसी सार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार का मैसेज, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम हमें ओखला संगम विहार से लिख रहे हैं और कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज। और ये मैसेज हमें मिला है राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान और सौरभ शर्मा का, कहाँ से, शाइना के साथ, आदर्श नगर मलौट पंजाब से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र, नोखेलाल का, दतरेंगी से, भाटापारा से, अभिजीत गवानकर, राही, सरिता गवानकर, एकांश और अर्जुन का मैसेज डुगू के साथ, मेहर नगर, उमरखेड़ महाराष्ट्र से, नरवेल नगर महाराष्ट्र से, पीएस नाहवकर, निर्मला और विशाल नाहवकर, मलकापुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मोहरकर का मैसेज और हमें अजीत भावसार, प्रमिला और भावेश सनी ने हमें लिखा है विरमगाम गुजरात से। और इसके अलावा हमारे पास वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मैसेज, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक का मैसेज, अनारकली बाजार जगराऊ पंजाब से, मोहम्मद यासीन, नजमा बेगम, तौसीफ और कलीम अंसारी का बस्ती, नई बस्ती, गंजुंडवारा से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा का मैसेज, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से और एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल और तन्वी बोट का मैसेज, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का मैसेज। और इसके अलावा हमारे पास अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर, जफीर जरीफ का मैसेज सहारनपुर से, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष का मैसेज हमें टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, भरत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पुरुष, व्हाइट फील्ड, बेंगलुरु से हमें लिख रहे हैं, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी का मैसेज, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, दतरेंगी से, भोजपुर तगा, सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद का मैसेज। और ये हमें लिखा है प्रकाश रंभांडे, भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल रंभांडे ने नागपुर से, और मीना अग्रवाल बहादुरगढ़ से लिख रहे हैं महेश अग्रवाल के साथ, प्रताप वर्मा महावीर कॉलोनी सोनीपत से, गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा हमें हमीरपुर बुंदेलखंड से लिख रहे हैं, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, और चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, कुमार सौरभ महतो जमशेदपुर से हमें लिख रहे हैं, आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, कैफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का गंज टुंडवारा से, अशोक विद्यार्थी, मधु विद्यार्थी, दीपिका विद्यार्थी, हर्ष विद्यार्थी, हेमंत मयूर विहार फेस दिल्ली से हमें लिख रहे हैं, जगदीश कुमार, राहुल, रितिका नांगलोई से हमें लिख रहे हैं और सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, एसके पप्पी हमें ग्वालियर से लिख रहे हैं, रघुबीर नगर दिल्ली से हमें दिलावर खान साहब, मोहतरमा हसीन बानो, एलिजा नायाब और प्यारे लड्डू का मैसेज मिला है, और भी बहुत सारे मैसेज हैं लेकिन वक्त अब बहुत कम है, तो चलिए एक और गीत आप तक पहुंचाते हैं। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है किसने भेजी है भाई, ढूंढ ले थोड़ा सा, हाँ हमें लिखा है मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति ने, राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, और कालापरा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े ने। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

भाई हमारे पास सैकड़ों मैसेज होते हैं लेकिन फिर भी कुछ छूट जाते हैं। शिकायतें भी आपकी कबूल हैं, प्यार भी आपका कबूल है, लेकिन वक्त अब नहीं बचा है, तो फिलहाल के लिए मुझे लेनी होगी आपसे विदा। 11:10 पर फिर से मिलेंगे लेकर तस्वीर, लेकिन आप जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल वक्त है हिंदी अंग्रेजी समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जी

0: खरीदना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। सरकार ने प्याज की कीमतों में मौसमी बढ़ोतरी को रोकने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि 19 शहरों में खुदरा बिक्री के लिए 30 से अधिक ट्रकों को लगाया गया है। मंत्रालय के अनुसार नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच गया है। इसे दिल्ली NCR क्षेत्र के अलावा वाराणसी, चंडीगढ़ और अमृतसर भेजा गया है। मंत्रालय ने बताया है कि 840 मीट्रिक टन प्याज चेन्नई पहुंच चुका है। इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाएगा। उधर सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव मदद कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से 14-21-7-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोनाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, तेजी से हो रहे शहरीकरण और भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते हम प्रकृति की भव्यता को निहारना भूल जाते हैं। इसलिए बैकपैकर्स और यात्री इन सब से दूर सुकून पाने के लिए, प्रकृति की गोद में आराम करने के लिए बड़ी संख्या में ऐसी जगहों का रुख करते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं शांति के लिए जाना जाता है। हिल स्टेशन हो या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर प्रकृति के नजदीक आप अपने आप को महसूस कर सकें। और आज तस्वीर के इस सफर में मैं आपको ऐसी ही एक खूबसूरत जगह पर लेकर चलने वाली हूँ। 11:11:40 हो चुके हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा, क्रिस्टल वॉइस। ये है तस्वीर और आज हम तस्वीर में ले चलेंगे आपको लेह लद्दाख की तरफ। तो वही दक्षिण में विशाल हिमालय और उत्तर में काराकोरम पर्वतमाला के बीच बसा ये खूबसूरत इलाका बार बार हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। लेह लद्दाख की यात्रा आपको मनमोहक नजारों, समृद्ध परंपरा, अद्भुत संस्कृति और लजीज व्यंजनों का अनूठा संगम प्रदान करती है। क्या ये सब आपको बर्फ और धूप की इस धरती पर आने के लिए, आकर्षित करने के लिए काफी नहीं है? सब कुछ मिलेगा आपको इस जगह पर। और अगर मैं बात करूं लेह लद्दाख की, तो एक केंद्र शासित प्रदेश जो नवपाषाण काल से बसा हुआ है, जैसा कि यहाँ पाई गई नक्काशी से पता चलता है। और ये इलाका झीलों, पहाड़ों, हरी भरी भूमियों, सुंदर नीले आकाश और सुकार झील, सोमोरीरी झील और इसके अलावा पेंगोंग झील के लिए भी जाना जाता है, इन झीलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर सौंदर्य और सुरम्य घाटियों जैसे जांस्कर घाटी के बीच, हिमालय के उच्च इलाकों के बीच फैला ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है। नुब्रा घाटी, सिंधु घाटी, द्रास घाटी और बहुत कुछ है यहाँ पर। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं हिमालय के बीच कुछ समय बिताकर खुद को तरोताजा करने के लिए। आज हम यात्रा करेंगे लेह लद्दाख की, लेकिन गीतों के साथ साथ जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सफर में जिसे हम कहते हैं तस्वीर। 11:13:13 वाह, क्या खूबसूरत टाइम है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सफर।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और आज हम निकले हैं लेह लद्दाख की यात्रा पर। तो लेह एक सुंदर शहर है जो 11,550 फीट के लगभग की ऊंचाई पर स्थित है। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श गंतव्य, खूबसूरत नजारों के साथ बसा है ये लद्दाख। अपनी सुरम्य सुंदरता, अनूठी संस्कृति, बौद्ध मठों और रोमांचक साहसिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह एक पर्यटन स्थल है। लद्दाख वर्तमान में काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य हिमालय तक फैला हुआ है। लेह लद्दाख के बीच अंतर को लेकर ज्यादातर लोग लगातार भ्रम में रहते हैं। लद्दाख को दो जिलों में बांटा गया है, दरअसल जिला लेह और जिला करगिल। लेह जिले के एक लोकप्रिय शहर है और अपने खूबसूरत मठों, सुरम्य स्थानों और दिलचस्प बाजारों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा लेह लद्दाख की राजधानी भी है। लेह लद्दाख में खूबसूरत और प्रसिद्ध झीलें हैं, जिनमें पेंगोंग त्सो झील जो है वो सोमरूरी झील भी है। ये बहुत ज्यादा जानी जाती है और दूर दूर तक इनकी जो लोगों का खिंचाव है इन झीलों के लिए वो बहुत ज़्यादा है। और क्या खास है इन झीलों में अगर मैं बात करूँ तो ज़रूर बताऊँगी, लेकिन इस गीत के बाद। भाई आज है कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे, तो एक बड़ा प्यारा सा गाना मुझे याद आ रहा है, चलिए उसे भी सेलिब्रेट करते हैं। और जब घूमते घूमते प्यास लग जाए तो नारियल से बेहतर क्या होता है भाई, ये लीजिए।

अभी मैं आपको बता रही थी कि लेह लद्दाख में पेंगोंग झील है जो कि बहुत खास है। यहाँ पर लोग बहुत तादाद में घूमने के लिए आते हैं। ये लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर झील है जो लगभग 14,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका पानी नीला और खारा होता है। ये पर्यटकों से गुलजार रहने वाला स्थान है और आपको एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि इसका रंग ज्यादातर नीला रहता है लेकिन ये कभी कभी हरा और लाल भी महसूस होता है। लेह से पेंगोंग झील की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है और यहाँ से 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। नुब्रा घाटी से पेंगोंग झील की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है और यहाँ 6 से 7 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। आपको इस झील की यात्रा जरूर करनी चाहिए और यहाँ पर आप ढेर सारी तस्वीरें ले सकते हैं, यादगार पलों को संजो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सोमुरीरी झील है जो लेह से लगभग 240 किलोमीटर दूर लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित है और सोमुरीरी झील भारत की सबसे खूबसूरत और ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। अगर आप शांति और सुकून की तलाश में हैं तो इस झील के लिए आप जरूर जाइए। ये झील पहाड़ियों से घिरी है जहां बर्फ से ढके खूबसूरत पर्वत और मनोरम नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। कई तरह के पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं जैसे कि बिना सिर वाला हंस, बड़ी कलगी वाली चिड़िया, बतख, भूरे सिर वाली सीगल और हिमालयी खरगोश आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। झील के आसपास के चरागाहों में कियांग, न्यान, भेड़िया, लिंक्स आदि कई जंगली जानवर भी निवास करते हैं। और इसके अलावा एक और झील है जिसे सोकार झील के नाम से जाना जाता है, जिसे सफेद झील भी कहते हैं। लद्दाख के दक्षिणी भाग में रूपशु पठार और घाटी में स्थित है ये, और ये झील हरे भरे घास के मैदानों से घिरी है। झील का पानी खारा है और ये झील जो लेह है वहां से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। लेह से यहाँ 3 घंटे में पहुंचा जाता है। पक्षी प्रेमियों के लिए यहाँ अलग अलग तरह के पक्षी पाए जाते हैं, बड़ी संख्या में ग्रेब्स और भूरे सिर वाले गल, साथ ही कुछ धारीदार हंस, रस्ट हंस और टर्न पक्षी भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ वन्य जीव भी आप यहाँ देखने को जा सकते हैं। कियांग, तिप्ती गजेल, तिप्ती भेड़िए, कई ऐसे जानवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर समद रोकचीन का खानाबदोश समुदाय झील के आसपास तंबू में रहता है। युगजे गांव इस खानाबदोश समुदाय का मुख्य केंद्र है। तो ये झील भी अपने आप में बहुत खास है और आपको यहाँ पर भी एक बार जरूर जाना चाहिए। यह अरापसो झील है जो कि नुब्रा घाटी में डिस्किट क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर सुमुर गांव के पास है और यह अरापसो नुब्रा घाटी की सबसे पवित्र और ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। पनामिक गांव से पैदल चलकर इस पवित्र झील तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इस झील के पानी में स्नान या तैराकी बिल्कुल ना करें क्योंकि ये एक पवित्र झील है और स्थानीय लोगों द्वारा इसका बहुत सम्मान किया जाता है। पनामिक से आप अरापसो तक ट्रैकिंग कर सकते हैं, झील के आसपास के खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते हैं। चागरसो एक झील है जो कि पेंगोंग सो के रास्ते में पड़ने वाली एक छोटी और शांत झील है, इसे भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो मिरपाल सो हानेल के पास स्थित एक खूबसूरत और कम भीड़भाड़ वाली झील है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो झीलों से तो ये जगह बहुत ही गुलजार है, खूबसूरत है। आपको अपनी इस यात्रा में ज़रूर झीलों का नज़ारा करना ही चाहिए। और बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, बताऊंगी। कुछ ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी हैं, कुछ और भी अनूठी जगह हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन इस गीत के बाद।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: लेह लद्दाख की यात्रा पर निकले हैं हम और आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर और क्या क्या है घूमने के लिए। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की बात करें तो थिक्से मोनेस्ट्री, जिसे मठ भी कहते हैं, ये 12 मंजिला विशाल बौद्ध मठ है जो तिब्बत के पोटाला पैलेस जैसे दिखता है, और लेह पैलेस भी है यहाँ पर, इसे भी आप देख सकते हैं। 17वीं शताब्दी में राजा सिंगे नामग्याल द्वारा बनवाया गया था ये, और 9 मंजिला शाही महल लेह शहर को देखने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ से आपको पूरा नज़ारा देखने के लिए मिल सकता है। शांति स्तूप की बात करें तो लेह की एक पहाड़ी पर बना ये सफ़ेद स्तूप शांति और शानदार नज़ारों का प्रतीक है, आपको इसे भी ज़रूर देखना चाहिए। अगर एक और जगह की बात करूं तो मैग्नेटिक हिल यहां पर बहुत मशहूर है। यहां गाड़ियां बिना गियर के ढलान पर ऊपर की तरफ चढ़ती हैं और ऐसा लगता है कि पीछे जाने के बजाय गाड़ियां आगे क्यों जा रही हैं, तो ये एक जादुई अनुभव आपको यहां पर महसूस होता है। इसे मैग्नेटिक हिल कहा जाता है इसीलिए क्योंकि ये गाड़ियों को ढलान पर नीचे भेजने की बजाय ऊपर की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। क्या खासियत है जाएंगे तो आपको पता चलेगा। हानले डार्क स्काई रिजर्व है जो कि तारों को साफ साफ देखने और खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए एक खास जगह है, तो आपको यहां पर भी जरूर जाना चाहिए। लेह के शुष्क मार्ग बर्फबारी, ट्रैकिंग और यहां तक की साहसिक गतिविधियों के लिए दुनिया भर में पर्यटकों द्वारा लेह का दौरा किया जाता है, और लद्दाख के हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन है, तो यहां पर आपको जरूर एक बार इस जगह का नजारा लेना चाहिए। पेंगोंग झील के प्रतिबिंब का शानदार दृश्य यहां बहुत लोकप्रिय है। सुरु नदी द्रास नदी के बीच स्थित 30 मीटर लंबा बेली ब्रिज समुद्र तल से 2 मीटर के लगभग की ऊंचाई पर है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है ये भी, और इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुल को बेली ब्रिज कहा जाता है, जिसे भारतीय सेना ने साल 1982 में बनाया था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लाठू ब्रिज और युल्बू ब्रिज भी है, ये भी काफी फेमस है, इन्हें भी आपको जरूर देखना चाहिए। लेह भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। लद्दाख की नुब्रा घाटी में पाए जाने वाले ये ऊंट यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, तो इन्हें भी आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। लेह में नीली और रहस्यमयी पेंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील है। झील सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है, तो यहाँ पर इसके रोमांच का मजा भी आप ले सकते हैं। लेह के त्योहारों की बात करेंगे लेकिन इस गीत के बाद। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और 11:38 हो चुके हैं। आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त आंजी रेखा, क्रिस्टल वॉइस।

0: समझ के जाऊं पिया के देश, हो रजिया में सज धज के।
1: चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के।

0: What's possible? This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: 11:42, 40 सेकंड हो चुके हैं. ले के त्योहारों के बारे में तो जरूर बताऊंगी, लेकिन आपको इससे पहले बता दूं कि खारदुंगला पास एक जगह है यहाँ पर. ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग यानी मोटरेबल सड़क है, जहां पर मोटर जा सकती है या गाड़ियां जाती हैं. लद्दाख आने वाले अधिकांश पर्यटक इस सड़क पर मोटर बाइक का आनंद लेना चाहते हैं. चदर ट्रैक ये जनवरी में लेह में जांस्कर नदी के जमाव के बाद बहुत प्रसिद्ध है. इस ट्रैक को भारत में सबसे कठिन और दुनिया में 10 सबसे कठिन ट्रैकिंग में से एक माना जाता है. तो यहाँ पर भी आपको एक बार ज़रूर अगर जा सके तो जाना चाहिए. अगर मैं बात करूँ यहाँ पहुँचने की, तो भाई पहुँचना कैसे है ये तो पहले जान लें. लेह जो है, लेह तक बस, हवाई जहाज़, ट्रेन, सब कुछ से पहुँचा जा सकता है. लेकिन ये माना जाता है कि ट्रेन से यात्रा करना काफ़ी तकलीफदेह है, क्योंकि सबसे करीबी रेलवे स्टेशन जो है वो जम्मू तवई है, जो थोड़ा दूर है. लेह का करीबी हवाई अड्डा है कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा, जो लेह में स्थित है. और ये हवाई अड्डा दिल्ली सहित भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है. इसमें श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ और भारत के अन्य सामान्य स्थलों से भी उड़ानें हैं, जो कि आसानी से आपको मिल जाती हैं. यहां पहुंचने के बाद आप लेह पहुंचने के लिए हवाई अड्डे के बाहर से टैक्सी ले सकते हैं. लद्दाख के बाकी स्थानों तक जाने के लिए बस सेवा, टैक्सी या कैब सेवाएं उपलब्ध हैं. पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए कैब की सेवाएं लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर. लेह की ऊंचाई के कारण पर्यटकों को शुरू में सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए वहां जाने से एक दो दिन पहले यानी खुद को वहां के मौसम के अनुकूल बनाने के लिए खुद को ढाल लेना बहुत ज़रूरी है. और हाँ, जब आप किसी भी चढ़ाई वाले इलाके में जाते हैं तो यहाँ पर आपका स्टेमिना कहीं हद तक जवाब देने लगता है, क्योंकि हम प्लेन्स में चलने वालों को आदत नहीं होती थोड़ी सी भी चढ़ाई की. तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ऐसी कहीं जगह घूमने के लिए जाएं, तो थोड़ा सा वॉकिंग पर ध्यान दें. वहां जाने से पहले थोड़ा सुबह वॉक करें, अपने आप को, हेल्थ को थोड़ा फिट रखने की कोशिश करें, एक्सरसाइजेस करें, ताकि आप वहां पर जाकर हांफना शुरू ना कर दें. जब जरा सी भी चढ़ाई प्लेन वाले यानी दिल्ली वाले लोग करते हैं तो फिर हांफना शुरू हो जाते हैं. इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा स्टेमिना पहले से बना कर जाएं, थोड़ी सी आदत पहले से उठने की सुबह जल्दी, थोड़ा वॉक करने की, थोड़ा दौड़ने की, ये बनाएं और तब यहां ऐसी जगहों पर जाएं. कहीं कई जगहों पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील गंतव्य होने की वजह से फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है यहां पर. इसलिए कहीं भी जब आप तस्वीर लें तो पहले जरूर देख लें कि कोई ऐसा साइन बोर्ड ना हो जिसके चारों तरफ जिस पर लिखा हो कि फोटो लेना मनाही है इसके आसपास. तो उन इलाकों को अवॉइड करें जहां पर फोटोग्राफी मना है, क्योंकि हमें ये भी आदत है ना कि आजकल हम सेल्फीज बहुत लेते हैं. हर जगह पर हमें मोबाइल निकालने की आदत होती है और हर जगह हमें फोटो लेना होता है. लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे बॉर्डर एरियाज होते हैं या कुछ ऐसे एरियाज जहां पर फोटोग्राफी मना होती है, तो आप उन पर ध्यान दें, उन बोर्ड पर, और उसके बाद फोटोग्राफी ना करें. अब बात करूंगी मैं लेह की संस्कृति की, लेकिन इस गीत के बाद.

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: भाई लेह का सफर कर रहे हैं, लद्दाख का सफर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ूं, एक जरूरी सूचना आप तक पहुंचा दूं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 3 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। बच्चे को ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हो तो इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 8010146944। नंबर एक बार फिर से बता दूं, ध्यान से सुन लीजिए, 8010146944। जी हाँ, 8010146944। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है, तो अगर आप सक्षम हैं तो जरूर आगे आएं। और मैं आपको बता रही थी कि भाई लेह लद्दाख की संस्कृति के बारे में, तो आपको बता दूं कि तिब्बती और मध्य एशियाई परंपराओं का एक अनूठा सुंदर संगम है जो अपनी सादगी, आध्यात्मिकता और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति पर तिब्बती बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। महायान और वज्रयान परंपराओं का पालन किया जाता है यहाँ, और हेमिस और थिक्से जैसे प्राचीन मठ धार्मिक और सामाजिक जीवन के केंद्र होते हैं यहाँ पर। वेशभूषा की बात करूं तो गोंचा, जो कि पुरुष और महिलाओं के बीच एक विशेष प्रकार का ऊनी और गर्म पारंपरिक चोगा है, वो पहना जाता है और इसे गोंचा कहा जाता है। और इसके अलावा पेरक, जो कि महिलाएं सिर पर फिरोज और अन्य कीमती पत्थरों से जड़ा एक पारंपरिक आभूषण है जिसे पहनती हैं और इसे पेरक कहा जाता है। और अगर बात करें यहाँ के नृत्यों की, त्योहारों की, तो भाई हेमिस सेचू और तिब्बती नववर्ष लोसार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं यहाँ, जिनमें लामाओं द्वारा मुखोटा नृत्य किया जाता है। कथोक, चेनमो, चम और जबरो यहाँ के लोक प्रिय नृत्य हैं जो पारंपरिक संगीत दमान और सुरना के साथ किए जाते हैं। और अगर बात करूं यहाँ की कला और खेलों की, तो भाई पारंपरिक कला थांगका पेंटिंग, लकड़ी की नक्काशी और धातु शिल्प, खासकर चिलिंग गांव के बर्तन बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ पर। यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से आर्चरी यानी तीरंदाजी और पोलो बेहद शौक से खेलते हैं। और अगर बात करूँ मैं यहाँ के खान पान की, तो भाई नूडल्स, सब्जियाँ, मांस से बना गर्म सूप ठंडे मौसम में बहुत पसंद किया जाता है यहाँ पर। सांपा, भुने हुए जौ का आटा जो लद्दाख का मुख्य भोजन है, गुड़गु, गुड़ चाय यानी बटर टी जिसे कहते हैं, मक्खन और नमक मिलाकर बनाई जाने वाली खास चाय है जो कि यहाँ पर बहुत शौक से पी जाती है। और अगर बात करें खरीदारी की, तो भाई यहाँ पर आप क्या खरीद सकते हैं जल्दी से बता दूं, लेह लद्दाख से आप पश्मीना शॉल, खुबानी उत्पाद और तिब्बती हस्तशिल्प जैसी बेहतरीन चीजें खरीद सकते हैं। लेह लद्दाख में खरीदारी करने के लिए ऊनी कपड़े भी आपको आसानी से मिल जाएंगे जो यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। लद्दाख में शुद्ध और बारीकी से बुने हुए पश्मीना शॉल, मोजे, दस्ताने और पारंपरिक पोशाक गोंचा ये भी मिलते हैं, तो ये आप जरूर खरीदें। जैकेट और गर्म टोपियाँ भी यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। याक के बालों से बने बैग, जैकेट, गर्म टोपियाँ यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। सूखी खुबानी और जैम जो कि यहाँ पर दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ से आप सूखी खुबानी, खुबानी का तेल और स्वादिष्ट जैम खरीद सकते हैं। एक पहाड़ी है जिसे बने जूस को स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सिबकथॉर्न आपने बहुत नाम भी सुना होगा इसका, तो ये भी यहाँ पर मिलता है, आप इसे भी खरीद कर घर ला सकते हैं। कश्मीरी कहवा और केसर, ले के बाजारों में अच्छी गुणवत्ता का केसर और कश्मीरी कहवा आसानी से मिलता है, ये भी आप खरीद सकते हैं। थंगका पेंटिंग आप खरीद कर ला सकते हैं। सिंगिंग बॉल्स यहाँ पर मिलते हैं जो मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो मैंने कहा थंगका पेंटिंग, ये पारंपरिक सिल्क पेंटिंग होती है जो कि बौद्ध धर्म की कहानियों को दर्शाती है, ये भी आप ले सकते हैं। धातु से बने हुए मेडिटेशन बॉल्स आप खरीद सकते हैं, और इसके अलावा कई शोपीस आपको मिल जाएंगे, बौद्ध प्रार्थना के प्रेयर फ्लैग्स जैसे कि आप यहां से खरीद सकते हैं। चांदी और पारंपरिक पत्थरों के आभूषणों को आप यहां पर खरीद सकते हैं, चांदी के हार, झुमके, अंगूठियां, नक्काशीदार गो ताबीज आपको यहां पर मिल जाएंगे। कई ऐसे अर्धकीमती पत्थर, फिरोजा, मूंगा और सानी पत्थरों को भी जड़े हुए गहनों को आप यहां से खरीद सकते हैं। ले मेन मार्केट है यहां पर, जिससे आप ऐसी शॉपिंग्स कर सकते हैं हस्तशिल्प, पश्मीना या सूखे मेवे की, और इसके अलावा काफी बिजी बाजार है ये कहूं तो। तिब्बती मार्केट है, मोती मार्केट है, जहां से आप आभूषण और कई कलाकृतियां खरीद सकते हैं, चांदी के गहने, मोतियों की खरीदारी आप यहां से कर सकते हैं। लेह में ठहरने की बात करूं तो यहां पर आपको हर बजट के होटल्स और स्टेज मिल जाएंगे, आप चाहे तो लग्जरी या प्रीमियम होटल्स में रह सकते हैं। मध्यम वर्ग के 3-स्टार होटल्स भी आपको मिलेंगे, किफायती होम स्टेज और गेस्ट हाउस भी आपको यहां मिलेंगे, और सोलो ट्रैवलर्स के लिए बजट के अनुकूल यहां पर हॉस्टल्स भी हैं जो लेह के बस स्टैंड के काफी पास हैं। तो बहुत कुछ है लेह में जाने के लिए, करने के लिए, खेलने के लिए, खरीदने के लिए, और जब भी आपको वक्त मिले यहां पर पहुंच जाइए। फिलहाल क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है तो जल्दी से गीत आप तक पहुंचा देती हूं, और उसके बाद आगे क्या है जरूर बताऊंगी।

जी हाँ, इंतजार जरूर करिएगा क्योंकि मैं मिलूंगी फिर किसी रोज किसी और सफर में। लेकिन आज के लिए तो इतना ही। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती है आज के लिए आपसे विदा, लेकिन वादा रहा फिर मिले।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस द्रोम्बोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते के लिए चल रही वार्ताओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित

0: आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाव शिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरी मैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इन कंपनियों ने नकद प्रबंधन व्यवस्था एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। इन्होंने अवैध प्रेषण के माध्यम से देश से बाहर रकम भेजने में मदद की है। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कल हुई इस वर्चुअल बैठक में व्यापार को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has departed for Nepal today. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. Meanwhile, a 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. The Indian Embassy said that the team commenced the analysis at the Nepal Police Central Forensic Science Laboratory and the National Forensic Science Laboratory in the Kutmaltar area of Kathmandu Valley. According to the Nepal Police, 1,068 people have been recovered by yesterday evening, of which 400 had been only partial remains, complicating the identification process. The police said 4,606 people remain unaccounted for, including 583 foreigners, raising concerns that the death toll could increase further. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of Departmental Summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. The two-day departmental summit commenced yesterday is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The

0: घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम के आज की खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
1: और रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए
0: हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।
1: जी दोस्तों, जिस दिन को याद करके चेहरे पर मुस्कान आ जाए या किसी का कभी गहराई से महसूस होने लगे, उस दिन आप समझ लीजिए हमने अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गवाया, क्योंकि वही पल सबसे अधिक याद आते हैं जिन्होंने हमें सच्ची खुशी दी होती है। और इस सुंदर विचार के साथ शुरुआत करते हैं मंजुला आज के कार्यक्रम की।
0: बिल्कुल, और आज का दिन आस्था परंपरा और अपनत्व का सुंदर संगम है। आज मनाया जा रहा है पावन हलषष्ठी का व्रत, जिसमें माताएं अपनी संतान के सुख स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। आज भगवान बलराम जी की जयंती भी है। इन दोनों पर्वों का संदेश हमें अपनी जड़ों, अपने परिवार और प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। और आज एक और खास दिन है जो रश्मि जी बताएंगी।
1: आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की महान अदाकारा, सौम्य मुस्कान वाली अभिनेत्री साधना जी को, जिनकी आज जयंती है। उनकी सादगी, नजाकत और अभिनय, और मंजुला उनके जो साधना कट बाल,
0: क्या बात है, आज भी लोगों ने वो स्टाइल अपना रखा है
1: जी, वो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है।
0: तो साधना जी की सुनहरी यादों को नमन करते हुए सुनते हैं उनका ये बेहद खूबसूरत सा गीत।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया। और अब आज का सवाल बता दीजिए रश्मि जी।
1: जी आज का सवाल है मंजुला भाई, आपको पहले ही जानकारी है पोषण सप्ताह चल रहा है और उसी से संबंधित है आज का सवाल भाई। बेस्ट हेल्थ टिप क्या देना चाहेंगे हमारे श्रोता स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए, वो कौन सा मंत्र है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता है? तो अपने मेल हमें इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए fmgoalga@gmail.com और हमें आपके हेल्थ टिप्स का इंतजार रहेगा।
0: बिल्कुल, और आज है कोकोनट डे यानी नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस। एक ऐसा फल जो पूजा में भी सबसे पहले चढ़ता है, रसोई का स्वाद भी बढ़ाता है, सेहत का भी ख्याल रखता है और धरती को हरा भरा रखने में भी अपना योगदान देता है। जी हाँ, बात करें नारियल की और 2 सितंबर को पूरी दुनिया मनाती है विश्व नारियल दिवस।
1: भाई वाह, अगर मैं कहूँ कि नारियल का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बेकार जाता है? नहीं भाई, कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। नारियल का पानी हो, गिरी हो, दूध हो, तेल हो, छिलका हो।

0: यहाँ तक कि उसका जो कठोर जो
1: बाहर
0: शेल रहता है ना,
1: का।
0: वो भी किसी ना किसी रूप में काम आता है। तो हम तो ये कहेंगे कि ये प्रकृति का जीरो वेस्ट उपहार है।
1: और जो नारियल का जो कठोर शेल होता है, खोल होता है, वो पहले कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता था। देश के कई हिस्सों में कलाकार और छोटे उद्योग इन शेल्स से बेहद खूबसूरत और उपयोगी वस्तुएं बना रहे हैं। जैसे रश्मि जी, कॉफी या चाय के कप हो गए, कटोरियां, चम्मच, प्लांटर, कीचेन और बहुत सारे सजावटी वस्तुएं, यहाँ तक कि इको फ्रेंडली गिफ्ट्स भी। जिस चीज को हम बेकार समझते थे, वही आज प्लास्टिक का बेहतरीन विकल्प बन रहा है।
0: क्या बात है, नारियल के रेशों से यानी कॉयर से दरवाजे की चटाइयाँ, रस्सियाँ, गद्दे, ब्रश, बागवानी के लिए ग्रो बैग और पौधों के लिए जो प्राकृतिक माध्यम से तैयार किए जाते हैं वो
1: भी बने।
0: बैग्स भी बनते हैं। इससे न केवल कचरा कम होता है बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। अब जरा एक और दिलचस्प बात बताते हैं मंजुला।
1: हाँ, कि क्यों आपने ध्यान दिया होगा रश्मि जी, कि नारियल को श्री फल भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में इसे शुभ, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, और शायद यही वजह है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नारियल को फोड़कर की जाती है।
0: और अगली बार जब आपके हाथ में नारियल आए ना, तो सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं चखिएगा, उसकी पूरी यात्रा के बारे में सोचिएगा। और क्योंकि ये हमें सिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, बस उसे सही नजर चाहिए और सही उपयोग की जरूरत होनी चाहिए।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अपना देश, और अब एक ऐसी कहानी उस महान गायिका की जिनके सुर धरती की सीमाएं पार करके अंतरिक्ष तक पहुंच गए, केसरबाई केरकर की। गोवा के केरी गांव में जन्मी केसरबाई केरकर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कठिन साधना की
1: जी, और जयपुर अतरौली घराने के जो उस्ताद, उन्होंने वहां से संगीत सीखा और अपनी आवाज को ऐसी ऊंचाई दी कि आगे चलकर उनका नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। और उनकी गायकी में जो सिर्फ सुर ही नहीं थे, वर्षों की तपस्या थी। उनकी आवाज में ऐसी गहराई थी श्रोताओं, जो सीधे मन को छूती थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी असाधारण गायकी से प्रभावित होकर उन्हें सुर श्री की उपाधि दी थी, यानी सुरों की रानी।
0: बिल्कुल रश्मि जी, और आगे चलकर उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जिसने केसरबाई केरकर को सिर्फ भारत नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कहानी का हिस्सा बना दिया। साल 1977 में नासा ने वॉयजर 1 और वॉयजर 2 अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में भेजे, और इनके साथ एक विशेष गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजा गया, जिसमें पृथ्वी की ध्वनियां, भाषाएं, संगीत और मानव सभ्यता की झलक सुरक्षित की गई थी। दुनिया भर के संगीत में से भारत की ओर से जिस आवाज को चुना गया वह थी केसरबाई केरकर की। उनकी राग भैरवी की बंदिश जात कहां हो, इसके गोल्डन रिकॉर्ड में स्थान मिला।
1: और जात कहाँ हो, अभी तो और भी बाकी है उनके बारे में जानकारी। सोचिए, जिस आवाज ने सिर्फ संगीत सभाओं को मंत्रमुग्ध किया था, वही आवाज अब पृथ्वी के बाहर तारों के बीच यात्रा कर रही थी। और इत्तेफाक देखिए, उसी वर्ष 1977 में केसरबाई केरकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसी कलाकार जिसका संसार संगीत की साधना तक सीमित था, लेकिन उनके सुरों ने उस संसार को ही अनंत दिया। केसरबाई केरकर सिर्फ एक महान गायिका नहीं थी, वो एक राग थी, एक साधना थी।
0: क्या बात है, और आज वो भारत की वो आवाज है जो धरती से निकलकर आसमान के पार अनंत यात्रा पर है। तो अगली बार जब कोई भारतीय शास्त्रीय राग सुने तो याद रखिएगा, हमारे सुर सिर्फ हमारे कानों तक सीमित नहीं है दोस्तों, हमारे सुरों में इतनी शक्ति है कि वो समय में अंतरिक्ष की सीमाएं भी पार कर जाते हैं। और केसरबाई केरकर इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है। सुर थम जाए तो गीत खत्म हो जाता है, लेकिन सच्ची साधना के सुर कभी खत्म नहीं होते।

0: अभी हम सुन रहे थे वाणी जयराम को फिल्म गुड्डी से, और लगता है कि आपके सामने कुछ मेल्स पड़े हुए हैं
1: जी, जो जवाब
0: पढ़ने जा रही है
1: जी। जो प्रश्न आपने पूछा था कि भाई आप थोड़े से हेल्थ टिप्स दीजिए, तो हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, और हाँ, जो मेल आईडी है वो है fmgoldgia@gmail.com। तो नवीन भाटिया जी का ये मेल आया है, कहते हैं कि सुबह की सैर हो और सादा खान पान हो और योग का साथ रहे, तो मोतीनगर से आप बता रहे हैं।
0: और शिपाल गोयल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से लिखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमको नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित रूप से पर्याप्त पानी पीना चाहिए, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में करीब 8-10 ग्लास पानी जरूर पिए, इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी
1: जी। अफरोज शेख नेमुआ सुपौल बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं पहले तो किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन सेहत को खराब कर देती है, खुश रहो और अच्छे खाने पीने पर ध्यान दो और खुश रहकर अच्छा जीवन जी सकते हैं।
0: और चरण दास जी लिखते हैं, रश्मि जी मंजुला जी नमस्कार, और इनका कहना है पैदल घूमना, साइकिल चलाना, पानी ज्यादा पीना, खुश होकर रहना, भोजन करना, संगीत, रचनात्मक काम और एफएम गोल्ड को धन्यवाद करना
1: जी। और सुदर्शन मुखी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, कह रहे हैं कि सादा भोजन जो है वो सबका दादा भोजन है भाई, सादा खाओ और स्वस्थ हो जाओ, फास्ट फूड से रहो दूर और निरोगी रहो, रखो शरीर, और सीजनल फल सब्जी खाओ और सेहत बनाओ। भाई कुछ कुछ कविता लिख डाली है और कह रहे हैं कि आपका जीवन जो है वो शुभ हो, ऐसा भी लिख रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेल्स के लिए, तो आगे भी आप लिखते रहे, हमारा मेल आईडी फिर से नोट कर लीजिए। और हमारा क्वेश्चन भी, हमारा सवाल ये है कि आपके अनुसार कौन सा बेस्ट हेल्थ टिप हो सकता है या फिर फिटनेस टिप्स, हमारा मेल आईडी है fmgoldgia@gmail.com
1: जी। और एक और मेल हमारे पास आ गई है दिलावर खान, वो कह रहे हैं नारियल प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जिसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, जो आपने जानकारी दी थी वो सारी जानकारी उन्होंने दी है, और वो कह रहे हैं रघुवीर नगर से हमारे साथ हैं जना अब दिलावर खान साहब, मोहतरमा हसीना बानो, एलिजा नायाब और प्यारे लड्डू। वाह क्या बात है प्यारे

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म से।
1: और मंजुला, एक वादा एफएम गोल्ड का भी है अपने श्रोताओं के साथ कि भाई वो उनका रहेगा और उनके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाता रहेगा, इन्फोटेनमेंट लाता रहेगा। और ऐसी ही एक जो जानकारी है वो तुम लेकर आई हो।
0: बिल्कुल, और वो है सामाजिक शिष्टाचार। मेट्रो में, बस और जो भी सार्वजनिक जगह होते हैं उन पर तेज आवाज में मोबाइल और रील देखने की आदत बदल दीजिए। कभी मेट्रो में सफर करते हुए अचानक किसी फोन की तेज घंटी गूंजने लगती है, कभी बस में कोई पूरी आवाज पर रील चला दे, या हॉस्पिटल में प्रतीक्षालय, पार्क, रेलवे स्टेशन या बैंक की कतार में कोई बिना ईयरफोन के वीडियो देखने लगे, तो रश्मि जी कैसा लगता है?
1: ओ, मैं क्या ही बताऊं। हो सकता है वो हमें तो कुछ मिनट की बात लगी, लेकिन सोचिए वही कुछ मिनट किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा बन सकते हैं, किसी बुजुर्ग के सरदर्द की वजह बन सकते हैं, किसी माँ की गोद में सो रहे बच्चे की नींद तोड़ सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं जो पूरे दिन की थकान के बाद बस कुछ पल शांति के चाहता है।
0: बिल्कुल, और यही तो है सामाजिक शिष्टाचार। ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें एक बेहतर नागरिक बनाती है। आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा है। रील देखना, गाने सुनना या वीडियो देखना बिल्कुल सामान्य सी बात है रश्मि जी, लेकिन सार्वजनिक स्थान केवल हमारे नहीं होते, वहां हर व्यक्ति का सम्मान जो अधिकार होता है। इसलिए यदि हमें कुछ सुनना है तो ईयरफोन का उपयोग करें। अगर ईयरफोन साथ नहीं है तो आवाज इतनी धीमी रखें कि हमें सुनाई ना दे।
1: जी, और साथ में एक और अच्छी आदत यह है कि भाई यदि फोन पर बात करना बहुत जरूरी हो तो थोड़ा धीरे बोलें या बातचीत को संक्षिप्त रखें। पूरी बोगी या बस को हमारी बातचीत सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। सभ्यता का अर्थ जो होता है वो केवल बड़े बड़े आदर्श नहीं होते। मंजुला, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जो चिप्स का पैकेट, पहली बात तो मेट्रो में खाना नहीं चाहिए, लेकिन
0: ऐसे भी फूड नहीं खाना,
1: नहीं खाना चाहिए, लेकिन सफाई का अगर हम ध्यान रखें, जो अपने पैकेट्स हैं वो वापस बैग्स में रखें, गंदगी ना फैलाएं, तो हम कहेंगे ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है।
0: बिल्कुल, और याद रखिए अच्छे संस्कार केवल घर तक नहीं सीमित रहते दोस्तों, वो सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई देते हैं। हमारी एक छोटी सी सावधानी किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा सुकून बन सकती है।
1: तो फिर आज से एक छोटा सा संकल्प लें, रील देखेंगे लेकिन एयरफोन के साथ, अपनी मेट्रो को सफाई से इस्तेमाल करेंगे, साफ रखेंगे, फोन पर बात करेंगे लेकिन धीमी आवाज में, और सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों की शांति का पूरा सम्मान करेंगे, क्योंकि एक जागरूक समाज की पहचान केवल साफ सड़कें नहीं बल्कि एक साफ मेट्रो और संवेदनशील नागरिक भी होते हैं।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे

0: अभी हम सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर को फिल्म बॉबी से। और दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहां समय बताने के लिए घड़ी नहीं बल्कि सूरज की किरणें काम करती हों, कर्नाटक के चिकमंगलुरु में तुंगा नदी के तट पर 14वीं शताब्दी का श्री विद्याशंकर मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला और खगोल विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसे बस आप देखते रह जाएंगे
1: जी। और इस मंदिर के मुख्य मंडप में बने जो 12 विशाल राशि स्तंभ है वो केवल पत्थर के खंभे नहीं है दोस्तों, बल्कि ब्रह्मांड की गति से जुड़े हुए वैज्ञानिक चमत्कार है। हर सौर महीने की पहली सुबह सूरज की पहली किरण ठीक उसी राशि वाले

0: आज भी ये लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है।
1: बिल्कुल सही। और मंदिर की पूरी संरचना में गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान का ऐसा अद्भुत संगम दिखाई देता है जो ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज केवल उत्कृष्ट शिल्पकार ही नहीं बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे ज्ञाता भी थे।
0: बिल्कुल सही कहा मंजुला। और जिस एडवांस साइंस को आज दुनिया आधुनिक तकनीक का चमत्कार मानती है ना, हमारे पूर्वज सदियों पहले उन्हें पत्थरों पर उकेर चुके थे।
1: और क्या
0: जी, इसीलिए अपने गौरवशाली इतिहास को जानिए, समझिए और दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि जो सभ्यता अपने अतीत को पहचानती है ना, वही भविष्य का मार्ग भी सबसे बेहतर बनाती है।
1: और जिस धरती ने सूरज की चाल को पत्थरों में बांध दिया, उसकी विरासत पर हमें गर्व नहीं, उसे जानने और सहेजने का संकल्प भी होना चाहिए। इतिहास सिर्फ बीते पल की कहानी नहीं होता, वो आने वाली पीढ़ियों के आत्मविश्वास की नींव भी होता है।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म दिल ने फिर याद किया। और रश्मि जी, अगर अपने शौक को एक लाइफ स्किल में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा? अपने
1: अच्छा
0: हुनर
1: रहेगा।
0: को अपनी ताकत में बनाइए। अक्सर हम अपने शौक को बस खाली समय बिताने का जरिया समझते हैं। किसी को लिखना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है और किसी को तस्वीरें खींचना पसंद है, तो किसी को कैमरे के सामने बोलना पसंद है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही शौक आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? क्योंकि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर इंसान के भीतर जन्म से मौजूद हो। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है जब हम कुछ सीखते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर भी कोशिश जारी रखते हैं।
1: तो आज बात करते हैं अपने शौक को जीवन कौशल में बदलने की। मान लीजिए आपको लिखने का शौक है, तो भाई डायरी लिखना शुरू कीजिए। रोज अपने विचार जो है वो शब्दों में उतारिए। धीरे धीरे आपकी भाषा, आपकी सोच और अपने

0: जो है वो व्यक्त करने की क्षमता आप देखेंगे कि बेहतर हो रही है, और
1: बिल्कुल
0: यही शौक आगे चलकर संवाद कौशल भी बन सकता है,
1: कम्युनिकेशन स्किल। बिल्कुल, अगर आपको कैमरे के सामने बोलना अच्छा लगता है तो अपने छोटे छोटे वीडियो बनाइए, शुरुआत में अपनी आवाज और चेहरे को देखकर थोड़ी सी झिझक होगी, लेकिन धीरे धीरे वही कैमरा आपका डर कम करेगा और बोलने का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। खाना बनाने का शौक है कोई बात नहीं, नई विधियां सीखिए, अपने हाथों से कुछ नया बनाइए और परिवार या दोस्तों के लिए परोसिए।
0: और अगर तस्वीरें खींचने का शौक है तो केवल तस्वीरें मत खींचिए, उनकी कहानी भी समझिए। किसी जगह, किसी व्यक्ति या प्रकृति को एक अलग दृष्टि से देखना सीखिए, इससे आपकी रचनात्मक सोच भी मजबूत होगी। और अगर आपको कोई वाद्य यंत्र सीखने का मन है, नृत्य करने का मन है या कोई नई कला सीखने का शौक है तो उसे मनोरंजन तक सीमित मत रखिए। नियमित अभ्यास आपको अनुशासन सिखाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शौक में हमेशा थोड़ी सी चुनौती जोड़िए, जो आज थोड़ा सा कठिन लगता है उसे ही अपना लक्ष्य बनाइए। जब तक आत्मविश्वास नहीं बनता ना, तब तक हमें थोड़ा सा डर लगता है। आत्मविश्वास तब बनता है जब हम डर के बावजूद कहते हैं चलो कोशिश करके देखते हैं।
1: तो अगली बार जब कोई पूछे कि आपकी हॉबी क्या है, आपका शौक क्या है, तो सिर्फ ये मत बताइए कि आपको क्या करना पसंद है, ये भी सोचिए कि आपका शौक आपको क्या सिखा रहा है। और याद रखिए, छोटी छोटी सफलताएं ही बड़े आत्मविश्वास की नींव रखती है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, किसी कठिन काम को पूरा करते हैं या असहज होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद को एक संदेश देते हैं कि हाँ, यह मैं कर सकती हूं।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म कारवां से, और लगता है फिर से मेल्स पे नजर है रश्मि जी की।
1: जी, बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश कुमार खयाला से, वो कह रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए ताजे फल और सब्जियां और पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, और साथ में कह रहे हैं हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और साथ ही कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मनदीप भिवानी जिले हरियाणा से, वो कह रहे हैं मैं आपके हेल्थ शो के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े कुछ अच्छी सलाह और टिप्स जानना चाहता हूँ। वो जानना चाहते हैं हमसे, मेरा उद्देश्य सप्ताह में लगभग 5 दिन रनिंग और व्यायाम करना, स्वस्थ और संतुलित भोजन लेना, खुश रहना और अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिताना है। वो चाह रहे हैं कि हेल्थ शो के माध्यम से हम बताएं उन्हें कि भाई सप्ताह में 5 दिन रनिंग करना क्या उचित है, और रनिंग के साथ किस प्रकार का स्वस्थ भोजन लेना चाहिए, और अन्य बातें जानना चाह रहे हैं। तो जरूर हम लोग कोशिश करेंगे जो आपका जी ये हाँ कि इस तरह की जो कार्यक्रम है ऐसा आपके लिए हेल्थ शो जरूर लेकर आए।
0: जी बिल्कुल। तो चलिए बात करते हैं कुछ ब्यूटी मिथ्स की। सुंदर दिखना किसे पसंद नहीं, लेकिन सुंदर दिखने की चाह में हम कई बार ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं जो सच नहीं, सिर्फ भ्रम होती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे जो मिथ्स हैं उसका सच।
1: भाई सब लोग जानते हैं, सोचते हैं कि महंगे प्रसाधन ही अच्छे होते हैं। सच तो ये है कि किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता उसकी कीमत से नहीं होती, बल्कि जो उसमें पदार्थ डाले जाते हैं, सामग्री डाली जाती है, आपकी त्वचा की जो जरूरत है उससे तय होती है। कई बार ना साधारण और सही उत्पाद भी ना बहुत कमाल कर जाते हैं दोस्तों।
0: और एक मिथ और है कि एंटी रिंकल क्रीम झुर्रियां मिटा देती है। सच तो ये है कि ऐसी क्रीम त्वचा को कुछ समय के लिए सॉफ्ट बना देती है, लेकिन बढ़ती उम्र को रोकना या रिंकल्स को पूरी तरह से मिटा देना संभव नहीं है। सफेद बाल फिर से हमेशा के लिए काले हो सकते हैं। जी हाँ, ये भी गलत है। अगर बाल उम्र, अनुवांशिक कारणों या मेलेनिन की वजह से सफेद हुए हैं, तो आज तक ऐसा कोई प्रामाणिक उपाय नहीं है जो उन्हें स्थायी रूप से फिर से काला कर सके।
1: हाँ, और एक और जो गलत फहमी है वो ये है कि त्वचा का रंग बदला जा सकता है। भाई वास्तव में आपकी प्राकृतिक जो त्वचा है उसका रंग आपके जीन्स तय करते हैं। सही देखभाल से धूप के कारण आई जो लालिमा है, जो कालिमा है, वो कम हो जाती है। लालिमा तो भाई आपका जो हीमोग्लोबिन से आती है, और जो त्वचा स्वस्थ और दमकती दिखाई देती है, लेकिन उसका जो मूल रंग है ना दोस्तों, वो नहीं बदला जा सकता। बालों की जो बनावट है वो हमेशा के लिए बदली जा सकती है। ये भी एक जो है गलत फहमी है। और घुंघराले बालों को हमेशा के लिए, सीधे या सीधे बालों को हमेशा के लिए घुंघराले बनाना बिल्कुल संभव नहीं है। और जो आप रासायनिक उपचार वगैरह कराते हैं ना, वो सिर्फ कुछ समय तक असर दिखाते हैं। नए उगने वाले जो बाल हैं वो अपनी प्राकृतिक बनावट के साथ ही आते हैं।
0: और इसीलिए किसी मैजिकल प्रोडक्ट के पीछे भागने से बेहतर है अपने शरीर को भीतर से मजबूत बनाइए, स्वस्थ बनाइए, क्योंकि असली सुंदरता वही है जो अच्छे स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और मुस्कान से झलकती है।

0: अभी हम सुन रहे हैं लता मंगेशकर और येसुदास को फिल्म त्रिशूल से।
1: जी, और इस गीत के साथ ही आज के इस सफर को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।
0: तो दीजिए मंजिला और
1: रश्मि कुकरेती को इजाजत।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्डिस दोम्ब्रोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों के बचाव दल, विशेष उपकरणों और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह

0: और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली एनसीआर में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक अदाकारा जिनके खूबसूरत चेहरे और मासूम अदाओं और उनके यूनिक हेयर कट ने पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया। आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है साधना की। कलाकार बेमिसाल लेकर आपके साथ है रजनी। शो की शुरुआत करते हैं एक मुसाफिर एक हसीना के गीत के साथ। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

बहुत से लोगों को ये बात पता होगी कि साधना सबसे पहले श्री 420 के एक गाने मुड़ मुड़ के ना देख में बैकग्राउंड डांसर के रूप में दिखाई दी थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि 1958 में आई फिल्म तलाक में भी एक गीत में वो दिखी थी। ये गीत था मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले। ये पूरा का पूरा गीत साधना पर ही फिल्माया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने खूबसूरत चेहरे पर इस गीत में एक बार भी फोकस नहीं किया गया। पूरा का पूरा गाना जो था वो लॉन्ग शॉट में फिल्माया गया, और दूर से देखने पे बहुत ही कम लोगों को ये पता चला होगा बाद में भी कि ये जो हीरोइन है जिन पर ये गीत फिल्माया गया है वो दरअसल साधना है। और लीजिए अगला गीत हमने चुना है साधना की एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म मेरे महबूब से। आवाज है लता मंगेशकर की।

0: इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक जरूरी सूचना। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 3 साल के बच्चे को अतिशीघ्र खून की आवश्यकता है। बच्चे को ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हो, वो इस मोबाइल नंबर पर कृपया संपर्क करें 8010146944। नंबर एक बार फिर सुन ले 8010146944।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: 2 सितंबर 1941 को कराची में साधना का जन्म हुआ। उनके जो माता पिता थे उनकी वो इकलौती संतान थी। माता पिता ने नाम रखा नगमा, लेकिन उनके पिता शिवराम शिवदासानी बांग्ला अभिनेत्री साधना बोस के बहुत बड़े फैन थे। इसलिए जब नगमा 5 बरस की हुई तो उन्होंने उनका नाम नगमा से बदलकर साधना कर दिया। साधना बचपन से ही फिल्म अभिनेत्री बनना चाहती थी, इसलिए कॉलेज के दिनों में वो कई नाटकों में अभिनय कर चुकी थी। लेकिन परिवार को सहारा देने के लिए वो कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगी। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको अगले गीत के बाद, जो हमने चुना है फिल्म आरजू से। आवाज है मोहम्मद रफी की।

फिल्म अबाना के लिए साइन कर लिया गया। 1958 में आई इस फिल्म में उन्होंने शीला रमानी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। ये जो फिल्म थी अबाना, वो साधना की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कैसे, बताएंगे आपको वक्त फिल्म के इस गीत के बाद, जिसमें आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 3 साल के बच्चे को जल्द से जल्द ब्लड की जरूरत है। बच्चे को ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर है। इच्छुक रक्त दानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्त दान करने में सक्षम हों, वो कृपा कर इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8010146944। नंबर एक बार फिर बता दें 8010146944। याद रखिए, आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर जारी है कलाकार बेमिसाल। और कलाकार बेमिसाल में आज बात साधना की। इस ब्रेक से पहले हमने आपको साधना की पहली फिल्म अबाना के बारे में बताया था, जो कि भारत की पहली सिंधी फिल्म थी। अबाना फिल्म के प्रमोशनल शूट के दौरान ली गई साधना की एक जो तस्वीर थी वो एक बड़ी फिल्म मैगजीन में छपी। मशहूर फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी ने जब ये तस्वीर देखी तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए वो जो फिल्म बनाने वाले हैं उसकी हीरोइन यही लड़की होगी। उन्होंने अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ साथ साधना को भी एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया। उनकी पहली फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर आर के नैयर थे। उन्होंने ही साधना के चौड़े माथे को छोटा दिखाने के लिए उनका सिग्नेचर लुक तैयार किया, जो कि हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न से प्रेरित था। और भारत में यह हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से मशहूर हुआ।

0: ओए जान दे ओ हीर जी, ये जान भी तुम्हारी है, ये जान भी तुम्हारी, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान ही साधना और फिल्म के निर्देशक आर के नैयर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके 6 साल बाद ये दोनों विवाह बंधन में बंध गए। शादी के बाद साधना थायराइड का इलाज कराने के लिए बोस्टन गई। वहां से लौटने के बाद उन्होंने इंतकाम, एक फूल दो माली, आप आए बहाय आई, इश्क पर जोर नहीं और गीता मेरा नाम जैसी सफल फिल्मों में काम किया। गीता मेरा नाम का निर्देशन भी साधना ने किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। हालांकि 1989 में उन्होंने पति परमेश्वर नाम से एक फिल्म का निर्माण भी किया था। फिलहाल अगला गीत फिल्म वो कौन थी से, आवाज है लता मंगेशकर की।

1964 में आई फिल्म वो कौन थी के साथ एक सस्पेंस थ्रिलर ट्रायोलॉजी की शुरुआत हुई, जो कि 1966 में मेरा साया और 1967 में अनीता के साथ पूरी हुई। इन फिल्मों के कारण साधना को एक नया नाम मिला, मिस्ट्री गर्ल। इनके अलावा असली नकली, हम दोनों, परख, एक मुसाफिर एक हसीना, दुल्हा दुल्हन, राजकुमार, गबन बदतमीज, मेरे महबूब और हम दोनों जैसी सफल फिल्मों में साधना ने काम किया।

0: आपको बता दें कि नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 3 साल के बच्चे को जल्द से जल्द ब्लड की जरूरत है। बच्चे को ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, वो कृपया कर इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कृपा करें। 8010146944 नंबर एक बार फिर बता दें, 8010146944। याद रखिए, आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: साधना अपने अंतिम वर्षों में कई बीमारियों से पीड़ित रहीं और 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उनका निधन हो गया। हालांकि हाइपरथायराइड के कारण वो पब्लिक अपीयरेंस से दूर रहती थी, लेकिन 2014 में वो सालों बाद मंच पर आईं और कैंसर पेशेंट्स के लिए रैंप वॉक किया। आज साधना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वो प्यारी सी मुस्कान, अलहड़ अदाकारी और उनका हेयर स्टाइल साधना कट के साथ वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी।

0: फिर क्या हुआ?
1: इसी के साथ रजनी को कलाकार बेमिसाल से इजाजत दीजिए।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल की मदद की खातिर जरूरी दवाओं और तिब्बी आलात पर मुश्तमिल 5.5 टन इमदादी सामान ले जाने वाला 5वां तैयारा रवाना कर दिया है। नेपाल में सैलाब से हलाकतों की तादाद 1100 से तजावुज कर गई है। आलमी बैंक के सरबराह अजय बंगा ने भारत की इक्तिसादी तरक्की की तारीफ की है और कहा है कि आलमी सतह पर इक्तिसादी मुश्किलात के बावजूद भारत में 8% से ज्यादा शरह तरक्की हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तजारत और इक्तिसादी तआवुन को मजबूत बनाने के इकदामात का जायजा लेने के लिए तजारत से मुतालिक दोनों ममालिक के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति की वजारत के महकमा जाती इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। और बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत चाइना ओपन बैडमिंटन के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव की कार्रवाइयों में तमाम मुमकिना मदद फराहम कर रहा है। आज राहत और बचाव की इमदाद लेकर 5वां भारतीय तैयारा नेपाल के लिए रवाना हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने बताया कि इस तैयारे में खसूसी साजो सामान से लैस 11 रुकनी बचाव टीम नीस 5.5 टन इंतहाई जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। 19 अरकान पर मुश्तमिल एक भारतीय फोरेंसिक टीम ने फोरेंसिक माहिरीन के साथ नेपाल में हालिया अचानक सैलाब के महलुकीन की शिनाख्त में मदद की खातिर डीएनए सैंपल्स की जांच शुरू कर दी है। भारतीय सिफारतखाने ने बताया है कि इस टीम ने काठमांडू वादी के खुमलटार इलाके में नेपाल पुलिस सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तज्जिए का काम शुरू किया है। नेपाल पुलिस के मुताबिक कल शाम तक 1068 लाशें निकाली गईं, जिनमें से 400 लाशों की शिनाख्त में दुश्वारी पेश आ रही है। पुलिस का कहना है कि 4606 अफराद का कुछ अता पता नहीं है, जिनमें 583 गैर मुल्की शहरी शामिल हैं। इससे तश्वीश में इजाफा हो गया है कि मरने वालों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। नेपाल में कुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 1100 से तजावुज कर गई है। नेपाल की कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक अब तक पिछले हफ्ते आने वाले तबाह कुन सैलाब में बह जाने वाले 1114 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा लाशें जनूबी जिला चितवन से बरामद हुई हैं, इसके बाद मशरकी नवालपरासी जिले से बरामद हुई हैं। हुकाम ने बताया कि अब तक 95 लाशों की शिनाख्त करके उन्हें उनके अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया है। तकरीबन 4000 अफराद अब भी लापता हैं और उनसे कोई राबता कायम नहीं हो सका है। इनमें सरकारी मुलाजिमीन, सिक्योरिटी अहलकार,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत

0: ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
1: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
2: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सीबीहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री रादोस्वाफ शियोर्सकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने

0: आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
2: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
3: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनूघाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला से अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चुल्स को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहिंग और तोनिचा साहिंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वो कौन सा गीत था जिसे फिल्माने के लिए राकेश रोशन ने अपनी फेवरेट कार गिरवी रख दी थी। संगीत.com आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड पर मेरे यानी रजनी के साथ।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Raktdaan ko mahadaan kaha jata hai. नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 3 साल के बच्चे को बहुत जल्द ब्लड की जरूरत है। बच्चे को ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों, रक्तदान करने में सक्षम हों, वो कृपा कर इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8010146944। नंबर एक बार फिर सुन लें 8010146944। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Sangeet.com आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। बात उन दिनों की है जब राकेश रोशन अपनी एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे। इस फिल्म का एक गाना जब फिल्म के निदेशक विश्वनाथ जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि इस गाने में कुछ अलग ही बात है, इसकी शूटिंग तो ऊटी की खूबसूरत वादियों में होनी चाहिए। अब फिल्म पहले ही ओवर बजट हो चुकी थी और राकेश रोशन का जो प्रोडक्शन हाउस था वो भी बिल्कुल नया था। ऐसे में पूरे क्रू मेंबर के साथ ऊटी में जाके शूट करना बहुत ही महंगा था। अब ये सब देखकर फिल्म निर्देशक ने राकेश रोशन से कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम ये जो गीत है ये मुंबई के आसपास ही किसी खूबसूरत सी लोकेशन पर फिल्मा लेंगे। लेकिन राकेश रोशन इस गाने के पिक्चराइजेशन को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी फेवरेट कार गिरवी रख दी और इस तरह जन्म हुआ कामचोर फिल्म के इस खूबसूरत गीत का। जितना ये गीत सुनने में प्यारा है उतनी ही खूबसूरत इसकी लोकेशन है। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, कामचोर फिल्म से।

बात है फिल्म याराना की, जिसके एक गीत की शूटिंग कोलकाता के एक स्टेडियम में चल रही थी। चारों तरफ दर्शक बैठे हुए थे। ऐसे में एक ऐसी अप्रिय घटना हुई जिससे नीतू सिंह बहुत डर गई। वो लगातार अपने घर जाने की जिद कर रही थी। अब नीतू सिंह तो मुंबई चली गई, फिर ये गीत कैसे पूरा हुआ? अमिताभ बच्चन ने डायरेक्टर को सुझाव दिया कि इस बार हम कुर्सियों पर दर्शकों को नहीं बैठाएंगे, बल्कि ऑडिटोरियम में अंधेरा करके हर चेयर पर एक बल्ब लगा देंगे। ऐसा ही किया गया और किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि कुर्सियों पर लोग हैं ही नहीं, बस एक रोशनी है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस गाने के आधे हिस्से में तो नीतू सिंह दिखाई देती हैं, लेकिन बाकी के आधे हिस्से में सिर्फ अमिताभ बच्चन और डांसर्स ही नजर आते हैं।

0: India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Sangeet.com जारी है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर. नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 3 साल के बच्चे को जल्द से जल्द ब्लड की जरूरत है. बच्चे को ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर है. इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हो कृपया करके इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें. यह नंबर है 8010146944. नंबर एक बार फिर बता दें 8010146944. आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है. फिलहाल अगला गीत जो हमने आपके लिए चुना है ये है फिल्म रफू चक्कर से.

कंचन और उषा मंगेशकर की आवाज में ये गीत था फिल्म रफू चक्कर से। इसी के साथ संगीत.com से रजनी को इजाजत दीजिए, कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। भारत से राहत और बचाव सामग्री लेकर पांचवा विमान आज नेपाल पहुंचा। ये विमान 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं लेकर गया है। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश में मौजूद आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
1: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
2: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और इससे संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म परी मैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में छापेमारी की जा रही है। इन कंपनियों ने कैश मैनेजमेंट सिस्टम एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और ये है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका, लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम मन भावन, जहां हम आपके मन पसंदीदा गीत सुनाते हैं आपकी फरमाइश पर। तो करना आपको बस इतना है फरमाइश करने के लिए कि फोन उठाना है और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजना है। नंबर रहेगा 9868868753। तो ये है हमारा व्हाट्सएप का नंबर जिसमें आपको संदेश भेजना है, और आप संदेश में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा, और जो गाना आप सुनना चाहते हैं वो भी। और मेरी कोशिश हमेशा की तरह यही रहेगी कि मैं आपकी फरमाइश को पूरी करूँ और आपके संदेशों को भी शामिल करूँ। तो पहला गीत हमेशा की तरह मेरी पसंद का, और उम्मीद है कि आपको भी ये जरूर पसंद आएगा। सुनते हैं किशोरदा की आवाज में बॉम्बे टू गोवा फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

0: घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे।
1: मैं देख सकती हूँ कि हमारे श्रोता इतनी उत्सुकता से हमें जो है मैसेजेस भेजने लगे हैं। नंबर मैं एक बार फिर दोहरा दूँ आपके लिए कि आपको किस नंबर पर जो है मैसेज करना है। नंबर रहेगा 9868868753। इस पर आप अपने संदेश और फरमाइश हम तक भेज सकते हैं। और करना बस इतना है आपको कि व्हाट्सएप पे जाना है, अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है और भेज देना है जो नंबर मैंने आपको बताया था 9868868753। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हमारे भी कुछ पाबंदियाँ हैं, जैसे वक्त की पाबंदी है, तो इसी कारण जो है हम सभी श्रोता के मैसेजेस को शामिल नहीं कर पाते हैं या आपकी फरमाइश नहीं पूरी कर पाते हैं। पर हमारी कोशिश यही रहती है कि आप सभी के मैसेजेस को मैं शामिल करूँ और आप सभी की जो फरमाइश उसे मैं पूरी करूं। फिलहाल मेरे पास एक संदेश है आपके लिए और वो ये है कि नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 3 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की जरूरत है। बच्चे को ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर है, तो इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों वो प्लीज मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर रहेगा 8010146944। मैं एक बार दोहरा देती हूँ फिर से कि किस नंबर पर जो है आपको कांटेक्ट करना है रक्तदान के लिए, वो रहेगा 8010146944। और ये एक छोटी सी मदद एक छोटी सी जान बचा सकती है और आप तो जानते ही हैं कि रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है और वो कितना पुण्य का काम होता है। तो मैं मैसेजेस की जो हमारी श्रृंखला है उसको शुरू करती हूँ। तो पहला जो मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ ये आया है हमें जालंधर से। ये हमें भेजा है ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, इन्होंने जो है हमें मैसेज किया है। और इसके बाद मैसेज आया है हमारा अनीता वर्मा, ये दिल्ली से हमें मैसेज कर रही हैं। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ये भी हमें सुन रहे हैं। आदाब भेजा है हमें किसने, अलीगढ़ से भेजा है सलीम अख्तर और रेशमा बेगम ने। अगला मैसेज हमें आया है कहाँ से, ये आया है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वीर, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, ये हमें उत्तर प्रदेश से जो है मैसेज कर रहे हैं। मेरठ से हमें अगला मैसेज आया है और ये हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, ये भी हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सारिक खत्री, आयुब खत्री और यूसुफ खत्री, ये हमें छिपा कॉलोनी खांडवा से लिखते हैं। अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, ये भी हमें छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से जो है सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। और अगला मैसेज मैं पढ़ रही हूँ कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खां, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है हमें ये आया है विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यस सौम्य और उनके मम्मी पापा, ये हमें सुन रहे हैं परिवार संग। अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमसुल कमर राही, ये हमें गंज टुंडवारा से जो है मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है प्यार भरा आदाब, ये भेजा है हमें सनावाद से शेख मूसा मोहसिन, ये हमें अपना आदाब भेज रहे हैं, आपको भी हमारा प्यार भरा आदाब। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है कहाँ से, ये आया है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहाना अरजान और अब्बान अब्बासी, ये भी जो है हमें मैसेज कर रहे हैं। और जैसा कि श्रोताओं मैंने आपको बताया था नंबर हमारा वही रहेगा 9868868753, जिस पर आपको अपनी मैसेज और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है। अगला जो गीत है वो मैं चलाने वाली हूँ फिल्म क्रांति से, और इसकी जो फरमाइश की थी वो की थी आफ्ताब रियाज, मोहम्मद अनवर, लुबना आलिया अंसारी, जिन्होंने गुंज डंडवारा से हमें मैसेज भेजा था। तो लीजिए, आपके लिए पेश है ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज।

मैसेजेस का सिलसिला जारी है और अगला मैसेज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ये हमें आया है महाराष्ट्र से। नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, नवाकर फैमिली हमें सुन रही है और मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायरे, आशीष मुन्हेकर ये भी जो हैं हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है गुरप्रीत तंगौरी, जसबीर कौर, महीकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह ये हमें पंजाब से जो हैं सुन रहे हैं और इन्होंने अपना मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमें आया है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्य कुमारी, निवेश कुमार, नियत कुमारी ये हमें बिहार से जो हैं सुन रहे हैं। अगला गीत हमें, अगला मैसेज जो हमें आया है ये हमें आया है स्वरूप आनंद, सरजाल जोड़ा, पीपल अंबिकापुर सीजी से और अगला मैसेज मैं पढ़ रही हूँ प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू ये हमें छत्तीसगढ़ से जो है सुन रहे हैं। अगला मैसेज आया है पूना वाले पुणे से अजय सोनमणि, करिश्मा सोनमणि, अविका सोनमणि, विशाखा सोनमणि और श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले और रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका ये भी जो है हमें परिवार संग सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है सुरेंद्र कुमार, माधुरी सिंह, आराध्य सिंह, अनंत कायरा ये हमें मोहाली से जो है मैसेज कर रहे हैं। अगला हमें मैसेज आया है गुंज डंडवारा से शमसुल, कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी ये भी हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा ये नई दिल्ली से जो है हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज आया है हमें एन श्रीनिवासन, श्रीजा, अभिलाष, अंकिता, अभिलाष ये हमें केरलम से जो है सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है कैलाश चंद, रुक्मणी, दिनेश, महेंद्र पार्क, दिल्ली ये दिल्ली से हमें मैसेज आया है। अगला मैसेज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ये हमें आया है राजस्थान से, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार ये जो है हमें सुन रहे हैं परिवार संग। अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ बिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा का ये हमें सुन रहे हैं मध्य प्रदेश से ये मैसेज हमें आया है। अगला मैसेज स्वर्ण सिंह ये हमें पंजाब से सुन रहे हैं और अगला जो मैं मैसेज पढ़ने जा रही हूँ ये हमें आया है कहाँ से, ये हमें आया है यूपी से, गाजियाबाद से और लिखा है ब्रह्म सिंह, रोहित कुमारी, कैलाश ने ये हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम ये हमें सहारनपुर से सुन रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है मराठवाड़ा से, सुधाकर राजे यादव देशमुख, प्रशांत राजे यादव देशमुख, जगुताई राजे यादव देशमुख, कुमार संचित देशमुख ये भी हमें जो है परिवार संग सुन रहे हैं। आपके इन प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी क्योंकि जब आप ऐसे मैसेज करते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें ऐसा लगता है कि बस अब मैं आसमान में उड़ रही हूँ क्योंकि इतना प्यार जो है वो दिखता है इन मैसेजेस में। और जैसा कि मैं आपसे

बार बार कहती हूँ कि हमारा भी यही मन है कि हम सभी मैसेज को शामिल करें, पर वक्त की पाबंदी है जिस कारण हम सारे मैसेजेस को पढ़ नहीं पाते हैं या संदेश जो है वो शामिल नहीं कर पाते हैं, आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाते हैं। पर हमें पता है कि आप हमसे तब भी उतना ही प्यार करेंगे। और हाँ, मेरी भी आपसे एक फरमाइश है। मैंने आपको बोला था ना कि नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 3 साल के बच्चे को अति शीघ्र रक्त की आवश्यकता है। तो बच्चे को ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हो, वो कृपया करके मोबाइल नंबर जो है 8010146944, मैं दोहरा देती हूँ, 8010146944, इस पर संपर्क कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। अगला जो गीत मैं पेश करने जा रही हूँ वो है फिल्म छोटी सी बात से, और इसकी फरमाइश हमें की थी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल विलिस डिकैस्ट्रो ने। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत येसुदास और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम चल रहा है मन भवन आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ. और बिना देरी किए चलिए मैं पढ़ती हूँ आपके मैसेजेस. तो अगला मैसेज जो है ये हमें आया है दिल्ली से. मीनू प्रवीण, पूनम, विनोद, जयंत, नीलम ये हमें सुन रहे हैं. और अगला जो मैसेज आया है ये आया है सुशांत, प्रिया झा, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमारी, कीर्ति नगर, नई दिल्ली से जो है ये हमें सुन रहे हैं. और अगला मैसेज हमें आया है राजकुमार डुटी, प्रमोद कुमार डुटी, पुष्पेंद्र कुमार डुटी ये हमें सुन रहे हैं. कहाँ से? हिसार से हमें जो है सुना जा रहा है. अगला मैसेज हमें आया है महाराष्ट्र से. अनिल कोहले, छाया कोहले और प्रियांश कोहले ये हमें जो है परिवार संग सुन रहे हैं. सांबलपुर कांकरे से हमें फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ये भी जो है हमें सुन रहे हैं. अगला मैसेज हमें आया है कहाँ से? ये आया है शिपाल गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से ये हमें सुन रहे हैं. शिवा भारती, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं. और अगला मैसेज हमें आया है जगदीश कुमार, राहुल, रितिका, नांगलोई से हमें ये सुन रहे हैं. और अगला जो कार्यक्रम, अगला जो मैसेज है, मैं आपके मैसेज पढ़ रही हूँ ना तो साथ में वो भी निकल रहा है जो मैं पढ़ रही हूँ उसे. तो अगला जो मैसेज है वो हमें आया है रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार जो है हमें सुन रहा है. हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है कहाँ से? ये हमें आया है उन्होंने साउथ एक्सटेंशन गुरमीत सिंह मीता ये हमें सुन रहे हैं. और अगला जो मैसेज है ये मैं पढ़ रही हूँ सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया ये हमें जलालाबाद वेस्ट से सुन रहे हैं. और अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है बिहार से. आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार ये हमें जो है सुन रहे हैं. और इन्होंने अपना मैसेज भेजा है हमें. अगला मैसेज हमें आया है कहाँ से? सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा ये हमें रोहतक से सुन रहे हैं. अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ किसका? ये आया है हमें भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ये हमें सुन रहे हैं. दत्रेंगी से ये हमें सुन रहे हैं. और अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है कहाँ से? ये हमें आया है, ये मैसेज हमें भेजा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने ये हमें सुन रहे हैं. प्रताप वर्मा महावीर कॉलोनी सोनीपत से हमें सुन रहे हैं. और अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है उत्तर प्रदेश से. असलम मंसूरी ये भी जो है हमें सुन रहे हैं. और अगला जो गीत मैं पेश करने जा रही हूँ इसकी फरमाइश हमें की थी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल, मुरली और ये सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म से ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने.

मैसेजेस ढेर सारे हम तक पहुंच रहे हैं और इन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। और मैं अपने श्रोताओं से माफ़ी भी मांगना चाहूंगी जिनके मैसेजेस या जिनकी फरमाइश मैं पूरी नहीं कर पा रही हूं। उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि हमारी भी कुछ मजबूरी है और हमें पता है कि इसके बावजूद आप जो है हमसे प्यार करते रहेंगे। अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ, पंजाब से आया है ये जगदीश सिंह मठाड़ू, वीरपाल कौर मठाड़ू ये हमें सुन रहे हैं। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई, पूरा संघई परिवार जो है हमें सुन रहा है। अगला जो मैसेज आया है ये आया है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह ये हमें सुन रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से। अगला मैसेज हमें आया है सरोज बंसल, अनूप कौर गुरुग्राम से ये हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ, चंद्रलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा ये हमें सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ से। अगला मैसेज जो है ये हमें आया है छत्तीसगढ़ से ही, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है कहाँ से, इम्तियाज अंसारी ये हमें सहारनपुर से सुन रहे हैं। नमस्कार भेजा है हमें प्रवीण खन्ना, संपन्न खन्ना, सात्विक खन्ना दिल्ली से ये हमें सुन रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष, पांडुरंग कुंभार ये हमें सुन रहे हैं कोलगांव से। और अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से हमें सुन रहे हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, आपके इस प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमें अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, वसीम, आरज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा बिहार से जो है ये हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा ये हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला जो मैं पढ़ रही हूँ ये आया है हमें कहाँ से, ये हमें आया है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खदनी खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादब खदरी ये हमें सुन रहे हैं सनाबाद से। और जो अगला मैसेज आया है ये हमें आया है मध्य प्रदेश से, नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से ये भी जो है अपना प्यार

भरा नमस्कार हमें भेज रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है महाराष्ट्र से। अभिजीत, सरिता, प्रणेता, प्रिंस, एकांश, लाडला, टुक टुक, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ, मनाली से आया है हमें हर्ष, विनय, विनीत और राजेश भाई। चंडीगढ़ से सुन रहे हैं शेफाली, शेफी, डेविस बिमला और सतीश अनेजा, इन्होंने अपना प्यार भेजा है हमें। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है मलकापुर से, संजय पाटिल, उषा पाटिल हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, मैंने आपका मैसेज पहले भी शामिल किया था। अगर आप एक बार मैसेज भेज रहे हैं और मैंने अगर शामिल कर दिया तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि फिर से ना भेजिए, ताकि और भी श्रोताओं को जो है मौका मिले कि उनका जो है मैसेज मैं शामिल कर पाऊं। उम्मीद है आप इस छोटी सी बात को मान लेंगे। अगला जो मैसेज आया है वो हमें आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से सुन रहे हैं हमें राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना, ये हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीम, पलक लुबना, यश मंसूरी और प्यारा नवासा नुमैर, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी, ये हमें सुन रहे हैं गंज टुंडवारा से। अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू और पेंटर बाबू, ये हमें खंडवा से जो है सुन रहे हैं। अगला मैसेज आया है हमें हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक करमकर, ये हमें सुन रहे हैं प्राची और तनु करमकर के साथ, ये हमें मध्य प्रदेश से आया है मैसेज। और अगला जो मैसेज आया है ये आया है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, जमशेदपुर से जो है इन्होंने हमें मैसेज भेजा है। और अगला मैसेज भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति, पौरुष, ये भी हमें बेंगलुरु से सुन रहे हैं। और कार्यक्रम में अगला गीत जो है इसकी फरमाइश हमें की थी बोधराज, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश उत्तम नगर से। ये गीत फिल्म से सुनना चाहते हैं, ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

मैसेजेस बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है, तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार। हमें मैसेज भेजा है, ये किसने, गुड आफ्टरनून भेजा है हमें किशन मंजरी नीलम स्वाति और किशोर ने, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से जो है ये हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है ओम गायकवाड़, आम्रपाली गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, अनामिका प्रणेता गायकवाड़, ये भी हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है सांबलपुर कांकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ये भी हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित खुशी गोस्वामी, ये हमें सुन रहे हैं राजस्थान से। अगला मैसेज आया है हमें सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली पाठक का। और अगला मैसेज मैं पढ़ रही हूँ सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, संजू लल्ला, सुबोध सलोनी चौरसिया, बाबू शिवा शिवानी चौरसिया, ये भी हमें जो है फारुखाबाद से हमें सुन रहे हैं। और अगला जो मैसेज हमें आया है ये आया है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ से जो है हमें सुना जा रहा है। और अगला जो मैसेज है मोहम्मद जाकिर मंजूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीम, पलक, लुबना, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज प्रेम साय राजवड़े, सोमार साय मेरिस्या, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खेलवान सिंह पिकारा, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। और कार्यक्रम में जो आखिरी गीत है वो मैं सुनाने जा रही हूँ राजस्थान से, इसकी फरमाइश की थी धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा ने, और ये सुनना चाहते हैं हसीना मान जाएगी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आपके इन प्यार भरे मैसेजेस के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी मैं, क्योंकि इन मैसेजेस से हमें पता चलता है कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर हमारे भी कुछ पाबंदियां हैं, वक्ती पाबंदियां हैं, इसी वजह से जो है मैं सभी मैसेजेस को शामिल नहीं कर पाती। तो जिन श्रोताओं के मैसेजेस मैंने शामिल नहीं किए या फरमाइश पूरी नहीं की, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप जो है बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आपके लिए पेश होंगे समाचार और मैं वापस लौटूंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम गाते गुनगुनाते आपके लिए। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। भारत से राहत सामग्री लेकर पांचवा विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। नेपाल, पड़ोसी राज्यों और राज्य में लगातार वर्षा के कारण गंगा, गंडक और कोसी नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमरीका के एशुल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं।
1: इंडिया हैज लर्निंग्स। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं, और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने विश्लेषण क्षमता मजबूत करने, सुदृढ़ व्यापक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए भारत और IMF के बीच निरंतर सहयोग के महत्व पर बल दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई पर सहमति जताई। इसमें सीमा शुल्क और इससे संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित थे। उपराज्यपाल ने कहा कि करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को कई वर्षों से पासपोर्ट संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अब करगिल और आसपास के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। यहां दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में चीनी ताइपे के ची यू जेन को हराया। हालांकि लक्ष्य सेन को कनाडा के विक्टर लाई से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया, जबकि देविका सिहा को हार का सामना करना पड़ा। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी थाईलैंड के टोनाकोन साहेंग और टोनिचा साहेंग को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई।

मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है गीत किशोर दा की आवाज में और फिल्म है चुपके चुपके।
1: चल शुरू हो जा।

0: बस बस बस बस सापे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: The Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India has invited applications for one post of a technical officer unreserved through direct recruitment. The post is in pay level 6 as per the 7th CPC and the age limit is 35 years. Candidates must possess BSc with 7 years experience or BTech or BV Science MSc with 3 years experience. Last date for submission is 4th September 2026. Candidates can visit the BRIC-NIAB official website for details, eligibility conditions and application procedure. That is at www.niab.res.in. I repeat, it is www.niab.res.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली में विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति और अनुबंध के आधार पर संकाय पदों समूह ए के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य नियम एवं शर्तों के लिए आवेदक देख सकते हैं वेबसाइट www.aimsrbl.edu.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 10 सितंबर 2026। इस विज्ञापन से संबंधित सभी आगे की सूचनाएं और अपडेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगी। वेबसाइट का पता एक बार फिर सुन लीजिए www.aimsrbl.edu.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA संविदा आधार पर युवा सलाहकार वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। एक ही रिक्ति उपलब्ध है। पारिश्रमिक रहेगा ₹35,000 प्रति माह। नियुक्ति के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें यदि आप जानना चाहें तो देख सकते हैं NDMA की वेबसाइट ndma.gov.in। औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क कठुआ इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वैज्ञानिक समन्वयक, वैज्ञानिक पादप विज्ञान, वैज्ञानिक किण्वन, व्यवसाय प्रबंधक, परियोजना सहायक और कार्यालय सहायक। विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड, नियम एवं शर्तों तथा आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए वेबसाइट www.triplim.res.in। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक E5 तथा वरिष्ठ प्रबंधक E3। शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, आरक्षण, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.hudco.org.in। युवा पेशेवर ग्रेड 2 के 2 पदों तथा युवा पेशेवर ग्रेड 1 के 1 पद के चयन के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से 11 सितंबर 2026 को सवेरे 10:30 बजे। साक्षात्कार स्थल रहेगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय स्टेशन जो करनाल में स्थित है। ये पद अस्थायी हैं और निश्चित अवधि के हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट www.iari.res.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the New Services Division of Akash.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हम चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रोज की तरह रहेगी हमारी बराबर नजर और हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
2: हेलो मुनीष, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दोज ट्यून इन टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विथ मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट मुनीष। वेल लिसनर्स, ही फंडामेंटली शेप्ड मॉडर्न फैंटेसी एंड डिफाइंड द मॉडर्न जॉनर। He built immersive worlds and inspired generations with his work. Secondly, he was a master philologist. He invented complex languages, constructed grammatical rules, and his stories grew from his words. And lastly, he was a dedicated academic who was an Oxford University professor. He translated ancient texts like the Beowulf, and his mythologies are enriched in his fiction. Yes, he's none other than John Ronald Reuel Tolkien, or J.R.R. Tolkien, the English writer, scholar and a genius, the man who every aspiring writer wants to emulate, and an outstanding personality. And we observe his death anniversary today, and we shall talk about him later in a program. But first of all, we begin with the news headlines at this hour.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे।
2: India sends fifth aircraft carrying 5.5 tons of essential medicines and equipments to assist flood ravaged Nepal. That toll crosses 1,100.
1: विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की है। कहा है, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की है क्षमता।
2: India Afghanistan Joint Working Group holds review meeting to strengthen bilateral trade and economic cooperation between the two countries.
1: और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में।
2: एंड लिसनर्स, इट्स टाइम फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन इंडिया इन व्हिच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और द ग्लोबल लेवल। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड कोकोनट डे। Well, Munish, think of something that can give you water, food, oil, fiber, fuel, medicine, shelter, and even a traditional welcome at your doorstep. Yes, today, September 2nd, is the World Coconut Day, a day that celebrates one of the most useful and fascinating plants on a planet. And in the Indian subcontinent, the coconut is much more than just a fruit. It is part of our food, festivals, farming traditions, rituals, livelihoods, and everyday life. So stay with us as we take a journey from the coconut groves of Kerala and Karnataka to the kitchens of Sri Lanka and Bangladesh and discover why this humble palm has earned the magnificent title, the Tree of Life.
1: जी हाँ, हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे यानी विश्व नारियल दिवस। इसकी शुरुआत 2009 में एशिया एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी ने की, जिसे अब इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। और इस साल का संदेश बहुत अहम है, अनिश्चितता के समय में नारियल भोजन, ऊर्जा और आजीविका को सुरक्षित करना। इन शब्दों पर अगर हम गौर करें अभिषेक, तो भोजन, ऊर्जा और आजीविका, क्योंकि नारियल का पेड़ सिर्फ समुद्र तटीय हवा में लहराता हुआ कोई खूबसूरत पेड़ भर नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए ये कमाई, पोषण और जीवन जीने का एक

0: जरिया भी है।
1: Yes, and why is the coconut called the tree of life? Because almost every part of it can be useful. The coconut water, a refreshing drink, the white flash, food, coconut milk and coconut cream. The flash can also be dried to produce copra, from which coconut oil is extracted, and the husk. That's where the story gets even more interesting. Coir fiber obtained from the coconut husk is used to make ropes, mats, brushes, doormats, mattresses and other products. The hard shell, it can be made into bowls, utensils, handicrafts and charcoal. The leaves, traditionally used for thatching roofs, making baskets, mats and decorations. And the trunk, it can be used as a timber and in traditional construction. In other words, if a coconut palm had a resume, it would probably say skills, food, fiber, fuel, construction, crafts, culture and multitasking.
0: Indeed, and the moot question is whether coconut is really a nut, and we'll be dealing with it later. फिलहाल अब नारियल को हम ले आते हैं भारत में। इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ साथ भारत भी दुनिया के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक है। केरल और कर्नाटक के हरे भरे इलाकों से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक नारियल का पेड़ यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। भारत के उत्तरी हिस्सों में भी शुभ मौकों पर इसका इस्तेमाल होता है और भारतीय खाने में तो शायद इसके इस्तेमाल के हजारों तरीके हैं। आइए खान पान की दुनिया की एक छोटी सी सैर हो जाए, क्यों अभिषेक?
1: Yes, and we start off with Kerala. In Kerala, coconut is practically a member of the family. Freshly grated coconut appears in vegetables, chutneys and traditional preparations. Coconut milk gives dishes such as vegetable stew and appam combinations their characteristic richness. And what about avial, a classic Kerala preparation in which vegetables and coconut come together beautifully. Then there is puttu, steam cylinders of rice flour layered with grated coconut.
0: दोस्तों तमिलनाडु में नारियल का इस्तेमाल चटनी, सब्जी, मिठाई और चावल के व्यंजनों में किया जाता है। दक्षिण भारतीय खाने में नारियल की चटनी के साथ साथ इडली या डोसा का कॉम्बिनेशन शायद सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कॉम्बो है। कर्नाटक में चटनी और करी से लेकर त्योहारों की मिठाइयों तक हर चीज में होता है नारियल का इस्तेमाल, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खासकर तटीय इलाकों के खाने में तो नारियल का इस्तेमाल कई तरह की चटनी, करी और मिठाइयों में भी किया जाता है।
1: Yes, and I'd like to mention, Munish, that even in popular culture, coconut, we see references of coconut, especially if you've seen the film Papillion, where the protagonist is an inmate and he survives on coconut inside prison. You know, like his sole sustenance is from coconut. So it's a very wonderful movie. I wish you, all our listeners, that if they get the opportunity, do see this movie, The Papillion. Well, now, if you travel west to Goa, and coconut becomes one of the defining ingredients of the cuisine. Coconut milk and grated coconut appear in seafood, vegetable and rice preparations. And along India's eastern coast and in Odisha and West Bengal, coconut is also an important ingredient in sweets, festive foods and regional cooking. So if there's one ingredient that can travel across India's culinary map and keep changing its personality, it's the coconut.
0: Well, that sounds quite interesting, Abhishek. You talked of Papillion,
1: yeah. The
0: movie of a man, about a man who
1: He's
0: survived...
1: Imprisoned. He's imprisoned in a prison.
0: But
1: while being an inmate, he sustains himself on coconuts.
0: Oh, interesting indeed. और दिलचस्प बात ये है दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान के हिसाब से, यानी बॉटनी के लिहाज से देखें तो नारियल को एक ड्रूप माना जाता है, यानी एक ऐसा फल जिसके बीज के चारों तरफ होती है एक सख्त परत। इसलिए अपने नाम के बावजूद नारियल दरअसल कोई नट नहीं है। और एक बात और, जब आप कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी के शब्द को सुनते हैं तो ये याद रखिए कि इस कोई ऐसा पानी नहीं है जो किसी तरह बाहर से नारियल के अंदर चला गया हो। ये फल के अंदर प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक तरल पदार्थ है और पके हुए नारियल की तुलना में कच्चे नारियल में नारियल पानी काफी ज्यादा होता है।
1: Yes, and perhaps nowhere is the importance of the coconut more visible than in Indian traditions. In many parts of India, a coconut is considered a symbol of purity, prosperity and auspicious beginnings. A coconut may be offered during puja, religious ceremonies, weddings, housewarmings and other important occasions. And the coconut's hard outer shell and pure white interior have also inspired symbolic interpretations associated with self-purification and offering. And you may have noticed something else. At temples, ceremonies and festivals, coconuts often appear alongside flowers, lambs, turmeric and other offerings. So the coconut isn't merely sitting in the kitchen. It can also sit at the very heart of a ceremony.
0: जी हाँ, नारियल की कहानी सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नारियल ने अपनी अलग अलग क्षेत्रीय पहचान कायम की है। श्रीलंका में नारियल रोजाना के भोजन का एक जरूरी हिस्सा है। कद्दूकस किया हुआ नारियल, नारियल का दूध, नारियल की क्रीम का इस्तेमाल करी, सांबोल, मिठाइयों और कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है। श्रीलंकाई खाने में पोल सांबोल का एक खास स्थान है। ये ताजे कद्दूकस किए हुए नारियल से बनी एक अनोखी तीखी डिश है। बांग्लादेश में नारियल का इस्तेमाल मिठाइयों, डेजर्ट और क्षेत्रीय व्यंजनों में किया जाता है, खासकर तटीय इलाकों में। त्योहारों और खास मौकों पर बनने वाली पारंपरिक मिठाइयों और व्यंजनों में नारियल का इस्तेमाल होता ही है। पाकिस्तान में भी नारियल मिठाइयों और डेजर्ट्स में काफी लोकप्रिय है और पूरे इलाके में नारियल को न सिर्फ खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल के लिए बल्कि तेल, रेशे, घरेलू सामान और पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए भी बड़ा ही अहम माना जाता है।
1: सो हियर टुडेज क्वेश्चंस फॉर यू, इन हाउ मेनी वेज हैव यू यूज्ड कोकोनट? हैव यू ड्रंक कोकोनट वाटर ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून? यूज्ड कोकोनट ऑयल फॉर योर हेयर? एंजॉयड कोकोनट चटनी विद डोसा? हैड अ पीस ऑफ कोकोनट बर्फी? कुक्ड विद कोकोनट मिल्क? Or perhaps watched someone break a coconut at a wedding, puja or housewarming, and you might be surprised how many times this one palm has touched our lives.
0: नारियल का एक और पहलू है दोस्तों, जिस पर हमें गौर करना चाहिए। दरअसल नारियल से बने हर प्रोडक्ट के पीछे लोगों का एक नेटवर्क होता है। किसान नारियल के पेड़ उगाते हैं, मजदूर नारियल को तोड़ करके लाते हैं, कुछ लोग नारियल के छिलके से कॉयर यानी उसका रेशा निकालते हैं, कारीगर नारियल के खोल और रेशों से काम की चीजें बनाते हैं, खाने पीने का सामान बनाने वाली कंपनियां नारियल से तेल, दूध, क्रीम और दूसरी चीजें बनाती हैं, और फिर व्यापारी इन चीजों को गांवों से दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचा देते हैं। इसका मतलब है कि नारियल की खेती और प्रोसेसिंग से गर्म इलाकों में लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है।
1: Yeah, 2026 World Coconut Day theme talks about securing livelihoods. The coconut isn't only a crop. For many communities, it is an economic lifeline. And here's something increasingly important. The coconut palm can contribute to a more sustainable use of natural resources. Its fibers can become useful materials. Its shells and other biomass can be used in various energy and industrial applications. Its products can support rural economies and coconut-based foods provide valuable ingredients in many diets.
0: लेकिन नारियल की खेती के सामने कई चुनौतियां भी हैं दोस्तों, जैसे जलवायु परिवर्तन, कीड़े मकौड़े और बीमारियां, खराब मौसम, बदलते बाजार और खेती करने वाले समुदायों पर दबाव। इससे हम आज के अपने विषय पर वापस आते हैं। अनिश्चितता के दौर में नारियल, भोजन, ऊर्जा और आजीविका को सुरक्षित करना, दरअसल ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये याद दिलाता है हमें कि समुदायों का सहारा बनने वाली फसलों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना कितना जरूरी है।
1: So to conclude our discussion on coconuts today here, Munish, from Kerala to Sri Lanka, Karnataka to Bangladesh, Tamil Nadu to coastal communities across the subcontinent, the coconut has quietly woven itself into our lives. Tall, resilient and generous, the coconut palm truly deserves its name, the tree of life.
0: Ji haan, jeevan ka. और दोस्तों अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का क्या कुछ है खास हमारे लिए उनके पास। हिमाचल प्रदेश में जलाशयों पर आश्रित हजारों मछुआरा परिवारों के लिए हर साल 15 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर यानी मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध रहा है। इस अवधि में मछलियों के संरक्षण और प्रजनन को ध्यान में रखते हुए मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहता है। ऐसे में जिन परिवारों की आजीविका पूरी तरह मत्स्य पालन पर निर्भर होती है, उनके सामने दो महीने तक तो आय का कोई स्थायी स्रोत होता ही नहीं। प्रदेश के हजारों मछुआरा परिवारों की इसी पीड़ा को समझते हुए राज्य सरकार ने मछुआरा सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है और आर्थिक सहारा प्रदान किया है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश में मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र मछुआरा परिवार को

3,500 रुपए की सम्मान राहत राशि प्रदान की जा रही है। ये सहायता राशि ऐसे समय में परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक बन रही है जब मछली पकड़ने पर प्रतिबंध होने के कारण उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हिमाचल सरकार की इस पहल का लाभ राज्य में हजारों मछुआरा परिवारों को मिला है। अकेले जिला बिलासपुर में 1,500 मछुआरा परिवारों को योजना के तहत 52 लाख रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिससे

0: झील सहित अन्य जलाशयों पर निर्भर मछुआरा समुदाय के लिए ये योजना आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनकर उभरी है। झंडुता विकास खंड के दाढ़ी भाड़ी मत्स्य सोसाइटी के विक्रेता गुरदास का कहना है कि वे पिछले 40 से 45 वर्षों से मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मछुआरों के हित में पहली बार एक ऐसी योजना लागू की गई है जिसने ऑफ सीजन के दौरान परिवार की रोजी रोटी की चिंता काफी हद तक कम कर दी है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
1: Jammu and Kashmir is all set to screen 135 films from 41 countries in its inaugural edition of the International Film Festival from September 7th to 10th, bringing the world of cinema to the Union Territory. A further group of countries including South Korea, Sweden, Taiwan, Qatar, Colombia and Turkey, among others, will contribute curated films, giving the festival a distinctly global character. And a major attraction of the festival will be its proposed 96 lakh rupees total prize purse, distributed across 9 award categories to recognize excellence in filmmaking and cinematic craft. The festival will provide a platform for diverse cinematic voices while showcasing the rich cultural heritage, stories and creative potential of Jammu and Kashmir before national and international audience.
2: The cash prizes seeks to appreciate the creative achievement, individual performances, technical craftsmanship and regional talent making the inaugural IFFJK not merely a celebration of films but a platform for acknowledging the diverse artistic contribution that brings cinema to life. The cash prizes are part of the broader vision of J&K government to position Jammu and Kashmir on the international cinematic map, providing opportunities for the filmmakers to showcase their work, facilitate cultural exchange and encourage emerging as well as established talent. A floating screen on the waters of Dal Lake near SKICC is also being installed as part of the festival experience. The initiative is expected to provide an iconic setting for film screening while showcasing the unique cultural and natural landscape of Jammu and Kashmir to visiting filmmakers, artists and delegates from across India and abroad. This is N. Gulshan Rana for Parikrama from RNU Akashwani Jammu.
3: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी PMEGP पश्चिम चंपारण में छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का जरिया बन रही है। चनपटिया स्टार्टअप जोन में आनंद कुमार ने योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण लेकर बर्तन उद्योग शुरू किया और आज उनके उद्योग में 40 महिला और पुरुष काम करते हैं और सालाना 7 से 8 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: कोरोना काल में बाहर से लौटे आनंद कुमार ने अपने बेटे शिवम के नाम पर शिवम स्टेनलेस स्टील उद्योग शुरू किया। आज यहां बने बर्तन बिहार के सभी जिलों के साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र के बाजार में ग्राहकों की पसंद बन रहे हैं।
5: ये हमारा नाम आनंद कुमार है, ये हमारा कंपनी का नाम शिवम स्टील है। यहां स्टील के बर्तन तैयार करते हैं लगभग सब प्रकार, लगभग बिहार के सब जिले में जाता है।
4: उद्योग ने स्थानीय महिलाओं के साथ दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों को भी रोजगार दिया है। यहां काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि नियमित आमदनी से उन्हें परिवार चलाने और बच्चों की पढ़ाई में काफी मदद मिल रही है। उद्योग के विस्तार के लिए PMEGP के दूसरे चरण में आनंद कुमार को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रोहित राज ने उद्योग का निरीक्षण कर कारोबार की सराहना की।
6: इनको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। उसके उपरांत इनके इकाई का जो ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 वर्कर्स जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है। साथ ही साथ अभी हाल ही में बीसीको के द्वारा इनको 10 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
4: पश्चिम चंपारण का ये उद्योग स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन की एक मिसाल बन रहा है। परिक्रमा के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निदेश श्री।
1: मिजोरम इज स्टेपिंग अप इट्स एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया विद द स्टेट गवर्नमेंट पोजीशनिंग द विंटर फेस्टिवल एज अ की प्लेटफॉर्म टू शोकेस द स्टेट्स यूनिक विंटर एक्सपीरियंस कल्चर टूरिज्म एंड एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल। वी हैव अ रिपोर्ट।
7: Mizoram is gearing up for the Winter Festival as part of the state government effort to establish the state as the winter capital of India. The organizing committee for the festival met here at Aizawl under the chairmanship of the Chief Minister Lal Duoma to discuss preparations for the event. Lal Duoma said that they are actively working to establish Mizoram as the winter capital of India, and the festival would serve as a platform to showcase and promote entrepreneurship in the state. He also said the festival is being spearheaded by the the tourism department, its success would require

0: और दोस्तों, आज है पुण्यतिथि विष्णु सखाराम खांडेकर की, जिनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1898 को सांगली महाराष्ट्र में। मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में उन्हें गिना जाता है। उनके लेखों और कविताओं का प्रकाशन 1919 से शुरू हुआ। विष्णु सखाराम खांडेकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज ही है पुण्यतिथि अमरनाथ झा की, जिनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1857 को मधुबनी जिला बिहार में। वे भारत के प्रसिद्ध विद्वान, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री थे। हिंदी को सम्माननीय स्तर तक ले जाने और उसे राजभाषा बनाने के लिए अमरनाथ झा ने बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। उन्हें वर्ष 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अमरनाथ झा की नियुक्ति 1922 में अंग्रेजी अध्यापक के रूप में अलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी, जहां वो प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहने के बाद वर्ष 1938 में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी बने और वर्ष 1946 तक इस पद पर बने रहे। उनके कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने काफी उन्नति की और उनकी गणना देश के उच्च कोटि के शिक्षा संस्थानों में होने लगी।
1: And we're also remembering Keanu Reeves, who celebrates his birthday today. He's a highly celebrated Canadian actor, musician and producer, renowned for his roles in iconic action, science fiction and comedy films. Born in Beirut, Lebanon and raised in Toronto, Canada, he is universally recognized for his legendary film franchises, his humble and down-to-earth public persona and his extensive quiet philanthropy. And also Salma Hayek celebrates her birthday today. She is a highly acclaimed Mexican-American actress, film producer and former model. She broke barriers in the 1990s as one of the first Latina actresses to establish a mainstream, highly successful movie career in Hollywood. And speaking of her breakthrough roles, Munish, she began her career in Mexican telenovelas like Teresa in 1989 before moving to Hollywood and rising to prominence in films like Desperado in 1995 and From Dusk Till Dawn 1996.
0: और अभिषेक, आज है जयंती अभिनेत्री साधना की, जिनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1941 को कराची में। भारतीय सिनेमा की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, फिल्म अबाणा से जिन्होंने अपने फिल्मी जीवन का सफर आरंभ किया और पूरा नाम था उनका साधना शिवदासानी। अपने एक खास हेयर कट की वजह से खासी मशहूर रही साधना अपने जमाने में, और उनकी मुख्य फिल्मों को हम याद करें तो लव इन शिमला, मेरे महबूब, आरजू वक्त, मेरा साया, हम दोनों, अमानत, इश्क पर जोर नहीं, परख और बहुत सारी यादगार फिल्में। तो क्यों ना सुन ली जाए कुछ एक ऐसी झलक, जिससे हमें याद आ जाए वो गीत जिन्हें कभी उन पर फिल्माया गया था।

0: Yes, and we're also remembering Kitcha Sudeep, who's a famous Indian film actor, director and television host, who works mostly in Kannada cinema. Let's listen in to a dialogue from his movie Dabang 3.
1: अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आपने सुना होगा कि जीत अच्छाई की होती है. गलत सुना है आपने. व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही.
2: और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का. आज्ञा दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा और अभिषेक मुखोपाध्याय को. आप कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहें तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट और दीजिए अब हमें आज्ञा. नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल्स के संसद के अध्यक्ष अजरेल अनेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निरंतर संसदीय संवाद से दोनों देशों की साझेदारी को नई गति मिलेगी तथा दीर्घकालिक संबंध और मजबूत होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने विश्लेषण क्षमता मजबूत करने, सुदृढ़ व्यापक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए भारत और IMF के बीच निरंतर सहयोग के महत्व पर बल दिया। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। ये दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती का एक नया रेट कार्ड तय आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी खुलासे के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। प्राधिकरण ने कंपनी को विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किसी भी अन्य पदार्थ की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन या बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नौसेना का नौकायान प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अपने समुद्री अभियान लोकायान 26 के अंतर्गत स्पेन के बार्सिलोना पहुंचा। बार्सिलोना में पोत स्पेन की नौसेना के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल आगंतुक शुक्रवार को पोत को देखने जा सकेंगे। ये भारत की समुद्री विरासत को देखने का अवसर प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शोटी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और ये है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका, लेकर कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। और जी हां, मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गीत जो हैं यहां पर सजा के रखे हैं। तो क्यों ना शुरुआत की जाए एक प्यारी से शेर के साथ, जैसे लिखा है आदर्श सिंह रघुवंशी ने। ये कहते हैं, पायल पहन आना तुम धीरे धीरे, छुन छुन करती अगल बगल से जाना तुम, पायल पहन आना तुम। खैर, जिस घर में पायल की खनक सुनाई देती है, छुन छुन सुनाई देती है, उस घर का जो एक माहौल है ना, वो अलग ही हो जाता है। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए पेश है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, और फिल्म है दीवाना।

श्रोताओं, आपसे एक निवेदन है कि पूर्वी दिल्ली के अस्पताल में भर्ती एक रोगी को अतिशीघ्र 5 यूनिट ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया मोबाइल नंबर 9871159311, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, नंबर 9871159311, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं, आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। और अब बढ़ते हैं गानों की ओर, और गाने से पहले आपके लिए हाजिर है एक शेर। आपसे रोज मिलने को दिल चाहता है, आपसे रोज मिलने को दिल चाहता है, कुछ सुनने

सुनाने को दिल चाहता है। था आपके मनाने का अंदाज ऐसा कि फिर रूठ जाने को दिल चाहता है। खैर, मैं आपसे नहीं रूठूंगी, ना ही आप हमसे रूठेंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमारा प्यार उतना ज़्यादा है। तो अगला जो गीत है वो है अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, फिल्म है बागी।

0: Journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz और कार्यक्रम चल रहा है गाते गुनगुनाते आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ। श्रोताओं, आपको याद है जब हम खत लिखा करते थे और उस खत के जवाब का इंतज़ार किया करते थे, वो भी क्या दिन थे ना, कितना अच्छा लगता था। और मुझे तो अभी भी कभी कभी लगता है कि चाहे आप एक दूसरे से फ़ोन पर बात करें, मैसेजेस पर बात करें, पर वो ख़त लिखने वाली जो आदत है ना, वो हमें छोड़नी नहीं चाहिए, कभी भूलनी नहीं चाहिए। बेशक हम एक ही शहर में रहते हों या अलग अलग शहर में रहते हों, हमारे दोस्त, भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार, उनको एक बार तो ज़रूर ख़त लिखें, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। और इसी जो ख़त लिखने की जो बातें हैं उसमें फहमी बदायूनी कहते हैं कि मैंने उसकी तरफ से खत लिखा, मैंने उसकी तरफ से खत लिखा और अपने पते पे भेज दिया। कभी ऐसा भी करके देखते हैं, क्या बता, बहुत अच्छा लगे। अगला गीत आपके लिए पेश है मैंने प्यार किया फिल्म

खनकती है तो लगता है कहीं बजती हो बांसुरी, बारिश के आसमां का धनक है ये प्यारी चूड़ियां। वक्त के अंधेरे जब भी निगलने लगते हैं हमें, अंधेरों में रोशनी सी चमकती हैं ये प्यारी चूड़ियां। लिखते हैं ओम गोपाल जी, और चूड़ियों की खनक का तो क्या ही कहना, बताएंगी आपको लता मंगेशकर जी। अगला गीत आपके लिए पेश है चांदनी फिल्म से।

श्रोताओं, पूर्वी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती एक रोगी को अतिशीघ्र 5 यूनिट ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया करके मोबाइल नंबर 9871159311 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 9871159311। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए पेश है एक शेर जिसे लिखा है पारुल भक्तानी ने। वो कहती हैं, फूलों की खुशबू में पत्तियों की शबनम पे लिखा है नाम आपका। फूलों की खुशबू में पत्तियों की शबनम में लिखा है नाम आपका। मेरी हर गज़ल के सब लफ्ज़ों ने प्यार से कहा है नाम आपका। जी हाँ, कभी कभी जो एक नाम है ना, वही काफ़ी रहता है अपनी दिल की बात बताने के लिए। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिल्म है राम लखन।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जब आपको समझ नहीं आता कि गीत का मजा उठाया जाए या उसकी जो फिल्मांकन की है उसका लुत्फ उठाया जाए। और अगला जो गीत है ना वो भी कुछ ऐसा ही है। खैर गाना तो मैं चला देती हूँ, आप खुद से सोच लीजिएगा हीरो हीरोइन को। और ये गीत आपके लिए पेश है पत्थर के फूल फिल्म से, गाया है SPB और लता मंगेशकर ने।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कई कारणों से ना फिल्मों में नहीं आते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, और ऐसा ही है अगला जो गीत, वो है अंदाज अपना अपना फिल्म से। ये गीत शायद फिल्म में शामिल नहीं हुआ, पर गाना बहुत अच्छा है और इस गाने को गाया है अभिजीत, देवाशीष, साधना सरगम और बहरोज ने।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ हम समाप्त करते हैं अपना कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। पर आप हमारे साथ बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ाना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह

0: ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। यहां दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेड कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। साथ ही ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 374 अंक गिरकर 76,570 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 141 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन और तन्वी ने डेनमार्क के अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री ने 29 और 30 अगस्त को ताशकंद की राजकीय यात्रा की। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट में हिस्सा लिया। ताशकंद में भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए स्तर पर ले जाने पर सहमति बनी, जबकि बिश्केक में प्रधानमंत्री ने रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें की। तो श्रोताओं, इस पूरे दौरे की प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं? उज्बेकिस्तान के साथ संबंधों में क्या नया जुड़ा? बिश्केक में हुई बैठकों का क्या महत्व रहा? और बदलती वैश्विक व्यवस्था में ये दौरा भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त को ताशकंद से अपने मध्य एशिया दौरे की शुरुआत की। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर हुई प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा थी। 30 अगस्त को दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की व्यापक वार्ता हुई। इसमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और UPI, ऊर्जा, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, अंतरिक्ष और इनोवेशन सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की गई। वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम रहा, भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 11 समझौतों और समझ पत्रों पर हस्ताक्षर किए। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आइए सुनते हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार को, जिन्होंने आकाशवाणी के साथ एक विशेष बातचीत में अपने विचार साझा किए।
2: द्विपक्षीय सहयोग जो है भारत का और उज्बेकिस्तान का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, वहां पर 3 बड़े बड़े भारतीय विश्वविद्यालय उज्बेकिस्तान में हमने एस्टेब्लिश किए हैं। एक तो MIT यूनिवर्सिटी की है, एक शारदा यूनिवर्सिटी की है जो है, और वहां पर हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया है। उसके बाद MIT यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है ताशकंद में, और एक और यूनिवर्सिटी संभ्राम यूनिवर्सिटी, वो भी वहां पर एस्टेब्लिश की गई है। एक तो जो द्विपक्षीय संबंध है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये सब क्षेत्र हैं जिनमें हम उज्बेकिस्तान के साथ सहयोग कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च विदेशी सम्मान ओली डराजली दोस्तलिक यानी ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट फ्रेंडशिप से सम्मानित किया।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक। यहां उनकी द्विपक्षीय कूटनीति के साथ साथ SCO समिट में भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। अब सुनते हैं दूसरी रिपोर्ट।
3: बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की। सबसे पहले बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की यह 2026 में पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, मोबिलिटी और पीपल टू पीपल संबंधों सहित भारत रूस सहयोग की समीक्षा की। 24 अगस्त को मॉस्को में हुई 27वीं इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक के परिणामों का भी स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि संघर्षों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को एंडलेस वॉर्स से एंडिंग वॉर्स की दिशा में आगे बढ़ना होगा और भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। आइए सुनते हैं।
4: हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है। गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग। इन सभी विषयों पर कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं।
3: प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत ईरान संबंधों और पश्चिम एशिया की ताज़ा स्थिति पर विचार साझा किए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी दी। आइए सुनते हैं।
5: The Prime Minister held a bilateral meeting.

0: also with the president of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the bilateral relationship. And the prime minister conveyed to President Pezeshkian how much he was looking forward to welcoming him in New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
1: इसके बाद प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादी झापारोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत किर्गिज संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत और किर्गिस्तान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में अपने विचार साझा किए। आइए सुनते हैं।
2: शिक्षा के क्षेत्र में भारत और किर्गिस्तान के बीच में पिछले बहुत वर्षों से खंजर नाम की एक्सरसाइज होती रही है, जिसका 13वां संस्करण अभी फरवरी 2026 में हुआ था। आईटेक प्रोग्राम्स को ले लें या जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं किर्गिज सिविल सर्वेंट्स की और उनके तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, या पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस को लेकर के, कल्चरल कनेक्ट को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में सहयोग के बहुत सारे रास्ते तलाशे गए हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक आईटी सुपर पावर के रूप में और खास तौर से ग्लोबल साउथ के देशों को अपने साथ लेकर चलने वाले आईटी सुपर पावर के तौर पर भारत ने अपनी एक बड़ी भूमिका तलाश ली है और दुनिया के तमाम देश उसको मान रहे हैं।
1: चौथी महत्वपूर्ण बैठक रही आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के साथ। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक सहयोग, फार्मास्यूटिकल्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की।
3: इस तरह बिश्केक में प्रधानमंत्री की कूटनीतिक गतिविधियों ने भारत के लिए रूस के साथ रणनीतिक सहयोग, ईरान के साथ क्षेत्रीय शांति, किर्गिज गणराज्य के साथ आर्थिक संबंध और आर्मेनिया के साथ रक्षा एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के अलग अलग आयाम सामने रखे। लेकिन इन सभी एंगेजमेंट्स का व्यापक मंच था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब सुनते हैं तीसरी और अंतिम रिपोर्ट। बिश्केक में आयोजित 26वां एससीओ समिट इस वर्ष विशेष महत्व रखता है, क्योंकि एससीओ अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में भारत की प्राथमिकताओं को तीन शब्दों में रखा, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। पहली प्राथमिकता है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। भारत का मानना है कि एससीओ क्षेत्र को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त रखने के लिए सदस्य देशों के बीच मजबूत सहयोग जरूरी है। दूसरी प्राथमिकता है कनेक्टिविटी यानी संपर्क। भारत मध्य एशिया और व्यापक यूरेशिया के साथ बेहतर कनेक्टिविटी को व्यापार और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानता है। तीसरी प्राथमिकता है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। भारत एससीओ देशों के बीच आर्थिक सहयोग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और युवाओं के लिए नए अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिवसीय यात्रा को देखते हुए इसके 3 प्रमुख आयाम सामने आते हैं। पहला, द्विपक्षीय साझेदारी। दूसरा, क्षेत्रीय कूटनीति। तीसरा, बहुपक्षीय सहयोग। तो श्रोताओं, कुल मिलाकर ये यात्रा बताती है कि भारत मध्य एशिया को केवल भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और सभ्यतागत साझेदारी के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देख रहा है। इसी के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है मोहित सिंह ने। नमस्कार।

0: प्राची प्रिया,
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। श्रोताओं, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर।
0: Benchmark domestic stock market indices declines for the third straight session. Sensex falls nearly 400 points. Nifty settles below 24,000 level. World Bank chief Ajay Banga praises India's economic growth, says it has potential to grow beyond 8% despite global economic headwinds, and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 400 अंक गिरा, वहीं निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ। वर्ल्ड बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा ने भारत की आर्थिक विकास वृद्धि दर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इसमें 8% से अधिक विकास करने की क्षमता है और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम घटे।

0: And before we take on our main stories, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं, अब जान लेते हैं शेयर बाजार की हलचल, यानी कि आज दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत लुढ़के। इससे लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 141 अंक लुढ़ककर 23,914 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले वैश्विक बाजार से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच बाजार गैप डाउन के साथ खुले। दोनों सूचकांक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे और पूरे दिन दबाव में नजर आए। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद उन्होंने नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई भी की।
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today, extending their losing streak to a third consecutive sessions. Sensex declined by 374 points to close at 76,570, while Nifty fell 141 points to settle at 23,914. In the broader market, Nifty Mid-Cap 100 index slipped 0.5%, while Nifty Small-Cap 100 index declined 0.4%. Elevated crude oil prices, rising global bond yields and future inflation concerns dented the Wall Street sentiment. Earlier, the markets opened with a gap down amid negative global cues. Both stock market indices traded within a narrow range and remained under pressure throughout the day. However, they paired some of the losses after the closing auction session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं। इनमें लगभग 1.5% की गिरावट आई। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.3% का नुकसान दर्ज हुआ। इसके उलट अडानी पोर्ट्स में 1.5% से अधिक की बढ़त हुई। बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड और एनटीपीसी में 1% की तेजी आई और टाइटन 0.7% बढ़ा।
0: In the sectoral indices in the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, auto declined by 1.7%, IT declined 1.2%, and insurance as well as capital goods dipped 1.1%. In contrast, utilities rose 1.4%, housing finance as well as energy gained 0.7%, and power added 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,560 companies declined, 1,799 companies advanced, and 217 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा में बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे कमजोर होकर ₹94.98 पर बंद हुआ। प्रकाश, हम देख पा रहे हैं कि भू राजनीतिक तनाव जो है वो बढ़ रहा है इस बीच, और उसका जो एक पूर्ण संकेत है वो हम बाजारों पर हम देख पा रहे हैं। मगर अगर हम आज के संदर्भ में बात करें कि आज जो बाजार में

0: वटाई है। इस पक्ष के अलावा और क्या ऐसे पक्ष रहे, और क्या ऐसे कारण रहे जिसने एक तरीके से पोषित किया इस गिरावट को?
1: देखिए, तीन चार कारण हैं जिसकी वजह से, एक्चुअली कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से बाजार लगातार गिर रहा है, एक रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। और आज तो जो मेन कारण है वो यही है कि दोबारा से एक युद्ध जैसी स्थिति आ गई मिडल ईस्ट में, मतलब कि अटैक्स और काउंटर अटैक्स दोबारा से शुरू हुए। यू कैन सी इट हैपनिंग
0: जी।
1: उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे पड़ रहा है, कच्चे तेल का प्राइसेस पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा देता है जब कच्चे तेल का प्राइसेस बढ़ता है। और फिर आपका
0: जिसका सीधा इम्पैक्ट भी हम देख पाते हैं,
1: हाँ हम जैस जो इम्पोर्टिंग मुल्क होते हैं उन पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और हम लोग इम्पोर्ट करते हैं एनर्जी का, पूरा क्रूड का 85% हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। और फिर आपका एविएशन, अब जैसे मैं रिपोर्ट्स अभी पढ़ रहा था कि जो अभी वार दोबारा एस्केलेट हो गई है ईरान और यूएस के बीच में, और उसका नतीजा ये कि फ्लाइट्स दोबारा डिसरप्ट होने लगी, जो फ्लाइट्स
0: यानी तेल से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं।
1: हाँ, तेल से, एक तो तेल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू है, जो आपका रूट्स हैं। तो ये सारा बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है। इस अच्छी खबर के चलते बाजार गिरा, सुबह तो काफ़ी गिरा हुआ था, फिर थोड़ी रिकवरी आई फॉर सेवरल टेक्निकल रीजंस। बाजार ने शायद, बिकॉज अभी तक बाजार जो था ना थोड़ा यूज तो हो रहा था मिडल ईस्ट में, ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई अब दोबारा से एस्केलेट नहीं होगा। लेकिन जो पिछले दो दिन में और आज सुबह खासतौर पे जो हुआ वो फिर काफ़ी चिंता का एक कारण बना बाजार के लिए, एंड वो आपके सामने जो हुआ।
2: Prakash ji, also very strange phenomenon in the market today. DIIs and FIIs were the net buyers in the market. We also saw positive sales data for the month of August by the auto sector. Yet, both the auto index fell by 1.7%. And of course, Nifty and Sensex also declined. How did that happen? Because, you know, FIIs and DIIs are the major buyers in the market. They move the market. Yet, we saw a decline today.
1: Well, Arjun, it's all the game of sentiment. You know, sometimes technicals tell you something. The overall sentiment is so dampening. There's no confidence, right? So when there's no confidence, the momentum gets lost. And, you know, the market comprises of mainly of trading. The traders, they are the nerve center of the market. They are the matchmakers.
2: We talk about retail segments and day traders?
1: No. Not the day traders do not comprise only retail. The big guys, the big institutional investors. So the, and across the continent after continent, you don't find any sentiment. Even futures now, US futures don't give us a kind of comforting situation. So where do you go and hide, so to speak? So the technical data sometimes may point otherwise, but the real fact is the sentiment is disrupted and it doesn't really augur well for the market.
2: We saw the IT index also fall, correct in fact, today. What is the future for the IT sector? Because it's all linked to not only the European but the US market as well.
1: Well, IT, when it comes to Indian IT, it is somehow conversely related to the entire AI play.
2: Also, the US dollar to the rupee, the exchange rate is very important in terms of their revenue.
1: Well, it provides them some kind of a advantage because of the currency arbitrage. But that said, it cannot be the only your profit center. You can't play on only on currency arbitrage. You need to have a bottom line. And the bottom line, so far as the IT is concerned, there was some kind of reassurance again emerging as if the AI play in which we have not, our at least Indian IT firms have not been able to participate aggressively or really not

0: to the extent we would like it, them to do it. But somehow AI play is not seem to be doesn't seem to be damaging so much as it was feared earlier. So let's see how it plays out in future.
1: प्रकाश, क्योंकि हम लोग क्षेत्र विशेष बात कर रहे हैं, तो ऐसे कोई चुनिंदा क्षेत्र आप बताना चाहें जो इस वक्त जो आम निवेशक हैं उनके लिहाज से निवेश करने के लिहाज से जो थोड़ा सा सेफ हो, इतनी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और अनसर्टेनिटीज हैं इस बीच भी?
0: आम निवेशक को बहुत सतर्क रहना चाहिए. उसको ऐसी कोई मजबूरी नहीं आज ही जाके.
1: सतर्क किस लिहाज से?
0: हाँ, सतर्क मतलब अब देखो क्या होता है, मेरे पास अगर 2 लाख रुपए पड़ा है, 4 लाख रुपए पड़ा है, मुझे कोई जल्दी नहीं कि जाके कल ही 4 लाख की खरीद कर लूँ. मैं स्टैगर तरीके से खरीदूँ, कभी 10,000 रुपए खरीदूँ, फिर उस शेयर्स की प्रोफाइल देखूँ. अगर मैं खुद करना चाह रहा हूँ, अगर म्यूचुअल फंड के रास्ते से मैं नहीं जा रहा, तो अगर मैं खुद करना चाह रहा हूँ और आम निवेशक हूँ और मेरे पास अगर 4 लाख रुपए पड़ा भी है, तो मुझे एकदम से नहीं जाना चाहिए. किसी ने बोल दिया, देख लिया, कुछ कर लिया. एंड आपको ये भी कई बार लालच आ जाता है कि यार मार्केट बहुत गिर गई है, हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी. आपको बड़े एनालिस्ट भी ऐसे मिल जाते हैं कि आई बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है. तो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी तो पिछले 2 साल से हम लोग कह रहे हैं, तो लेकिन 2 साल से निफ्टी तो नहीं खिसका. तो यही सब दे, आपको जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो अब मैच्योर होने लगा है, वो भी हेडलाइन पढ़ता है, वो भी देख रहा है जियो पोलिटिकल सिचुएशन कैसी है. तो वो आम निवेशक अब देखिए ना, वो जा रहा किस रास्ते से, सिप के रास्ते से जा रहा है, म्यूचुअल फंड के रास्ते से जा रहा है. दूसरी वजह जो हमारी मार्केट में ये भी है, जो अब लोगों को नज़र आने लगी है, कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है मार्केट में वो इम्पोर्टेंट अहम रोल प्ले करती है. और उस लिक्विडिटी को काफी हद तक सोख लिया जा रहा है. किससे? हमारे आईपीओ से. हमारे प्रमोटर्स रोज ब्लॉक डील्स हो रही हैं 7,000 करोड़ की. वो कौन बेच रहा है? हमारा प्रमोटर बेच रहा है. हमको ये लगता है कि FII छोड़ के भाग रहा है, लेकिन हमारा प्रमोटर जो है कहीं ना कहीं उसको भी लालच है, या ही वांट्स टू मेक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो वो भी बेच के अपना वो कर रहा है. तो इन द
1: प्रोसेस FIIs तो आ ही रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते
0: हो. नहीं, FIIs तो मोस्टली जा रहे हैं, ट्रेंड लाइन तो यही बता
1: रही है. जब आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज देख कर आते हैं.
0: ये हमारा जो प्रमोटर है तब का है, जो प्राइवेट इक्विटी के रास्ते से आया और फिर आईपीओ के रास्ते 6 महीने बाद ही वांट्स टू सेल इट. तो उसके उससे भी आपको सावधान रहना है भाई. अगर प्रमोटर का स्टेक नीचे जा रहा है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्किन इन द गेम, तो प्रमोटर का स्किन इन द गेम है कि नहीं आपको देखना है. सारी चीजों में आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा.
2: Well, let's move on to some more news now from the macroeconomic front. In an interview, World Bank President Ajay Banga said India has the potential to grow beyond its current 7 to 8% trajectory. Mr. Banga described the country's latest economic performance as robust despite global energy pressures, trade uncertainty, and impact of El Nino. The World Bank chief said the latest growth figures reflected the strength of India's underlying economy. The World Bank president pointed to growth in services and exports along with sustained investment. He said India was doing substantial work on roads, bridges, airports, power, water and digitization. Meanwhile, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met World Bank President Ajay Banga on the sidelines of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Asheville, United States. The two leaders discussed further strengthening the India-World Bank Group partnership. The discussions also covered a sector-based programmatic approach, I beg your pardon, to credit enhancement for infrastructure. Additionally, Nirmala Sitharaman met Kristalina Georgieva, Managing Director of International Monetary Fund, IMF, in the same event. Both the leaders emphasized the importance of continued India-IMF engagement in strengthening analytical capabilities, supporting sound macroeconomic policies, and contributing to global economic resilience. Ms. Kristalina appreciated India's strong economic performance and track record, noting the strength built by the Indian economy. Prakash ji, if you look at the underlying performance so far for the first quarter, our real GDP growth was at 7.8%. And if you compare it to a year ago, it was 6.9%. We're into the second quarter right now of the financial year. The nominal GDP, that is when you don't take into account inflationary pressures, has been more than 10% for India. Investments in that period have gone up by 12%, household consumption going up by 7%, and exports going up by 12%. But how do you see imports impacting inflation and our current account deficit to what Ajay Banga, the World Bank president, is saying because of what's happening globally and the uncertainty in the market when it comes to trade and commerce?
0: Well, it's nice to hear Mr. Banga, Ajay Banga, say that India's underlying economy, the underlying strength

0: In more news, India's current account deficit widened to $4.2 billion, or 0.5% of GDP, in the first quarter of the current financial year. It was 0.4% of GDP in the same quarter a year ago. According to RBI preliminary data, the merchandise trade deficit rose by around $17 billion to over $86 billion during the same period. On the other hand, net services receipts increased by $3.5 billion to over $51 billion. Personal transfer receipts, mainly remittances from Indians working overseas, rose around $10 billion. On the investment front, FDI inflows improved to $6.1 billion. However, foreign portfolio investors have pulled out over $9.5 billion, compared with an inflow of over $1.5 billion in the same quarter last year. During the quarter, India's foreign exchange reserves depleted by $8.1 billion on the balance of payments basis. Your brief comments on this. We know that FDI investments have actually gone up. FPI have been withdrawing, which is why it has been affecting the Sensex Nifty to some extent, offset by the DIIs. But do tell us about our current account deficit because of what's happening to the Strait of Hormuz.
1: Well, Arjun, as per the data that you read out, 0.5% of GDP current account deficit, even after widening, it's not an alarming thing. It's manageable. Given the size of our economy, given the growth potential, growth that we are witnessing, and the potential of growth that is around, so this much, any developing country, for any developing country with appetite for growth, this kind of a current account deficit is not a kind of a cause of concern.
2: आइए अब रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4% गिरा, जबकि जापान का निकेई 2.8% नीचे आया. आर्थिक मोर्चे पर डेटा और सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार दक्षिण कोरिया का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त में सालाना आधार पर 3% से अधिक बढ़ा, जो जुलाई में 2.8% था. वहीं कोर महंगाई, जिसमें खाने पीने की चीजों और ऊर्जा की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता, अगस्त में सालाना आधार पर लगभग 3.5% बढ़ी, जो जुलाई में 2.5% से अधिक थी. बात यूरोपीय बाजारों की करें तो यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 0.5% से नीचे कारोबार कर रहा था और लंदन का फुटसी लगभग 0.5% नीचे कारोबार करता नजर आया. प्रकाश जी, कॉस्पी 4% गिरा, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, और निकेई में 2.8% की हमने देखी कि गिरावट दर्ज की गई है. अगर हम बात कॉस्पी की करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो CPI है उसमें भी जो है बहुत ही इम्प्रेसिव तो ऐसा कुछ नहीं रहा है. तो किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या ये वही जियोपॉलिटिकली जो चीजें हैं वो केवल वही इम्पैक्ट कर रही है?
1: कंटेजियस है ना ये, हर तरफ गिरावट ही गिरावट है. कहीं तो आपको हरा नहीं नजर आ रहा. आप पूरा भूगोल देख लीजिए, हर तरफ लाल ही लाल नजर आएगा.
2: अपनी तरफ भी, इनकी अपनी तरफ भी महंगाई
1: बढ़ी. हम लोग तो मिडल में रहते हैं. आप सुबह एशिया देखिए, फिर आप हमारे, हम भी एशिया में आते हैं, एशियन मार्केट, उसके बाद यूरोप चले जाइए, फिर आप अमेरिका चले जाइए, हर जगह लाल ही लाल नजर आएगा. तो आज तो लाल ही छाया हुआ है. उसके रीजंस हैं, मैं अर्जुन जी से पहले बात कर रहा था कि जो स्क्रिप्ट है, जब से ये वार चली है स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रही है. एक तरह के फंसा हुआ है पूरा मार्केट. और कुछ, हालांकि कुछ मार्केट से कोरिया वॉज डूइंग वेल अ फ्यू मंथ्स अगो, अ फ्यू वीक्स अगो, थैंक्स टू AI प्ले. तो लेकिन अभी तो सिचुएशन कुछ खराब ही है ना.
2: तो 8% तक की बढ़त देखी है.
1: हाँ, तो उनके लिए तो गिरावट है कोई, लेकिन आज जो गिरावट है कोई अचंभा थोड़ी है. कोई बड़े की एक्सपर्ट्स की जरूरत भी नहीं है कि बोलने के लिए. तो इट्स सो ऑब्वियस.
2: नहीं, शायद CPI का जो डेटा आया है वो भी,
1: उन्हें CPI डेटा क्या बता रहा है कोरिया में क्या, वो मैंने जैसे मैं अर्जुन जी से बता रहा था कि सेंटिमेंट जो होती है ना वो मैटर करती है. जो भाव है ना, खबरों का जो भाव इतना ओवरवेलमिंग है,
2: प्रवाह है,
1: भाव है, उसने आपको सब स्वे अवे कर दिया सब कुछ.
0: जी. Moving on to the US stock market, Wall Street major stock market indices declined for the third consecutive session yesterday. Nasdaq composite fell 1%, while Dow Jones industrial average slipped 0.8% and the S&P 500 lost 0.7%. Markets remain under pressure as investors weighed the possibility that the Fed Reserve could tighten monetary policy later this

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। सीईओ ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और राम मंदिर परिसर से संबंधित मुख्य परिचालन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी है। इनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के

0: महेश भगचंद का और शिकोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य निर्मला यादव शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉ. सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिनों के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल्स संसद के अध्यक्ष अजारेल अर्नेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत से राहत सामग्री लेकर पांचवां विमान दल आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर किए जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। बलजीत कौर और स्कालजेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। बंबई शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi participated in the valedictory session of the departmental summit of the Ministry of Jal Shakti in New Delhi today. The two-day departmental summit was the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India, deepen cooperative federalism and foster collective ownership of national priorities through closer collaboration between the centre and the states. The initiative provided a structured platform to jointly deliberate on critical sectoral priorities and accelerate implementation and outcomes. In Uttar Pradesh, former commander of the Western Air Command, retired Air Marshal Jitendra Mishra, is appointed as the first CEO of the Sriram Janmabhoomi Kshetra Trust in Ayodhya today. The appointment was announced after the meeting of a trust held at Maniram Das Chhawani in Ayodhya under the chairmanship of Trust President Mahant Nritya Gopal Das. The CEO will be responsible for overseeing the administrative functioning of the trust and handling key operational responsibilities related to the Sriram Temple Complex. Trust Interim General Secretary Krishna Mohan informed about the appointment of three new members, which include Madan Mohan Pandey, a senior advocate from Ayodhya, Mahesh Bhagchandka of Delhi, and retired principal Dr. Nirmala Yadav from Shukohabad. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has reached Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said the aircraft carried 11-member rescue team with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. A 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal has risen to 1,127, with nearly 4,900 still missing as rescuers battled rain and debris. Nepal Prime Minister Balendra Shah told Parliament today that the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Mr. Shah also noted that Nepal has already received messages of goodwill and material assistance from multiple countries and multilateral partners. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met Managing Director of the International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, and the World Bank President Ajay Banga on the sidelines of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Asheville, United States. She discussed the global economic outlook and India's evolving growth trajectory with Ms. Georgieva. With Mr. Banga, the finance minister discussed further strengthening the India-World Bank Group partnership. The discussions also covered a sector-based programmatic approach to credit enhancement for infrastructure. Ms. Sitharaman also met the European Commissioner for Economy, Valdis Dombrovskis. Japanese credit rating agency JCRA has upgraded India's sovereign rating to a negative from BBB positive, citing the country's solid economic growth, robust private consumption and public investment, along with improvements in the soundness of its financial system. In an official statement, JCRA said the Indian economy has maintained a high growth rate of more than 7%, supported by strong private consumption and public investment. The Supreme Court today said it will take up the reconstitution of the Bar Council of India after the newly elected state bar councils complete the statutory process for constituting the BCI. The Apex Court was hearing pleas challenging the continued occupation of the BCI chairperson's post by senior advocate Manan Kumar Mishra and the purported extension of his tenure till 2030. The Bombay High Court today ordered a CBI probe into the death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput, and pulled up the Mumbai police for failing to register an FIR for 6 years. A division bench of Justices Sarang Kotwal and Ranjit Sinha Rajiv Bhosle said that an investigation cannot drag on for an inordinately long period, emphasizing that a central agency probe was necessary to ensure a proper and substantive investigation into the matter. In badminton, India's Kidambi Srikant and Tanvi Sharma advanced to the second round of China Masters Super 750 tournament with straight game victories in respective singles event in Shenzhen, Guangdong province. Men's double duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty and the mixed doubles pair of Dhruv Kapil and Tanisha Krasto also moved to the next round. And that is the end of this news bulletin.
3: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। किर्गिज गणराज्य यानी कि किर्गिज रिपब्लिक के बिश्केक में कल शुरू हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO समिट
4: आज संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज SCO समिट के राष्ट्र अध्यक्षों के परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस साल SCO की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज SCO समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। अम्बेसडर तायल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद
4: अम्बेसडर तायल। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सबसे पहले मैं आपसे ये

0: जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने SCO के लिए भारत के विजन के 3 मुख्य स्तंभों पर जोर दिया है, जो कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं?
1: शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापित हुआ था, इसको 25 वर्ष अब हो गए हैं। ये एक बहुत सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया है, इसके 10 सदस्य हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जो कहा, वो एक भविष्य के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या दिशा होनी चाहिए और कहाँ अधिक ध्यान देना चाहिए, उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और बहुत ही समराइज करते हुए उन्होंने कहा कि 3 स्तंभ हैं जो बहुत मुख्य हैं SCO के लिए: सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर, अपॉर्चुनिटी। सुरक्षा तो सब जानते ही हैं कि देशों की सुरक्षा बाहरिक और आंतरिक बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी भी देश को, किसी भी रीजन को विकास की तरफ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उस पर उन्होंने विशेष रूप से आतंकवाद का जिक्र किया। कनेक्टिविटी में जो शुरू में जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी तो केवल 6 मेंबर्स थे और उसमें 4 सेंट्रल एशियन जो देश हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, वो लैंड लॉक्ड है, उनका कोई समुद्रिक किनारा नहीं है। तो उनको एक कनेक्शन उनका केवल या तो ऊपर उत्तर दिशा में रशिया के द्वारा है या पूरब दिशा में चीन के द्वारा है। तो वो ये चाहते हैं कि भारत की तरफ, दक्षिण एशिया की तरफ भी उनका कुछ रास्ता बने, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए, और एक ईरान की तरफ भी रास्ता बने। तो उसमें भारत ईरान की तरफ से जो रास्ता है उसमें बहुत उनका मदद कर रहा है और उसमें कुछ अभी चैलेंजेस आ रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी तीसरी चीज उन्होंने जो कहा कि जो युवा हैं उनके लिए और सब नागरिकों के लिए किस तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उनसे उनके अवसर बढ़े, उनका विकास हो और उनको सहूलियत हो, इस दिशा में कार्य करना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की जरूरत पर भी काफी जोर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन और सेफ हैवन्स जैसी चीजों को भी उन्होंने अपने संबोधन में शामिल किया। जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री तो इस टेररिज्म के पूरे इकोसिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए कई बार अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन जब वैश्विक मंच पर ये बात कही जाती है, ये बयान आता है, तो पूरी दुनिया इसे कैसे देखती है और ये भारत के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है?
1: पूरा क्षेत्र पीछे सालों में आतंकवाद से जूझता रहा है। भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, चीन में भी कुछ घटनाएं उइघुर एरिया में हुई थी, और अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कंट्रोल पूरा हो गया है तो आतंकवाद में इस क्षेत्र में कमी आई है। पर भारत अभी भी आतंकवाद के घेरे में है और हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये आतंकवाद का जो स्रोत है वो पाकिस्तान है, और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस सभा में मौजूद थे और वहां बैठे हुए थे जब प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो हर व्यक्ति जो आतंकी कार्रवाई करता है, जानमाल को नुकसान पहुंचाता है, वो आतंकवादी है। उसको ये ना देखें कि वो कहां से आता है, क्या है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हर देश, जो भी उनके यहाँ जो इकोसिस्टम है, उसको पूरा खत्म, नेस्तनाबूद करे। और इस पे फिर संकेत उनका पाकिस्तान की तरफ ही था, क्योंकि उन्होंने सेफ हेवेंस की बात की, तो पाकिस्तान में अभी भी दुनिया भर के आतंकवादियों को छुपने का जगह मिलती है। सब जानते हैं ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया था। रिक्रूटमेंट वहां मदरसों के द्वारा हो रहा है, रेडिकलाइजेशन मदरसों के द्वारा हो रहा है, और फाइनेंशियल नेटवर्क्स भी पाकिस्तान में पल रहे हैं, पनप रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये संदेश सब मेंबर देशों के लिए था, पर मुख्यतः ये पाकिस्तान के लिए था।
0: जी एम्बेसडर तायर, जैसी जानकारी आपने अभी हमारे श्रोताओं को दी उसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि SCO बिश्केक घोषणा पत्र नार्को आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन करता है और साथ ही साथ संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग को भी मजबूत करता है। आगे बढ़ते हुए एम्बेसडर तायर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आतंकवाद पे कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो इस स्टेटमेंट को, इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं?
1: जैसा कि हमने देखा और पूरी

0: दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कहता है कि वो तो खुद आतंकवाद से प्रभावित है, पर उसके यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी पनप रहे हैं, पल रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय, जब भारत के मिसाइल्स और रॉकेट्स और का हमला हुआ, तो किस तरह कई उनके आतंकवादियों के गढ़ जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी उनको ध्वस्त किया गया। तो हर देश जिसमें उनका इशारा मुख्यतः पाकिस्तान के ऊपर था, वो कोई डबल स्टैंडर्ड ना रखे और आतंकवादी चाहे वो उनके देश पर हमला कर रहे हो या उनके पड़ोसी देशों पर हमला कर रहे हो, जैसे कुछ आतंकवादी अब अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान से चाह के अफगानिस्तान को भी प्रभावित कर रहे हैं, भारत को तो कर ही रहे हैं। तो सब जगह वो पाकिस्तान अपने यहाँ जितने आतंकवादी हैं उन सबको खिलाफ कार्रवाई करे, और जितने चैनल्स हैं उनको जो उनको सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, पैसा उनके लिए इकट्ठा करते हैं, उनको भी बंद कर।
1: अम्बेसडर तायर, आगे बढ़ते हुए पश्चिम एशिया में मौजूद घटनाक्रम को देखते हुए प्रधानमंत्री के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ता है और व्यापार को आसान बनाते हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया, और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रास्ते भी तलाशने बहुत जरूरी है। तो आखिर आप इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं?
0: ये भारत और मध्य एशिया के बीच में बहुत ही मधुर संबंध हैं, पर व्यापार नहीं हो पाता है क्योंकि बीच में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान हमारे व्यापार को, हमारे ट्रक्स को वहाँ नहीं जाने देता है। तो भारत ने बहुत प्रयत्न किया कि ईरान के द्वारा एक नया रास्ता खोजा जाए, चाबहार पोर्ट जो ईरान में है उसमें भारत का निवेश है और एक बर्थ भारत कंपनी चलाती है। पर जो वेस्ट एशिया में जो इस समय युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें ईरान के ऊपर सैंक्शंस और बढ़ गई हैं और ईरान के द्वारा और ईरान के थ्रू कोई भी, जैसे भारत एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कर रहा था कि बॉम्बे से चाबहार जाए शिप से सामान कंटेनर्स, और उसके बाद रेलवे से, और उसके बाद ट्रक से अफगानिस्तान के थ्रू, पर अब वो सब की संभावना कब दिखती है? तो इसलिए कोई नया सोच दुनिया को और इस रीजन के देशों को सोचना होगा, उसकी तरफ इशारा हमारे प्रधानमंत्री ने किया।
1: अम्बेसडर तायल, प्रधानमंत्री ने हमेशा ही कहा है और भारत ने भी हमेशा ये जोर दिया है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही किसी भी वॉर का समाधान निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि बैटल फील्ड पे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि समाधान खोजने होंगे जो कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू होंगे। तो इसको वर्ल्ड कैसे देखता है?
0: को पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है और समझती है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जो देश है वो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का है, हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी को भारत ने समर्थन किया है, और प्रधानमंत्री मोदी के इतने अच्छे संबंध दूसरे देशों के राजनेताओं से हैं कि वो बात साफ साफ कर सकते हैं और उसको दूसरे लोग बुरा नहीं मानते। जैसे कि 2 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन को उन्होंने बड़ा पब्लिक स्टेटमेंट में कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, और उसको पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरह उसको लिया गया था और समझा गया था। और इसी तरह कल जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमारे प्रधानमंत्री की बैठक हुई, उसमें जो पब्लिकली जो बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये एंडलेस वॉर हो रही है, अब इसको एंड ऑफ वॉर की तरफ ले जाइए, कि जो वॉर जो खत्म ही नहीं हो रही है उसको खत्म समाप्ति की तरफ ले जाइए। तो ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज है, एक जो अपना निर्णय है वो तो हर देश के राजनेता अपने अनुसार लेते हैं, अपनी समझ के अनुसार लेते हैं, पर दुनिया क्या कह रही है, जो एक अच्छा विचार व्यक्त करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान से लोग सुनते हैं और जहां तक हो सकता है उस पर अमल करने का भी प्रयत्न करते हैं। तो एक बहुत अच्छा संदेश भारत के प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूँ कि सब देशों को दिया, राष्ट्रपति पुतिन को भी दिया, और दुनिया के और जहां जहां भी युद्ध हो रहा है वहां भी ये संदेश बहुत ध्यान से गंभीरता से सुना जाएगा।
1: अम्बेसडर तायर, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी देशों को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना भी अत्यंत ही आवश्यक है। आप इस स्टेटमेंट को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: भारत यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है और सभी जो देश हैं सब यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं और उसके चार्टर को मानते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा जो एक बिंदु है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का है सब देशों का, और उसको बहुत मजबूती से प्रधानमंत्री ने सामने रखा और

0: उन्होंने ये कनेक्टिविटी के संदर्भ में भी ये बात कही, क्योंकि जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भारत भारतीय कश्मीर से पास होता है, जो कि भारत का क्षेत्र है। तो उनका ये भी एक क्लियर उनका कहना था कि जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हो उनमें सब देशों की सॉवरेनिटी की सुरक्षा की जाए। और इस संदर्भ में उन्होंने एक बात और कही कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उसमें ऐसा ना हो कि जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो जाए। ये एक इशारा मेरे समझता हूँ कि चाइना की तरफ था, जिन्होंने कई देशों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अपना लोन दिया है, पर वो ऊंचे ब्याज पर दिया है, जो कि जैसे श्रीलंका है, उनको हम्बनटोटा के लिए वो कर्ज चुकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
1: अम्बेसडर तायल, आखिर में आपसे बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों में पीपल टू पीपल टाइज को हमारे सहयोग के केंद्र में रखना चाहिए, तो पीपल टू पीपल टाइज कितने महत्वपूर्ण होते हैं?
0: देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अब 25 वर्ष हो चुके हैं, तो अगले 25 वर्ष प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में पीपल टू पीपल संबंधों को सेंटर ऑफ कोऑपरेशन बिल्कुल बीच में रखा जाए, क्योंकि जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं इस समय तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, और कुछ इस तरह का सोच है कि जो विनर टेक्स ऑल, कि जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो कहीं भी उस पर सोच नहीं रहा। तो इस संदर्भ में लोगों में डायरेक्ट संबंध होंगे, डायरेक्ट डायलॉग होगा, कल्चरल एक्सचेंजेस होंगी, फिल्में साथ बनेंगी, टूरिज्म होगा, मेडिकल के लिए आएंगे। इससे लोगों में जो विभिन्न देशों से आते हों, विभिन्न धर्म के हों, पर उनमें भाईचारा बढ़ता है, उनमें एक संवाद बढ़ता है, और पूरे विश्व में एक हार्मनी का, एक शांति का माहौल पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा सोच प्रधानमंत्री ने SCO मेंबर्स के सामने रखा, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत कॉन्क्रीट प्रपोजल भी रखा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिविलाइजेशनल डायलॉग, जो उन्होंने पिछले वर्ष उसकी बात की थी, कि भारत में ये पहला डायलॉग आने वाले महीनों में होगा, कि जिस तरह बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं और हमारे जो देश के चिंतक वर्ग है वो कहता है कि भारत का दुनिया को विरासत सोच की है, थॉट्स की है, फिलॉसफी की है, दर्शन की है। हमने कभी किसी दूसरे देश को कॉन्क्वेस्ट नहीं किया कि अपने यहाँ से हमने फौजें भेजी, पर अच्छे विचार भेजे और अच्छा ज्ञान भेजा, जिसको पूरे विश्व ने उसको स्वीकारा और उसको अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री अब उस दिशा में कार्य करने का कुछ निर्णय उन्होंने बनाया है।
1: अम्बेसडर तायल, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आए और आपने इतने विस्तार से हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। सुर्खियों में सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के आर्थिक विकास में स्वदेशी और सतत उपभोग की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार KG सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी गुड्स को इम्ब्रेस करने और अननेसेसरी सोने के परचेज और डेस्टिनेशन वेडिंग देश के बाहर जाके करने के लिए अवॉइड करने की अपील की है। एक वीडियो मैसेज इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने इंडियंस से लीजर ट्रिप्स देश के बाहर जाके ट्रैवल करते हैं उनको लिमिट करने और देश के बाहर जाके शादी में पैसा खर्च करने से बचने की अपील की है, और ये भी कहा है कि जब तक ही जरूरी ना हो तब तक गोल्ड की भी परचेज ना करें। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संदेश देशवासियों के लिए क्या था।
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए,

0: ये पुरुषार्थ के लिए एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है, और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए, और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए।
1: प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की 7.8% इकोनॉमिक ग्रोथ पर देश को बधाई दी और कहा कि सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ज्यादा इम्फोसिस और महत्वता देने की जरूरत है। स्वदेशी सस्टेनेबल कंजम्पशन और इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री KG सुरेश। मिस्टर सुरेश, आपका आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद, नमस्कार।
1: सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज करने के बीच आखिर डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, और अगर हम इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं तो इसका इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है?
2: देखिए, हम जितना देश के अंदर के प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे उतना हमारा आयात कम रहेगा, और जब आयात कम होगा तो उसका मतलब है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है, विदेशी जो हमारे पास एक्सचेंज है, वो हम बाहर नहीं खर्च करेंगे, तो निश्चित ही वो जब बढ़ेगी तो उसका निश्चित ही हमारे पूरे इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे प्रभाव पड़ेगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है इस पर फर्क पड़ेगा। अगर हम आयातित, अब हम प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि भाई विदेशों में आप जो है घूमने फिरने के लिए कम, भारत में बहुत सारी जगह है जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है, और जिससे जो है लोकल इंडस्ट्री को, लोकल सर्विस सेक्टर को बहुत जो है समर्थन मिलेगा, तो आपको वेडिंग डेस्टिनेशन भारत के अंदर है तो कितने लोगों के लिए रोजगार निर्मित होगा। वो विदेशियों के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ कह रहे हैं कि भारत को जो है, भारतीय प्रोडक्ट को, भारतीय पर्यटन स्थलों को, उनको हमको जो है प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा कि विदेश में जाके जब आप पैसा खर्च करेंगे तो वो आप फॉरेन एक्सचेंज ही आप खर्च कर रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो आप खर्च कर रहे हैं, तो वो जब खर्च होगा, जब आप कहते हैं कि सोना, हमको सोना सबसे ज्यादा जो है, अगर आप देखेंगे कि पेट्रोल के बाद हमारा सबसे ज्यादा खर्चा जो है सोना आयात करने में होता है। पेट्रोल तो मजबूरी है उसके बगैर, लेकिन सोना तो कोई मजबूरी तो है नहीं हमारी, लेकिन अगर हम सोना कम खरीदते हैं, अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, गोल्ड बॉन्ड्स का ऑप्शन है। सोना किस लिए लेते हैं? सोना इसलिए कि भविष्य के लिए हमारा जो है, समझ लीजिए कि कुछ आपके शादी ब्याह के लिए कुछ होता है, उसको छोड़कर बाकी सोना लेने का जो पूरी प्रथा है वो है कि हमारे भविष्य में कोई संकट आए तो उस वक्त वो काम आएगा। अब आज गोल्ड बॉन्ड्स आप लेंगे आज का रेट का, वही आपको रिटर्न मिलेगा, तब भी तो बात तो फिर उतना ही हुआ। तो मैं समझता हूं कि हमको समय के अनुसार जो है हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाना है, और जैसे ही इंडस्ट्री हमारे लोकल स्वदेशी हम चीजों को खरीदेंगे तो निश्चित ही जो पैसा विदेशी कंपनियां आके यहाँ कमाती है उसको निश्चित ही जो है उससे ज्यादा मुनाफा हमारे कंपनियों को मिलेगा, हमारे कंपनियों को मुनाफा लगेगा तो वो पैसा फिर भारत में ही जो है निवेश होगा, भारत का पैसा भारत में ही निवेश होगा, और उसका लाभ भारतीयों को ही मिलेगा, भारतीय उद्योग को मिलेगा, भारतीय लघु उद्योग है उनको मिलेगा, मध्यम उद्योग है उनको मिलेगा, तो इसका बहुत बड़ा असर जो है पूरे अर्थव्यवस्था में होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमको स्वदेशी सिर्फ एक नारा नहीं है, स्वदेशी पूरा एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें हम आयात जहां मजबूरी हो, जिसको कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, कुछ चीजों का हमारे पास विकल्प नहीं है, पेट्रोल की हमारे पास जरूरत है, उसके लिए भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑफशोर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनशोर तो है ही, तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही हमारे आर्थिक हमारे लोकल इकोनॉमी को तब बूस्ट मिलेगा, यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, यहाँ के जिसे कहते हैं कि जो अन्य उद्योगों को बूस्ट मिलेगा अगर हम अपना पैसा भारत के अंदर ही निवेश करते हैं। तो स्वदेशी प्रोडक्ट्स में एक तो स्वाभिमान की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। पूरी दुनिया आज भारत के प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हो रही है, खासकर हमारे जो आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें तो हमारा जो है महारत है, पूरे दुनिया में वो आप देखेंगे, दुनिया भर में

0: आप घूमेंगे तो हर डेकोरेटिव रूम में आप देखेंगे कि भाई भारत के ब्रास के आर्ट पीसेस लगे होंगे, मार्बल के लगे होंगे। तो
1: जी
0: ये मैं समझता हूं कि ये हमारी पूंजी है, हमारी विरासत है ये,
1: जी
0: तो हमें गर्व भी होना चाहिए इसको उपयोग करते हुए, और उसका एक आर्थिक भी उसका एक बहुत बड़ा पक्ष है।
1: जी जैसे आपने समझाया हमें, वो तो आखिर है ही। उसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में देशवासियों को कहा, उन्होंने सस्टेनेबल कंजम्पशन, क्योंकि आपने कहा कि भारत की विरासत है और भारत में जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो तो है ही, उसके अलावा भी जो हमारे हमारी जो जीवन शैली है उसमें हम काफी ज्यादा नेचर का ध्यान रखते हैं। और यही इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने भारतवासियों से अपील भी की कि सस्टेनेबल कंजम्पशन की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि सस्टेनेबल कंजम्पशन का क्या रोल है इंडिया से बाहर होने वाले अननेसेसरी स्पेंडिंग को रोकने में, रिड्यूस करने में। क्या रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन सिर्फ प्रकृति के लिए ही जरूरी है या इसका कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें हो सकता है?
0: भारतीय जो व्यंजन है, भारतीय चीजें लेंगे तो जो भारतीय हमारे जितने भी आउटलेट्स हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारे जो, चाहे अभी अब हम हेल्दी फूड्स की तरफ जाएं, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने मनाया था। मिलेट जो है उससे जो है आप देखेंगे कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, और साथ ही साथ जो भी मिलेट को पैदा करते हैं हमारे किसान भाई, उनको भी जो है उसका बहुत आकर्षक मूल्य मिलता है। तो इसलिए विदेशी चीजें आयात करके खाने से कितना बेहतर है कि हम अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ जो है हम ऐसी चीजें जिससे जो है, जिसको ऑर्गेनिक है, जो केमिकल बेस्ड नहीं है, किसी रसायन पर जो है निर्भर नहीं है, उन चीजों को हम प्रमोट करें। देश के अंदर जो है कई चीजें आज जो है गोबर से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कई चीजें जो है हम जो सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं। पेड़ को काटना, आज आपको सुनने में ताज्जुब लगेगा, कई देश में भोपाल जैसे जगह में भी शमशान घाट में गोकाष्ठ का उपयोग होता है, यानी कि जो गोबर के कंडे होते हैं उनको लकड़ी की जगह, तो यानी कि लकड़ी कम यूज किया तो हमारे जो बड़े जंगल है, हमारा जो पर्यावरण है वो बचा रहेगा। तो हमारे पास विकल्प है, हमारे समाज ने वो विकल्प तैयार किया है सदियों से कि हम खर्चा को कैसे कम कर सकते हैं। हमने जो है खादी जैसे प्रोडक्ट्स है हमारे हमारे यहाँ हमेशा हमारी परंपरा रही है, रिसाइकिल का, रियूज का, रेड्यूस का। हम कभी उपभोक्तावादी कभी नहीं रहे, जितना आवश्यकता है उतना ही हम लोग खर्च करते रहे हैं। आज एक नई ट्रेंड है उधार लेने की, डेट सिस्टम का, कि हम जो है जो चीजें आवश्यक नहीं भी है उनको भी हम खरीदते हैं शौकिया। तो मुझे लगता है कि पुनः हमको वापस अपने पुराने उस सोच में जाना पड़ेगा जहां जरूरत की चीजों को लें और स्वदेशी चीजों को लें, और उससे जो है हमारा जो स्थानीय उद्योग है, चाहे वो लघु उद्योग हो चाहे वो ग्रामीण उद्योग हो, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। और इसके लिए जो है आज प्रधानमंत्री स्वयं, चाहे वो अपने मन की बात के जरिए हो या अलग अलग युवाओं को संबोधन करते हुए भी, वो हमेशा बात करते हैं। और भारत में ये सिर्फ ग्रामीण और खादी की बात नहीं कर रहा हूं, आज हर क्षेत्र में, जिसको कहते हैं चिप्स टू शिप्स, प्रधानमंत्री ने ये शब्द का प्रयोग
1: जी
0: किया था IIT के कॉन्वोकेशन में, दीक्षांत में, और उसमें उन्होंने जो कहा कि आज हमारा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, सिलिकॉन चिप से लेकर हम लोग जो है आज जहाज तक हम बनाने की क्षमता रखते हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, बंदरगाह के लिए जो है समुद्री जहाज बना रहे हैं। तो हमारे अंदर क्षमताओं की कमी नहीं है, लेकिन हमको भी चाहिए कि हम उन चीजों को प्रमोट करें। तो ये जो पहले भी ये कॉन्सेप्ट कुछ चलाए गए थे, बी इंडियन बाई इंडियन, स्वदेशी मूवमेंट हमारा जो है स्वतंत्रता जो संग्राम के दौरान, वो अपने आत्मविश्वास के लिए, स्वावलंबन के लिए, उसके लिए हमने ये शुरू किया था, और विदेशियों का बहिष्कार करने के लिए गांधी जी राष्ट्रपिता ने जो है हमको ये आह्वान दिया था।
1: जी
0: और आज जो है हम उसी को जो है एक व्यापक रूप में अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अपने आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
1: भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत बड़ा एक योगदान दे रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो आज का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 16 से 17% होता है और ये 27 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स को भी इम्प्लॉय करता है। आपके विचार में सरकार की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बूस्ट कर रही हैं और इसके प्रोग्रेस को इतना एक्सेलरेट कर रही हैं?
0: जो सबसे बड़ा तो आपका मेक इन इंडिया है, जिसके तहत जो है आप जिन चीजों के लिए हम विदेशों में निर्भर रहते थे, जिस टेक्नोलॉजी को हमको आवश्यकता है, हमें जो अनावश्यक है उस पर नहीं, जो कृत्रिम टेक्नोलॉजीज हैं, जो कठिन है, जो मुश्किल है, जो हमारे पास नहीं था, तभी मैंने कहा कि जिसको जैसे सिलिकॉन चिप्स है, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है, स्पेस के इक्विपमेंट है, आज हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा एक तो मेक इन इंडिया, और दूसरा निजी क्षेत्रों को जो खुली छूट मिली है। पहले हम लोग कहते थे कि भाई रक्षा का क्षेत्र है आपका।

0: स्पेस का क्षेत्र है, ये हम सिर्फ अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से ही करेंगे। तो इसमें जो है ना अच्छे लोगों को रिटेन कर पाते थे, क्योंकि सरकारी तंत्र में जो है कई सीमाएं हैं, आप चाहते हुए भी अच्छे टैलेंट को आप रोक नहीं सकते, ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम प्राइवेट में दे रहे हैं। तो ताकि जो विदेशों में जो नासा जैसे जगह में जा रहे हैं उनको हम वही सहूलियतें, वही तनख्वाहें, अच्छे लोगों को, विदेश में लोग क्यों जाते हैं, ज्यादा तनख्वाह मिलती है, जीवन शैली बेहतर होती है, तो आज अगर हम वो विकल्प अगर उनको यहां दे देंगे तो वो अपना देश छोड़ के क्यों जाएंगे, यहां जितनी सुरक्षा है कहां मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि वो माहौल हमको अगर देना है तो वो सरकार आज प्रयास कर रही है, चाहे वो निजीकरण के माध्यम से हो, चाहे वो निजी कंपनियों को मदद करने के माध्यम से हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से हो, कई जैसे गिफ्ट सिटी जैसे अहमदाबाद में बना है, ऐसे क्षेत्रों के माध्यम से जो है हम आईटी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अन्य सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स हमने, बहुत टैक्स हॉलीडेज दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारत एक सर्विस ओरिएंटेड, पहले तो एग्रीकल्चर था, आज भी काफी एग्रीकल्चर हमारे यहाँ होता है, लेकिन सर्विस सेक्टर को ज्यादा हमने बढ़ोतरी देखी। लेकिन अगर हम विश्व में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं तो हमको एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना पड़ेगा। हम रॉ मटेरियल्स पहले जो है हम निर्यात करते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम विदेशों से आयात करते थे, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो रॉ मटेरियल लोहा हो, जो है एक्सपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ आयरन की स्टील प्लांट्स हम लगा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी, मतलब जो विदेशी भारतीय मूल के जो है उनको लेकर हम आ रहे हैं, उनसे हम यहाँ स्थापित करवा रहे हैं। इसका पूरा उद्देश्य है कि भारत की अपनी, चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे वो ऐसे जो भारत के अपने अंदर जो क्षमताएं, उसको मात्र हम एक रॉ मटेरियल का सप्लायर के रूप में नहीं, बल्कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का सप्लायर बने हम, इस दिशा में जो है। और हम स्टार्टअप्स को, जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमी हमारे पास है, इकोसिस्टम हमारे पास है, हम जितना स्टार्टअप्स को जो है, चाहे वो स्टैंडअप इंडिया हो या स्टार्टअप का जो भी योजनाएं जो भारत सरकार ने दिया है, युवाओं को स्किलिंग करके हम लोग जो है आज हर क्षेत्र में हम तैयार कर रहे हैं। आईटीआई की इतनी संख्या बढ़ गई है जो पहले कभी नहीं थी, पूरा प्रधानमंत्री कौशल योजना के माध्यम से हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आज जो है हमारे पास न सिर्फ एजुकेटेड युवा शक्ति हो, बल्कि एम्प्लॉयबल युवा शक्ति भी हो, जिनके पास क्षमता इतनी है। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम जो है उसमें भी हमने जो है उद्यमिता को हम लोग जो है आगे बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई आप जाइए इंडस्ट्री को सेटअप करिए। तो हम नौकरियों पर सिर्फ नहीं जोर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उद्यमिता के लिए हम युवाओं को तैयार कर रहे हैं, उनका मानसिकता परिवर्तन कर रहे हैं, उनका कौशल विकास कर रहे हैं, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने जो है इसको समाहित कर दिया है। विकसित भारत, जो भारत को हमको 2047 में बनाना है, उस दिशा में हमको काम करना है। इस दिशा में बहुत सारे योजनाएं जो है भारत सरकार ने शुरू किया है, उसका निश्चित ही लाभ हमारे युवा पीढ़ी को लेना चाहिए।
1: जी सुरेश जी, आप सुर्खियों में कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी इस विषय पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के आर्थिक विकास में स्वदेशी और सतत उपभोग की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:40:38 हुए हैं और ये आपके लिए एक गीत ऐसा लेकर आए हैं हम जो है कार्यक्रम सांझ ढले के तहत। मैं हूं आपके साथ नईम अख्तर और आपके लिए गीत है फिल्म बैजू बावरा का, 1952 की जो फिल्म है और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के साथ साथ शमशाद बेगम की है।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दी। बिल का उद्देश्य राजधानी में कारोबार को आसान और पारदर्शी बनाना। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परामर्श बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कहा, समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन में बाजार संगठनों के प्रतिनिधियों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 159 लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली ईज ऑफ

0: और हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक के अंतर्गत कारोबार से जुड़ी मंजूरियों, पंजीकरण, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। भवन योजना, अग्निशमन मंजूरी के साथ पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन जैसी सेवाएं भी इसके दायरे में होंगी। साथ ही दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए स्वघोषणा की सुविधा होगी। वहीं निर्धारित समय सीमा में फैसला नहीं होने पर कुछ मामलों में मंजूरी स्वतः मानी जाएगी। नए पंजीकृत उद्यमों को 3 साल तक सामान्य निरीक्षण से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपायों से दिल्ली में कारोबार करने में लगने वाला समय, लागत और अनिश्चितता काफी कम होने की उम्मीद है। इससे नए निवेश को आकर्षित करने और बड़े स्तर पर रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं मनोज।
0: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के प्रभावी और सहभागी क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक की। बैठक में सांसद रामवीर सिंह भिदूरी, मनोज तिवारी और प्रवीण खंडेलवाल सहित दिल्ली के 33 विधायक शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान DDA के उपाध्यक्ष N. सरवाना कुमार ने मास्टर प्लान के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव लिखित रूप में देने के लिए 15 दिन का समय मांगा। बैठक में पारगमन उन्मुख विकास, लैंड पुलिंग, अनधिकृत कॉलोनिया, हाई डेंसिटी कॉरिडोर और लो डेंसिटी एरिया समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस कड़ी में प्राधिकरण ने अगले 3 महीनों में लगभग 20 हितधारक बैठक करने का लक्ष्य रखा है। इनमें सरकारी एजेंसियों, उद्योग संगठनों, वास्तुकारों, निवासी और आवास समूहों, किसानों, व्यापारिक संगठनों तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पर कार्यशाला आयोजित की गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया। कार्यशाला में अधिकारियों को नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षित और जिम्मेदार हैंडलिंग के बारे में जागरूक किया गया। विभाग ने डेटा सुरक्षा मानकों के लिए दिशा निर्देश जारी करने और प्रत्येक विभाग में डेटा सुरक्षा नोडल अधिकारी नियुक्त करने की कार्यप्रणाली को भी साझा किया। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ नालों के रखरखाव के लिए समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि नालों की सफाई और रखरखाव में अब कोई बहाना या जिम्मेदारी को टालना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्राधिकार और आपसी समन्वय की समस्या के बीच नालों का रखरखाव रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि हर एजेंसी को स्पष्ट जिम्मेदारी लेकर तय समय सीमा में अपना काम पूरा करना होगा और लापरवाही होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया। 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला शिखर सम्मेलन था। इसका उद्देश्य भारत की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के जरिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना था। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए एक संरचित मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित 6th अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 में कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक लचीलेपन से अलग नहीं किया जा सकता। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: छठे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु

0: आयुष शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी उन्नत ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर जा रहे बदलाव का समय बताया। डॉक्टर सिंह ने इस बात पर बल दिया कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भरता, वहनीयता, स्वच्छ ऊर्जा, निजी भागीदारी और नवाचार में एक साथ प्रगति की आवश्यकता होगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उद्योग और पेशेवर संगठन दोनों पक्षों को एक साथ लाने और वर्ष 2047 की ओर भारत की सामूहिक यात्रा में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में जन सुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के लिए सरकार का दरवाजा खुला रखना, लोगों की बात सीधे और बिना किसी बाधा के सुनना तथा समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना ही दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। जन सुनवाई के दौरान शिक्षा, लंबित पुरस्कार राशि, जलभराव, सीवर, विद्युत सुरक्षा, सफाई और अवैध निर्माण सहित विभिन्न समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गयी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को जाँच, आवश्यक कार्रवाई और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य केवल नागरिकों की शिकायत सुनना नहीं बल्कि शिकायत का समाधान करना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राष्ट्रीय राजधानी के 9 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उच्च शिक्षा को युवाओं के लिए कौशल, रोजगार, आय और अवसर का मजबूत माध्यम बनाने पर बल दिया गया। उपराज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने, दिल्ली की स्थानीय चुनौतियों पर शोध को प्रोत्साहित करने और छात्रों को उद्योग के अनुरूप रोजगार परक कौशल देने की बात कही। उन्होंने छात्र मार्गदर्शन, सहभागिता, राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना की नागरिक तथा आपातकालीन सेवाओं में भागीदारी और छात्र स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन में विभिन्न बाजार संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सड़कों और बाजारों के विकास को लेकर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि लंबे समय तक राजौरी गार्डन के बाजारों और सड़कों को अनदेखी का सामना करना पड़ा, लेकिन पिछले 1.5 साल में क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने कहा कि राजौरी गार्डन में सड़कें, पानी, सीवर और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई विकास के काम शुरू किए गए हैं। श्री सिरसा ने कहा कि राजौरी गार्डन के विधायक के तौर पर उनका लक्ष्य क्षेत्र के हर बाजार, हर इलाके और हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत अगस्त महीने में 159 लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया है। इनमें 27 बच्चे और 132 वयस्क शामिल हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, बस और रेलवे स्टेशनों की जांच, स्थानीय पूछताछ और मुखबिरों की मदद से इनका पता लगाया। पुलिस के अनुसार इस साल अब तक दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 1149 लापता बच्चों और लोगों को उनके परिवारों को सुरक्षित सौंपा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों अवैध प्रवासियों को बाराखंबा क्षेत्र से पकड़ा है। जांच में सामने आया कि दोनों ने बगैर वैध वीजा के 26 और 27 अगस्त को भारत में प्रवेश किया। पहचान और जरूरी सत्यापन के बाद दोनों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के सामने पेश किया गया। इसके बाद दोनों को सराय रोहिल्ला स्थित बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि कल से सुबह 10 बजे से होने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा के कारण रानी झांसी रोड, देशबंधु गुप्ता रोड, चैम्सफोर्ड रोड, पंचकुइया रोड और आसपास के मार्गों पर भारी जाम के कारण यातायात धीमा रहने की संभावना है। पुलिस ने बताया।

0: कि इस यात्रा में रथों और झांकियों के साथ 2000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यात्रा की योजना पहले से बनाने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार साहसिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले व्यक्तियों को मान्यता देते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सहन शक्ति, जोखिम लेने की क्षमता, टीम वर्क और त्वरित तथा प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये पुरस्कार 4 श्रेणियों, स्थलीय साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु साहसिक कार्य और आजीवन उपलब्धि के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। लैंड एडवेंचर श्रेणी में बलजीत कौर और स्लगजैन रिगजिंग, वाटर एडवेंचर श्रेणी में रिमो साहा और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में शिव प्रसाद चमोली को पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। चयन राष्ट्रीय चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया। समिति ने नामांकनों का मूल्यांकन किया और राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने के लिए पुरस्कार विजेताओं की अनुशंसा की। ये पुरस्कार युवाओं में साहस, सहन शक्ति, अनुशासन, जोखिम लेने की क्षमता और सहयोगात्मक टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देते हैं। साथ ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तेजी और प्रभावशीलता के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई जगहों पर तेज से हल्की वर्षा हुई, वहीं अन्य स्थानों पर मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ कई जगहों पर सुबह से दोपहर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दी। बिल का उद्देश्य राजधानी में कारोबार को आसान और पारदर्शी बनाना। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परामर्श बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कहा, समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 159 लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य भारत की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना था। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए एक मंच प्रदान किया। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी न्यास के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और राम मंदिर परिसर से संबंधित प्रमुख परिचालन दायित्व संभालेंगे। न्यास के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की भी जानकारी दी। इनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भगचंदका और शिकोहाबाद की सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य निर्मला यादव शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती

0: और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा के अंतर्गत 31 अगस्त 2026 तक 136 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये स्वैप सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण इसे 31 अगस्त तक कर दिया गया। ईसीबी और ओएफसीबी के लिए यह सुविधा 31 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई है, जबकि लगभग 4,900 लोग अभी लापता हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सद्भावना संदेश और सहायता मिली है। इस बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान जारी रहने के कारण भारत नेपाल को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि राहत सहायता लेकर 5वां भारतीय विमान आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर, स्कॉल जेंग रिग्निन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा आयोग के नियामक दायरे में आने वाले 33 नए और 21 अद्यतन संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi participated in the valedictory session of the Departmental Summit of the Ministry of Jal Shakti in New Delhi today. The two-day Departmental Summit was the first in a series of Departmental Summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India, deepen cooperative federalism and foster collective ownership of national priorities through closer collaboration between the centre and the states. The initiative provided a structured platform to jointly deliberate on critical sectoral priorities and accelerate implementation and outcomes. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has reached Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the aircraft carried 11-member rescue team with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. A 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. Meanwhile, death toll from the devastating flash floods in Nepal has risen to 1,127, with nearly 4,900 still missing, as rescuers battled rain and debris. Nepal Prime Minister Balendra Shah told Parliament today that the devastation caused by the flash flood stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impact. Mr. Shah also knew

शास्त्रीय रागों पर आधारित हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में स्वागत है आप सभी का। रात के 8:11:03 हुए हैं। आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर। तो आइए आगाज करते हैं इस खूबसूरत नगमे से, जिसका राग और इसके बारे में बात करेंगे इस गीत के तुरंत बाद।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:15:45 कार्यक्रम जी हाँ मधुरिमा और मधुरिमा में जो गीत अभी राज फिल्म का हमने आपको सुनवाया था अकेले हैं चले आओ कहाँ हो हमने आपसे कहा था कि इस गीत के बारे में कि कौन से राग पर आधारित है गीत के तुरंत बाद बात करेंगे तो ये राग चारू केसी पर आधारित है राग चारू केसी जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के कर्नाटक संगीत का एक राग है ये कर्नाटक संगीत की 72वीं राग प्रणालियों में 26वां राग है कर्नाटक संगीत में इसे तरंगिणी भी कहा जाता है राग चारू केशी का इस्तेमाल अक्सर भक्ति संगीत में किया जाता है इसका भाव मर्म स्पर्शी होते हैं और इस राग को आसानी से पहचाना जा सकता है ये ऋषभ प्रिया का शुद्ध मध्यम रूप है ये एक संपूर्ण राग है यानी कि ऐसा राग जिसमें सातों स्वर मौजूद होते हैं तो जब इतनी सारी बात हमने राग चारू केशी के बारे में की ही है तो क्यों ना एक और गीत इसी राग पर आधारित आप तक पहुंचाएं और वो गीत भी ऐसा कि जो सुनकर आपको हमारे साथ साथ आपको भी मजा आ जाए

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 8:23:25 कार्यक्रम मधुरिमा और मधुरिमा में बात करते हैं हम राग दरबारी कान्हड़ा की जो असावरी थाट से संबंधित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा राग है जो बहुत ही गहरा और बहुत गंभीर प्रकृति का राग है और जिसे देर रात को गाया जाता है इसलिए इसे देर रात का राग भी कहा जाता है। इसका थाट जो है वो असावरी जाति का है। संपूर्ण वक्र यानी कि सभी सात स्वर घुमावदार तरीके से उपयोग किए जाते हैं। वादी स्वर ऋषभ, संवादी स्वर पंचम और गायन समय जैसे कि मैंने बताया आपको कि रात का तीसरा प्रहर है यानी कि रात 12 बजे से रात 3 बजे तक आप इसको गा सकते हैं। इसकी गंभीर और ध्यानपूर्ण जो प्रकृति है वो इस राग को बेहद खूबसूरत बनाती है और खूबसूरती के साथ साथ इस राग में जो गीत बॉलीवुड में हिंदी फिल्म जगत में संगीतबद्ध हैं उनमें से एक गीत हम आप तक इसलिए ऐसा पहुंचा रहे हैं कि रागों पर आधारित होने के साथ साथ राग दरबारी कान्हड़ा पर आधारित होने के साथ साथ वो आज के मौसम को भी बहुत सूट करता है।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज कार्यक्रम में बात की जाएगी बैडमिंटन कोर्ट की, जहां चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा तथा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी पहुंच गई है प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में कल भारतीय टीम करेगी थाईलैंड का मुकाबला। वहीं क्रिकेट की एक और घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी में फाइनल की हो गई है तस्वीर साफ, साउथ जोन बनी है फाइनल में पहुंचने वाली टीम। और स्क्वाश में अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे राउंड में पहुंची हैं, उनके साथ रमित टंडन ने भी बनाई दूसरे दौर में जगह। और भारत में पहली बार आयोजित होगी वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026, अहमदाबाद करेगा इस आयोजन की मेजबानी। कार्यक्रम को शुरू किया जाए आज बैडमिंटन की दुनिया की खबरों के साथ, जहां चीन मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला साबित हुआ। आज खेले गए मुकाबलों में किदांबी श्रीकांत पुरुष और तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई, जबकि लक्ष्य सेन और देविका सिहाग को हार का सामना करना पड़ा। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
1: किदांबी श्रीकांत ने ताइपे के ची

0: बाबू चैन को हराया, वहीं लक्ष्य सेन को कनाडा के विक्टर लाई से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में स्वातिक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और कान खाई जिंग को पराजित किया। वहीं देविका सिहाग को बुल्गारिया की कलायुआना नलतोआबा से हार का सामना करना पड़ा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कृष्णो ने थाईलैंड की टोनरंग साहिंग और टोनकिद साहिंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। रोहन कपूर और ऋतिका शिहानी गड्डे की जोड़ी को ताइपे की सुवांग चुंग और लीचिया सिन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब आज के खेल खबरों पे हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, आप लगातार इस टूर्नामेंट पे नजर रख रहे हैं, आज की अगर मैचों की बात की जाए तो हर कैटेगरी में एक जीत और एक हार, प्री क्वार्टर फाइनल की तस्वीर साफ है। अब कल ये भारतीय खिलाड़ी अपनी अपनी कैटेगरी में किन खिलाड़ियों के खिलाफ उतरेंगे?
2: शक्ति, अगर पुरुष सिंगल्स की बात करेंगे तो किदांबी श्रीकांत कल विक्टर लाई, कनाडा के विक्टर लाई का सामना करेंगे, जिन्होंने आज लक्ष्य सेन को हराया है। अगर महिला सिंगल्स की बात करें तो तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की तुमोका मियाजाकी से होगा। वहीं डबल्स की जोड़ी में अगर बात करें तो सात्विक चिराग जो है फ्रांस के क्रिस्टो और टोमा जूनियर पोपोव से खेलते नजर आएंगे। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो जो है चीनी ताइपे की जोड़ी का सामना करते दिखेंगी।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कल के मुकाबलों की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है और भारतीय खिलाड़ियों की नजरें होंगी कि जो भी इस प्रतियोगिता में बचे हुए हैं वो कितना आगे तक का सफर तय करते हैं, क्योंकि एशियन गेम्स से ठीक पहले आयोजित हो रहा ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों के मनोबल में काफी कुछ जोड़ने का काम करेगा। बैडमिंटन के बाद अब स्क्वाश की बात, जहां भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। मौजूदा वर्ल्ड जूनियर चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के अपने पहले मैच में मिस्र की मरियम मेटवाली को 11-3, 11-2 से हराया। पुरुष सिंगल्स के पहले राउंड में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल-तमीमी को 11-6, 11-7 से पराजित किया। हालांकि वीर चोटरानी को स्विट्जरलैंड के यानिक विलहेमी से 9-11 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दुर्भाग्यशाली रहे वीर चोटरानी और एक कड़े मुकाबले में जहां पे वो आखिरी तक टक्कर देते हुए दिखे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। और अनाहत सिंह, जिस तरह का उनका जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का दौर गया है, उसी फॉर्म के साथ उतरी और वापस मिस्र की एक खिलाड़ी जो कह सकते हैं काफ़ी हद तक अब अनाहत की फेवरेट बनते जा रही हैं, इस मुकाबले में भी एक मिस्र की खिलाड़ी को अनाहत से हार का सामना करना पड़ा। अब बात क्रिकेट के मैदान की, जहां थाईलैंड में शानदार जीत के बाद महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप की शानदार शुरुआत करने के बाद भारतीय महिला टीम कल हांगकांग के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। हरमनप्रीत की कप्तानी वाली भारतीय टीम की नज़र शनिवार को पाकिस्तान से पहले होने वाले इस मैच में अपनी तैयारी को पूरी तरीके से पुख्ता करने पर होगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: पहले मैच में थाईलैंड पर मिली शानदार 94 रन से जीत के बाद भारतीय महिला टीम के हौसले बुलंद है। भारत को हांगकांग के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन टीम की नज़र इस मुकाबले में अपने पहले मैच की गलतियों को सुधारने पर रहेगी। टीम सबसे अधिक काम बल्लेबाजी के मोर्चे पर करना चाहेगी, जिसने पिछले मैच में एक वक्त में भारत के लिए चिंता की स्थितियां उत्पन्न कर दी थी। पहले मैच में शिफाली वर्मा ने 64 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। शानदार शुरुआत के बाद भी एक समय पर 200 का स्कोर पार करती दिख रही हरमनप्रीत की टीम 159 रन भी बना सकी। तेज और अच्छी शुरुआत के बाद टीम का मध्य और निचला मध्यक्रम बल्ले से कमाल नहीं कर सका। हालांकि दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी। दूसरी ओर हांगकांग को टूर्नामेंट के पहले मैच में थाईलैंड से 6 रन से हार का सामना करना पड़ा था। हांगकांग ने 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट पर 114 रन बनाए। ऐसे में टीम की नज़र यहां पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर होगी। एक दिवसीय प्रारूप में 4 और टी20 प्रारूप में 3 एशिया कप खिताब जीतने वाली भारतीय टीम एशियाई खेलों जैसे अहम टूर्नामेंट से पहले अपने बेस्ट फॉर्म हासिल करना चाहेगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो हरमनप्रीत एंड कंपनी की नजर होगी कि पाकिस्तान के मुकाबले से पहले जीत दर्ज की जाए, टीम का मनोबल बढ़ाया जाए और किन क्षेत्रों में टीम को अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी, ये मैच कितना अहम होगा। विशेष,
2: भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी पर खासा काम करना होगा और भारतीय टीम इस मुकाबले को एक वार्म अप मैच की तरह देखेगी पाकिस्तान के मुकाबले से पहले और अपना विजयी अभियान जो है उसको जो जारी रखना चाहेगी। हालांकि बल्लेबाजी में पिछले मुकाबले में इनसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जहां भारत एक समय पर 91 रन पर केवल 2 विकेट

0: के नुकसान पर था, और फिर उसके बाद 137 रन तक पहुंचते पहुंचते भारत ने अपने 9 विकेट गंवा दिए थे, यानी 46 रन के अंतराल में 7 विकेट। तो ये एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है, लेकिन भारतीय टीम इस मुकाबले में उन कमियों को पूरा करके अपने अगले पड़ाव की ओर ध्यान देगी।
1: जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अभियान आगे प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ पर टीम एशियन गेम्स खेलेगी 3 से 4 महीने बाद जर्मनी में। टीम को जनवरी के महीने में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की जा रही है आईसीसी की तरफ से, वो भी खेलनी होगी। तो टीम की नज़र इन बड़े टूर्नामेंट में खुद को तैयार करने पे होगी। पहले मैच का जिक्र हुआ यहाँ पर, जहाँ भारतीय टीम एक शानदार सदी हुई और तेज़ शुरुआत के बाद काफ़ी हद तक बल्लेबाजी क्रम में थोड़ी सी बिखरती हुई नज़र आई। टीम किस कॉम्बिनेशन और माइंडसेट के साथ आने वाले मैचों की और टूर्नामेंट की तैयारी करेगी?
0: शक्ति, ओपनिंग में जहां तक देखा जाए, शेफाली वर्मा शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने पिछले मुकाबले में 36 गेंद पर 64 रन बनाए, और उनके साथ जो बल्लेबाजी करने के लिए उतरती हैं स्मृति मंधाना, वो उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी से बहुत कुछ प्रूफ कर दिया है। लेकिन अभी मिडिल ऑर्डर में प्रतिका रावल, भारती फूलमाली और ऋचा घोष जैसे बल्लेबाज जो टीम में मौजूद हैं, उनको अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में लाना होगा। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर का जो खराब फॉर्म है वो एक चिंता का विषय है, लेकिन इसके अलावा भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज के साथ साथ ये टीम काफ़ी सदी हुई नज़र आ रही है। गेंदबाजी में जहां नंदिनी शर्मा, दीप्ति शर्मा, श्री चरनी और क्रांति गौड़ जैसी गेंदबाज भारत को मजबूती प्रदान करेंगी।
1: जी बिल्कुल, और आपने कप्तान का जिक्र किया, कप्तान हमेशा ऐसी स्थितियों में अपने बल्ले से, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देती हैं, और उम्मीद होगी कि हरमनप्रीत का बल्ला एक बार फिर एक बड़ी पारी के साथ इन तमाम सवालों का जवाब देता नजर आएगा। अब कार्यक्रम में बात की जाए दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की, जहां साउथ जोन ने फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में साउथ जोन ने नॉर्थ जोन को 7 विकेट से हराया। कप्तान तिलक वर्मा ने पहले 116 रन और फिर 51 रन की शानदार पारी खेली।
2: साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से अपनी टीम को दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा दिया है। पहली पारी में नाबाद 116 रन बनाकर साउथ जोन को 117 रन की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाने वाले तिलक ने दूसरी पारी में 51 रन बनाते हुए ईस्ट जोन के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले में टीम की जगह पक्की की। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड 2 में खेले गए दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 195 रन बना सकी। कामरान इकबाल ने सर्वाधिक 76 रन बनाए, जबकि साउथ जोन के लिए विधवत कविरप्पा ने 4 विकेट झटके। इसके जवाब में साउथ जोन की टीम ने अपनी पहली पारी में तिलक वर्मा की 116 रन की नाबाद पारी की बदौलत 312 रन बनाए और 117 रन की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद दोबारा बल्लेबाजी करने आई टीम सनद सांगवान के 76 और आयुष दोसेजा के 52 रन की बदौलत 297 रन बनाकर ऑल आउट हुई। इस पारी के हीरो रहे निधेश, जिन्होंने साउथ जोन के लिए 5 विकेट लिए। अंतिम पारी में 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ जोन ने कप्तान तिलक वर्मा के 51 रन की बदौलत आसानी से 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब 6 सितंबर से चेन्नई में साउथ जोन का सामना ईस्ट जोन से होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: कल के कार्यक्रम में हमारा एक फाइनलिस्ट तैयार था और अब दूसरा भी तैयार हो चुका है। तस्वीर स्पष्ट है अगर आंकड़ों की नज़र डाली जाए, और अब तक का सफ़र इन दोनों टीमों का क्या कहानी बयां करते हैं ये आंकड़े।
0: शक्ति, अगर बात करी जाए साउथ जोन की, तो साउथ जोन जो है वो 13 बार खिताब को अपने नाम कर चुकी है और 2 बार उन्होंने ट्रॉफी शेयर भी की है। हालांकि उन्होंने पिछली बार फाइनल में सेंट्रल जोन के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार टीम का मनोबल काफ़ी ऊपर है। वहीं अगर ईस्ट जोन को देखें तो उन्होंने अभी तक ट्रॉफी जो है सिर्फ 2 बार जीती है, 11-12 में और 12-13 में, तो दोनों बार उन्होंने लगातार ट्रॉफी जीती। इसके अलावा अगर बात करी जाए इन दोनों टीमों के आमने सामने रहने की, तो 1971 के बाद ये दोनों टीमें पहली बार फाइनल में आमने सामने होंगी। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने की उम्मीद है।
1: जी, और मुकाबले की आपने बात की, आज भी हमने देखा तिलक वर्मा के बल्ले से निकली थी टीम की जीत। फाइनल में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जिन पर सबसे अधिक नजरें रहेंगी?
0: अगर साउथ जोन की बात करें तो उनके कप्तान जो हैं वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दारोमदार उन्हीं पर होगा। बल्लेबाजी में थोड़ी सी कमी नज़र आती है, लेकिन जगदीशन और रिक्की भुई को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीम की बल्लेबाजी में योगदान देना होगा। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो निधेश, श्रेयस गोपाल, विठवत केवरप्पा जो है वो कमान संभालते दिखेंगे। अगर ईस्ट जोन में देखें तो वहाँ उनकी पूरा दारोमदार जो है गेंदबाजी पर है, जहाँ मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी उन्होंने पिछले मुकाबले में, जहाँ 7 और 6 विकेट चटकाए हैं। बल्लेबाजी में भी गहराई देखने को मिलती है, जहां अभिमन्यु

0: ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में हैं और कप्तान ईशान किशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और निभाते नजर भी आएंगे।
1: जी बिल्कुल, और वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकली थी वो 92 रन की पारी जिसने टीम को जिताने का और फाइनल तक स्टेज सेट करने का काम किया था। तो उम्मीद होगी कि फाइनल में भी ऐसी कुछ बड़ी पारियां और बड़े सितारे देखने को मिलेंगे। भारत के ध्रुव सितवाला को कनाडा के विनपेग में आयोजित पैन एम कप बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट से 972 के मुकाबले 1500 अंकों से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौजूदा एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन सितवाल ने फाइनल की एक अच्छी शुरुआत की थी, हालांकि इसके बाद वो अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख सके। एक वक्त पे जो बढ़त 450 की थी वो गिलक्रिस्ट के सामने फिसलते फिसलते आखिरी में 972 और 1500 के स्कोर पे आके सिमटी। हालांकि इस एशियाई चैंपियन खिलाड़ी को आखिरी में रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। इन पुरस्कारों में 4 श्रेणियां लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट शामिल है। बलजीत कौर को लैंड एडवेंचर श्रेणी में जबकि स्कलजांग रिंगजिंग को भी लैंड एडवेंचर की श्रेणी में, रिमो साह को वाटर और श्री प्रसाद चमोल को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चयनित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही सम्मानित किया जाएगा। हालांकि पुरस्कार समारोह की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। तो एक और पुरस्कार जो खिलाड़ियों को एडवेंचर स्पोर्टिंग के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। और इसी के साथ भारत लगातार खेल के क्षेत्र में नई मेजबानी के कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। भारत में अब पहली बार आयोजित होने वाली वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 होगी। ये प्रतियोगिता अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में 5 से 9 सितंबर तक आयोजित होगी। इन 5 दिनों के दौरान 20 देशों के 100 से अधिक खिलाड़ी निशाने साधते हुए नजर आएंगे। पदकों के लिए प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 4 सितंबर को आयोजित होगा। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की विशेष मौजूदगी रहेगी। और ये मेजबानी मिलने पर गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि हर तीर हिम्मत की कहानी कहता है और इस थीम पर आधारित ही उद्घाटन समारोह के लिए वो बेहद उत्साहित हैं। और जिस तरह से हमने देखा भी कि अहमदाबाद लगातार दावेदारी कर रहा है 2036 के ओलंपिक के लिए, एक पड़ाव 2030 में आना है जहाँ ये शहर जो है मेजबानी करेगा राष्ट्रमंडल खेलों के 100 वर्ष पूर्ण होने के विशेष मौके पर। तो कहा जा सकता है कि एक नया स्पोर्टिंग हब भारत को मिलता हुआ। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई, लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का

आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर, भारतीय रुपया, विदेशी

0: अरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए CEO एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद CEO के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। CEO के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के

0: विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। दो दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा आपके इशारों पर। जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
2: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम

0: कलेक्ट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे की ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र सिक्किम विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200, with over 4,000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over 136 billion US dollar inflows till August 31st. Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Mark de Wever to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. Talks on trade, defence, technology, energy and connectivity high on agenda. Heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbha and West Uttar Pradesh tomorrow. And India to stage inaugural Women's Champions Trophy in 2027 after Sri Lanka dropped as hosts. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties

0: system, and that is certainly nurturing our local products also.
1: My final question is the link to India's economic future. When we talk about Swadeshi and sustainable development, is sustainable employment, when we talk about ethical livelihoods and fair pay to the workers of these types of product?
0: Absolutely. And I think that the very fact that our industries are, a large number of them are in the cooperative sector, they are being produced through self-help groups, and that is adding value to it. And particularly, there are n number of women self-help groups, whether it is even something like Lijat Papad, for example, comes out of a women's cooperative, and a lot of women, a lot of rural artisans, they are.
2: Charcha ka vishay hai. ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है. कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव.
3: सदियों पुराना वो दौर जब रेशम के धागों और मसालों के काफिले मध्य एशिया के बीहड़ रास्तों से गुजरा करते थे. ताशकंद से बिश्केक तक फैली वो धरती जहां इतिहास के पन्नों ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा. लेकिन आज 21वीं सदी के नक्शे पर वही मध्य एशिया सिर्फ इतिहास की किताब नहीं बल्कि ग्लोबल पावर प्ले का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है. ऊर्जा का अकूत खजाना, यूरेनियम के भंडार और भू राजनीति का नया केंद्र, चीन की उठती इमारतें, रूस का पारंपरिक दबदबा और अफगानिस्तान के मुहाने पर सुलगती अशांति, इन तमाम चक्रव्यूहों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम डील से भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को लॉक करने की पटकथा थी. ये बिश्केक से पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अल्टीमेटम था. ये कदम था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से व्यापार के नए रास्ते खोलने का. ये शंखनाद था मध्य एशिया के दिल में भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को एक नए युग में ले जाने का. लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे कुछ बड़े सवाल भी हैं. क्या भारत सेंट्रल एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस का नया अध्याय लिख रहा है? क्या ये चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच भारत की अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश है? इन बेहद महत्वपूर्ण सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के चर्चा का विषय है कार्यक्रम में. हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी जी. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है.
4: धन्यवाद.
5: धन्यवाद आनंद.
3: चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से उज्बेकिस्तान के साथ रिश्ते पहुंचे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक. 2030 तक व्यापार को $5 अरब से ज्यादा ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है. क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल पेमेंट्स, डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कनेक्टिविटी, यानी सहयोग का दायरा अब सिर्फ कूटनीति की मेज तक सीमित नहीं है. और फिर बिश्केक SCO के मंच से भारत का स्पष्ट संदेश, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी. त्रिगुणायत जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला है. चीन और रूस के पारंपरिक प्रभाव वाले इस क्षेत्र में भारत का ये कूटनीतिक कदम सेंट्रल एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्या लगता है आपको?
4: देखिए आनंद जी, 2012 से हमने अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को स्थापित किया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज में विजिट किया, और उनके साथ में हमारे जो C5+1 या दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्ते बना पाए और प्रगाढ़ कर पाए, उसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तरक्की हुई है. लेकिन जैसा आपने कहा है कि सेंट्रल एशिया जो है इस वक्त ग्रेट गेम के अंदर में लगा हुआ है. आज की डेट में वहां पर जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रूस का है वो पुराना है, क्योंकि ये सारे कंट्रीज रूस के रिपब्लिक्स थे 1991 से पहले, और उसके बाद से चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस वहां पर जियो इकोनॉमिक्स के रूप में उभरा है. और रूस और चीन ने बीच में ये एडजस्ट किया है कि जियो पोलिटिकली रशिया अपना स्थापित करता रहेगा, लेकिन चीन को जियो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक एंगेजमेंट के साथ उनको बढ़ावा देते रहेंगे, तो वो दोनों के बीच हो रहा है. तो यूरेशियन कनेक्टिविटी की बात वहां पर

0: नहीं है। उधर अमेरिका उनका एक थर्ड नेबर बन के उभरा है पिछले कुछ दिनों में। उन्होंने भी अपना C5+1 और ये इस तरह के काफी वहां पर कोशिश की है, इसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया में। क्योंकि आज की डेट में जब हम सेंट्रल एशिया को देखते हैं तो सेंट्रल एशिया को कॉकेशस के साथ मिलाकर के देखा जाता है, तो उस सब के अंदर में भी अमेरिका काफी वहां पर है। चौथा कंट्री जो है वो वहां पर है टर्की। टर्की ने अपना वहां पर काफी जो उनका टर्किक लैंग्वेजेस का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसके चलते उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी को वहां पर काफी बढ़ाया है। तो ये चारों कंट्रीज और गल्फ के कंट्रीज भी कुछ इन्वॉल्व हैं इस तरह से। मेनली यूरोपियन यूनियन भी काफी वहां पैसा लगा रहा है। आप विश्वास मानेंगे कि आर्मेनिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो उस रीजन की सबसे बड़ी एम्बेसी है, और आर्मेनिया के साथ हमारे रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट इस वक्त हुई है वो दो संदर्भ में हुई। एक तो ये कि बायलैटरल है हमारा उज्बेकिस्तान के साथ में, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। जैसे आपने कहा कि उसको हमने कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है, जिसका मतलब सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, या न्यूक्लियर डोमेन के अंदर हो गया, डिफेंस में हो गया, ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारी सेंट्रल एशिया के साथ रही है वो है कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी के लिए हमने जो है, जब डायरेक्ट हमारा पाकिस्तान के थ्रू नहीं हो पा रहा, अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रहे, सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पा रहे थे, तो भारत ने चबहार पोर्ट के जरिए जाना शुरू किया। लेकिन अभी चबहार पोर्ट भी जो है अमेरिका की काटसा सेंक्शंस और आजकल तो बमबारी चल रही वहां पर, तो ये सब करने की वजह से भारत को थोड़ा वहां चबहार पोर्ट में हमारे को कंट्रोल प्रॉब्लम हुई है। उसी के चलते वहां पर जो आपने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, उसमें भी चबहार पोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो समस्याएं इस वक्त जियो पोलिटिकल कॉन्टेस्टेशन की वजह से, खासतौर से अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो है बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, और उसमें भारत ने कोशिश ये की है कि किस तरह से हम उनको इम्यूनाइज कर पाए उन प्रॉब्लम से, ताकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस आगे बढ़ सके। तो वो किस तरह हो सकता है? एक तो एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब आप ये देखिए कि अभी प्रधानमंत्री को हमारे जो जाना पड़ा 7.5 घंटे लग गए, जबकि ये 2.5 से 3 घंटे के बीच हमारे कंट्रीज हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जिस तरह का एक अपना नजरिया दिखाता है हमारे जो दुश्मनी के ताल्लुकात उनके साथ हैं, उसके चलते ये समस्या सबसे बड़ी आई। तो मैं समझता हूँ कि काफी सारे एरियाज में बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत बड़ी है। दूसरा, उज्बेकिस्तान भी जो है ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री है, तो उनके जो लीडर हैं सब हैं, हिस्टोरिक और
1: जी
0: सिविलाइजेशनल टाइज है। आई मीन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहां पर भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। आप अगर जाकर देखें वहां पे कल्चरली लोग जो है
1: जी
0: वो काफी अलाइंड है भारत के साथ। लेकिन इस वक्त में प्रधानमंत्री की विजिट से काफी मैं समझता हूँ एक ये जो रिश्ते हैं और आगे बढ़ेंगे और प्रगाढ़ होंगे।
1: जी प्रोफेसर जोशी, भारत और उज्बेकिस्तान ने 2030 तक आपसी व्यापार को $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान व्यापार आंकड़ों को देखते हुए ये लक्ष्य कितना व्यावहारिक है, और इसमें फार्मा, आईटी, माइनिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों की क्या भूमिका रहने वाली है आपके नजरिए से?
2: देखिए, ये देखना इस बार बड़ा सुखद रहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान की यात्रा की तो उनको न सिर्फ वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जिस प्रकार के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं, बहुत लंबे पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं टेंजिबल आउटकम्स में, जब हम दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो उसमें व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो उसमें एक जो अभी व्यापार का हम वॉल्यूम दोनों देशों के बीच में देखते हैं वो कम है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को $5 बिलियन तक करने का लक्ष्य रखा है। और हम ये भी ध्यान में रखें कि जब हम उज्बेकिस्तान की ओर देखते हैं तो भारत को क्रिटिकल मिनरल्स और विशेषकर यूरेनियम सप्लाई करने वाला देश है। तो जब हम इस ट्रेड टारगेट को देखते हैं तो फिर इसमें एक प्रिफरेंशियल ट्रेड की बात भी आती है, ताकि कन्वेंशनल जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कट किया जा सके, और दोनों ही देशों के जो निवेशक हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फायदा हो सके। तो एक टारगेट सेट किया गया $5 बिलियन का, प्रिफरेंशियल ट्रेड की बात दोनों देश कर रहे हैं, ताकि जितने भी टैरिफ से जुड़े हुए और नॉन टैरिफ से जुड़े हुए जो बैरियर्स हैं और जो निवेश में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो जब हम भारत को देखते हैं तो भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हुए, व्हीकल ऑटोमोबाइल्स हुआ, उसके पार्ट्स हुए, अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हुए, मोबाइल फोन्स हुए, ये तमाम और कुछ खाद्य पदार्थ जो है उज्बेकिस्तान को भेजता है। वहीं जब हम उज्बेकिस्तान की ओर नजर डालते हैं तो फल और सब्जियां, फर्टिलाइजर्स, कुछ केमिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कि यूरेनियम शामिल है, वो भारत को प्रोवाइड कराता है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं तो यहां पर एक क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक का

0: ऐसा नया क्षेत्र उभर के आता है आनंद, जिसमें विशेषकर एक तो क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में सहयोग को आगे ले जाने की कई गुना व्यापार बढ़ाने की बात की जा रही है, जो भारत और उज्बेकिस्तान दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो जो ये नोवीस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, विशेषकर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और AI है, इसको लेकर के भी दोनों देश और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात करते हुए नजर आए। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के जो अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको हमने कल प्रूफ भी किया। हमारी क्वार्टरली ग्रोथ 7.8% की रिकॉर्ड हुई है GDP की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हर्ष का विषय है। और वहीं दूसरी ओर भारत की जो तकनीकी ग्रोथ है उसकी भी उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने तारीफ की थी जब ये बायलेटरल ऑफिशियल टॉक्स हुई। और इसमें फिर मैं कहती हूँ कि न सिर्फ हम सेंट्रल एशिया की ओर, भारत जब अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट करता है दूसरी तरफ जाकर, तो वहां पर भी जो इंडोनेशिया जैसे देश हैं, फिलीपींस जैसे देश हैं, वो भारत की ओर देखते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें व्यापार में फिर जो है एक पूरा सामरिक क्षेत्र आ जाता है, जिसमें डिफेंस से जुड़े उपकरण, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ये तकनीक को लेकर के सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान के साथ भी जो व्यापार को 5 बिलियन करने की बात की गई है, उसमें जो ये तमाम जो नवाचारी क्षेत्र हैं, इनका भी उल्लेख है। इसमें दोनों देश साथ में काम करेंगे, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, दोनों स्तर पर ये दोनों देशों के लिए और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
1: जी त्रिगुणायत जी, जो ताशकंद वार्ता रही उसमें जो सबसे बड़ा टेकअवे रहा वो उज्बेकिस्तान से भारत के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की रूपरेखा तय होना रहा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस समझौते के रणनीतिक महत्व को आप कैसे आंकते हैं?
2: देखिए, भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और भारत एक लीडर के रूप में निकला है जहां तक कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन की बात है, या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने की बात है। तो भारत ने अपना जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक नया आयाम किया है, उसी तरह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के इस तरह के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसी तरह भारत ने अपना लक्ष्य जो है न्यूक्लियर एनर्जी का रखा है, लगभग 100 गीगावाट बाय 2047। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए आपको जो है यूरेनियम की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाईज, उन सबको करना होता है। अभी हम सिर्फ कजाकिस्तान से खरीदते हैं यूरेनियम, और भारत चूंकि रेडी जैसे अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, और इस वक्त में अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत काफी कुछ चीजों में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में जो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने साइन किया है येलो केक जिसको बोलते हुए लेंगे वहां से, तो ये हमारी जो ऊर्जा के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, देखिए इस वक्त हमने देखा है जो ईरान के साथ युद्ध हुआ है उसमें जिस तरह चोक पॉइंट्स हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो, बाबल मंदब हो, जब उनके बंद होने से एनर्जी सप्लाईज में बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, तो अल्टरनेटिव जो हमारे पास हैं, जैसे INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस सब की वजह से क्या है, आपको अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो है फोकस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जीज को हम कैसे और आगे बढ़ाएं।
1: जी बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये भी जान रहे हैं कि UPI 10 से ज्यादा देशों में इस समय इस्तेमाल हो रहा है। उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में भारत के फिनटेक और IT सेक्टर के प्रवेश के जो अवसर बन रहे हैं उसे आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर का नया हथियार बन रहा है?
0: आनंद, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री की पिछली इंडोनेशिया यात्रा की ओर ले जाना चाहूंगी, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खुल के तारीफ की थी, और विशेषकर भारत की इलेक्टोरल सिस्टम और जिस प्रकार से हमने EVMs के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को सहज सरल ट्रांसपेरेंट बनाया, डिजिटाइज किया, उसकी तारीफ करते हुए एक महत्वपूर्ण MOU जो है वो भारत के साथ इंडोनेशिया ने साइन किया। तो इसी प्रकार से आप अपने आसपास के जब तमाम देशों को देखते हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देशों, साउथ एशिया के देशों, ईस्ट एशिया के देशों, साउथ ईस्ट एशिया के देशों, आज भारत की जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है पूरे विश्व में। और 140 करोड़ की आबादी के घने देश को डिजिटाइज करना सरल काम नहीं था आनंद, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। तो चाहे हमारा आधार हो, जो हमारा बायोमेट्रिक और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, चाहे अपना

0: यूपीआई हो, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, जिसकी वजह से इंस्टेंट जो पेमेंट्स हैं वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बीच में और अलग अलग मुद्राओं के बीच में भी संभव है। आज 10 से अधिक देशों में अपना यूपीआई स्वीकार्य है, चाहे अपना डेटा शेयरिंग का डेपा हो जिससे कि डेटा एम्पावरमेंट को और प्रोटेक्शन को बल मिलता है, या ONDC हो जो कि ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के लिए, जिसमें कि बायर्स और सेलर्स को ये एप्लीकेशन आपस में जोड़ती है और एक प्राइवेट मार्केटप्लेस प्रोवाइड करती है। तो हम फिर इससे जुड़ी हुई अलग अलग जो हमने योजनाएं चलाई, चाहे जनधन हो, आधार हो, मोबाइल फोन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, तो इससे हमने दो प्रकार के अकम्प्लिशमेंट्स अचीव किए। एक तो हमने अपना जो पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक सर्विसेज थी, उनको ट्रांसपेरेंट किया, इजी किया, सीमलेस किया, और इनको हमने डेमोक्रेटाइज किया। ये जन जन तक हमारी योजनाएं और ये तमाम जो पूरा डिजिटाइजेशन था ये पहुंचा। और दूसरा, हमने तमाम इसके माध्यम से जो बेनिफिट हुए वो एक ग्रास रूट लेवल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है, और आज भारत अपना जो DPI का ब्लूप्रिंट है उसकी ग्लोबल शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग जो देश हैं वो भारत के साथ में ऑफिशियल अग्रीमेंट्स के थ्रू ग्लोबल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के DPI की। ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने भी न सिर्फ फिनटेक को या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं जो लोगों की सिटीजन्स की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, या जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, उससे जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीका और लेटिन अमेरिका की यात्रा की थी, तो घाना अफ्रीका में या अर्जेंटीना, ब्राजील को हम लैटिन अमेरिका में देखें, इनको हम अपनी जो हमारा जो ई मेडिसिन संजीवनी की जो सर्विसेज हैं वो
1: जी
0: प्रोवाइड कराते हैं, और जो टेली मेडिसिनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और वहां पर उनकी सर्विसेज को हम ग्रो करा रहे हैं। तो इसी प्रकार के अग्रीमेंट्स हमने इन दो देशों के साथ भी किए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं, तो उनकी जो डिजिटाइजेशन की यात्रा है इसका ये बड़ा माइलस्टोन है, जिसमें भारत अपने ब्लूप्रिंट को शेयर करके तमाम ये जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं इसमें इन दोनों देशों को आगे ले जाने का काम करने वाला है।
1: जी और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में चल रहे युद्धों पर भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि संघर्षों का समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को एंडलेस वॉर्स से एंडिंग वॉर्स की दिशा में आगे बढ़ना होगा और भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन

0: उत्सुक हैं।
1: त्रिगुणायत जी, इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं जो प्रधानमंत्री ने युद्ध को लेकर अपनी बात कही। बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के सख्त संदेश दिया। अफगानिस्तान से सटने वाली मध्य एशियाई सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत का ये रुख कितना प्रासंगिक है, जब आप देख रहे हैं कि कई देशों की सीमाएं अस्थिर और अशांत बनी हुई हैं।
2: देखिए आनंद जी, बात ऐसी है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज 25 साल मना चुका है अपने एनिवर्सरी, उसका मेन जो उद्देश्य था वो था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, इन चीजों के लिए लड़ना और सिक्योरिटी को बढ़ाना किसी तरह से। उनके कुछ रेड्स टाइप के जो बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया हुआ है उन्होंने। इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही जो है टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ना है। भारत अपने आप लड़ रहा है, दुनिया भर में सबको कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप रखेंगे तो इस बुराई, इस कुरीति और इस तरह के देशों के साथ में कोई भी वो नहीं कर सकते, उसको सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री ने इस बार फिर कही, और अगले जब 25 साल की बात हो रही है तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि दुनिया जो है अपने ये डबल स्टैंडर्ड्स, खासतौर से मेंबर कंट्रीज जो है वो ना रखें इसमें। तो भारत पूरी तरह से जब तक अपने आप तो लड़ता ही रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन दुनिया को ये सबक दे रहा है कि अगर आप इससे नहीं लड़ेंगे तो कल आप इसका शिकार बन सकते हैं। और दूसरी चीज यह है कि ईरान युद्ध जो हुआ है, देखिए जितने भी इस तरह के इन्वेजन होते हैं, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो मदर ऑफ ऑल इवल्स वॉज इन्वेजन ऑफ इराक, कि इराक में जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उस वक्त के बाद सारा टेररिज्म बढ़ा, आइसिस आया वहां पे, आइसिल आया, अब आप ईरान के अंदर भी उसी तरह का अटैक कर रहे हैं। तो ये जितने भी उनके ग्रुप्स हैं जिनको टेररिस्ट ग्रुप बोला जाता है, 4H, वो सब और ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसके बाद में दोबारा से और ज्यादा इस तरह की बात होगी। तो ये जो सारी सीमाओं का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना बढ़ावा मिलेगा स्टेट्स की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का बड़ा सीधा भाषण था, और राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ा सीधा उन्होंने जब पहली बार वर्ड्स में ये कहा कि एंडलेस वॉर को एंड ऑफ वॉर होना चाहिए, और पहले उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन ईरा वॉर, तो मैं समझता हूँ कि ये बात और उनकी मुलाकात जो है ईरान के राष्ट्रपति से भी हुई डॉक्टर पजेशकियान से, और तब भी वो बातें हुई हैं। देखिए जब तक ये युद्ध नहीं रुकेंगे, जब तक देश जो है इस तरह का ये दुभातिया व्यवहार जिसको कहते हैं या डबल स्टैंडर्ड वो इसमें नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन सब लड़ाइयों से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, इनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का 3 पिलर्स वाला विजन दिया। आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के इस दौर में मध्य एशियाई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद और संतुलित पार्टनर के रूप में खुद को कैसे स्थापित कर रहा है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है।
3: हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, जब हम दो देशों के या भारत और किसी संगठन की ये संबंधों की चर्चा करते हैं तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत के लिए कोई भी वो देश या वो संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस बात की चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रश्न का उत्तर देने में कि भारत किसी क्षेत्रीय संगठन के लिए या भारत किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, तब जबकि शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये तमाम देश अस्तित्व में आए और भारत के साथ बहुत लंबे समय से इनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्राकृतिक इनके पास में तमाम रिसोर्सेज हैं, विशेषकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और जिस तरह की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको देखते हुए हमने वर्षों से देखा है कि न सिर्फ रशिया के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए ये देश जो है वो जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे, और वही भारत के साथ भी स्थिति है। लेकिन जब इन देशों के, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, इन देशों के जब हम सेंट्रल एशिया में जा करके व्यवहार को या इन देशों के साथ के पारस्परिक संबंधों को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी का जो रुख है वो एक ट्रांजैक्शनल रुख है इन तमाम देशों के प्रति। और वहीं जब हम भारत को, भारत की कूटनीति को देखते हैं तो भारत ने विगत 11 से 12 वर्षों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, विन विन रिलेशनशिप्स को कैसे आगे ले जाते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या किसी भी क्षेत्र की जो क्षेत्रीय अखंडता है, संप्रभुता है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए आप चाहे कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें काम करें, या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें काम करें, या जब आप

0: स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को आगे ले जाने की बात करें तो उसकी ओर देखें। तो इस बात का संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार के SCO समिट में चीन की मौजूदगी में दिया कि कनेक्टिविटी पर काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी देश की जो संप्रभुता है, विशेषकर उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका सम्मान करते हुए कनेक्टिविटी की दिशा में काम करना चाहिए। और ये अपने आप में चीन को एक बहुत बड़ा संदेश था। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत की जो कूटनीति है वो बहुत सकारात्मक कूटनीति है। भारत न किसी प्रकार का डेट क्राइसिस या डेट डिप्लोमेसी खेलते हुए किसी देश के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि उसके किसी भूभाग पर जाकर के कब्जा करे या वहां अपनी प्रेजेंस को असर्ट करे। न भारत इस प्रकार की कूटनीति करता है कि अपने फायदे की या अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करने की सोचता है जिसमें कि दूसरे देश का नुकसान हो जाए। न भारत इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा हो। और आज जो भारत की शक्ति की स्थिति है आनंद, वो हम सभी जानते हैं। कल अपनी आर्थिक शक्ति का तो भारत ने पूरे विश्व को परिचय दे ही दिया, तब जबकि अमेरिका के प्यूनिटिव मेजर्स और तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर रखा था, पश्चिम एशिया का संकट बहुत गहराया हुआ था और बाकी के जो देश है, विशेषकर पश्चिम के जो शक्तिवान देश है, उनका जो GDP ग्रोथ है रेट रहा वो 0.5 से लेकर 2% तक का रहा। हमने अपना GDP इस क्वार्टर का जो रिकॉर्ड किया है वो 7.8% का रिकॉर्ड किया है। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत ऐसा देश है, उसकी कूटनीति ऐसी, इस प्रकार की डायनेमिक कूटनीति है कि वो सभी मंचों पर एक सामंजस्य बना करके काम करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज आगे लेकर के जाता है। ये देश जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बात भारत करता है। भारत UNSC में तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके नेतृत्व की बात करता है और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई की बात करता है। इसके साथ ही भारत अपॉर्चुनिटीज की बात करता है कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में साथ में काम करने के लिए, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज को इंटैक्ट रखते हुए। तो यहाँ पर भारत इन तमाम देशों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे देश पर इस प्रकार का भरोसा इन देशों का है कि भारत किसी भी प्रकार की नकारात्मक कूटनीति में ना पड़ते हुए अपने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर काम करता है।
1: जी। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी दी। आइए सुनते हैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा।
2: The Prime Minister held a bilateral meeting also with the President of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the bilateral relationship. And the Prime Minister conveyed to President Pezeshkian how much he was looking forward to welcoming him in New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
1: त्रिगुणायत जी, कार्यक्रम अब अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां से कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं उस द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से कि भारत विकसित बनने की राह पर और आगे बढ़ सके। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री की महायात्रा थी, इसमें कौन से ऐसे पहलू आपको नजर आते हैं जो भारत को विकसित बनाने की तरफ और आगे लेकर जाएंगे।
3: देखिए, भारत हमेशा से विश्वास ये करता है कि अगर हम विकसित हो रहे हैं तो हमारा विकास जो है वो दूसरे जो देश हैं उनके साथ भी उसको साझा किया जा सके। तो जैसा अंशु जी ने बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहें, क्योंकि दुनिया बिल्कुल अब नए ढंग से चल रही है। टेक्नोलॉजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सो अफोर्डेबल एक्सेसिबल इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत प्रदान करता है, शेयर करता है दूसरे देशों के साथ में। तो जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 7.8% क्लॉक किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिश्ते हम बना रहे हैं वो तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, जनरल सिक्योरिटी है और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है। या तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं, भारत में मेक इन इंडिया की बात करते हैं, किस तरह से विकसित भारत को आगे बढ़ाएं, कैसे वसुधैव कुटुंबकम के जरिए दूसरे देशों को जो ग्लोबल साउथ के हैं उनको फायदा पहुंचाएं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह से भारत हमेशा सब देशों के साथ में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा साथ रहता है। तो मैं जब देखता हूं कि जब हम विकसित 2047 की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे देश हैं जो ग्लोबल साउथ के डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं, वो भी हमारे जो ग्रोथ है उसका लाभ उठा सके। तो मैं समझता हूँ यही भारत की एक नीति है जिसकी वजह से भारत को लोग

0: कुछ मित्र के रूप में देखते हैं।
1: जी, ताशकंद के ऐतिहासिक गलियारों से लेकर बिश्केक की चोटियों तक वक्त का पहिया एक बार फिर घूम चुका है। सदियों पहले जिस रेशम मार्ग पर भारत के ज्ञान, संस्कृति और मसालों की खुशबू महकती थी, आज 21वीं सदी का नया भारत उसी धरती पर अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अटूट सामरिक पहचान का परचम लहरा रहा है। उज्बेकिस्तान में मिला प्रधानमंत्री को सम्मान सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि एक कूटनीतिक जीत भी नहीं है, बल्कि मध्य एशिया के दिल में भारत के बढ़ते विश्वास की वो मुहर है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिगुणायत जी आपका, प्रोफेसर जोशी आपका और हमारे श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। दो दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलन की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना था। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिमों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमरीका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों से बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता

0: करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शेखोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और वर्षा का अनुमान है। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2027 में होने वाली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का यह टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। श्रीलंका से मेजबानी वापस लेने का कारण वहां क्रिकेट से जुड़े प्रशासनिक विवादों को बताया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the 5th tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Valendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. The death toll from the devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi today chaired the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. The Prime Minister appreciated the intensive 2-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. In Uttar Pradesh, former commander of

0: Western Air Command, retired Air Marshal Jitendra Mishra, has been appointed as the first CEO of the Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust in Ayodhya today. The appointment was announced after the meeting of the trust held at Mani Ram Das Chavni in Ayodhya under the chairmanship of Trust President Mahant Nritya Gopal Das. Recipient of Ati Vishisht Seva Medal and Vishisht Seva Medal, Air Marshal Mishra retired on the 30th of April this year. Prime Minister of Belgium, Bart Wever, will arrive in New Delhi tonight on a three-day visit to India. Prime Minister De Wever is being accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Fonken. This will be Prime Minister De Wever's first visit to India since taking office in February last year. He will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi tomorrow to discuss the entire spectrum of bilateral relations, including trade and investment, defence and security, and renewable energy. The Reserve Bank of India, RBI, today said its special US dollar Indian rupee USD INR forex swap facility has received forex inflows of over 136 billion US dollars till August 31, 2026. Of the total inflows, foreign currency non-resident bank deposits accounted for the overwhelming majority, amounting to 127.2 billion US dollars. In badminton, India's Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma advanced to the second round of the China Masters Super 750 tournament with straight game victories in respective singles events in Shenzhen, Guangdong province. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Bhavtarini. मुख्य समाचार। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को आपातकालीन सामग्री की पांचवी खेप भेजी। मृतकों की संख्या 1200 से अधिक हुई। 4000 से अधिक लोग अभी भी लापता। भारत ने रुपये को मजबूत करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय योजना द्वारा 136 अरब डॉलर जुटाए। मजबूत आर्थिक विकास को देखते हुए जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की संप्रभु रेटिंग को BBB प्लस से बढ़ाकर A- किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्ड डी वेवर 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ तनाव बढ़ने के बाद नई रणनीति अपनाने का संकल्प लिया। अब विस्तार से। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में राहत अभियान तेज कर दिया है और आपातकालीन सामग्री की पांचवी खेप भेजी है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राहत और बचाव सहायता लेकर पांचवा भारतीय विमान आज दोपहर नेपाल पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए कई उड़ानें भरी हैं। भारत ने विशेष तलाश और बचाव सहायता भी प्रदान की। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों तथा बहुपक्षीय साझेदारों से सद्भावना संदेश और भौतिक सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री राहत कोष में अब तक 7 अरब नेपाली रुपए से अधिक की राशि एकत्रित हो चुकी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1204 हो गई है, जबकि 4216 लोग अभी भी लापता हैं। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा में 31 अगस्त 2026 तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने के लिए कम कर दिया गया,

0: एप्सी एनबीबी जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओ एप्सीबी के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को बीबीबी प्लस से बढ़ाकर ए माइनस कर दिया है। एजेंसी ने इसके लिए देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि, निजी खपत और सरकारी निवेश के साथ साथ वित्तीय प्रणाली की मजबूती में सुधार का हवाला दिया है। आज एक आधिकारिक बयान में जेसीआरए ने कहा कि मजबूत निजी खपत और सरकारी निवेश के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7% से ज्यादा की तेज विकास दर बनाए रखी है। एजेंसी ने कहा कि सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास में मदद करने वाली नीतियां लगातार लागू की है। जेसीआरए ने बैंकिंग सेक्टर में हुए सुधार की ओर भी इशारा किया और बताया कि इस साल मार्च के आखिर में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन का अनुपात घटकर 1.8% हो गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आधिकारिक दौरे पर आज पोलैंड पहुंचे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की से बातचीत करेंगे। पोलैंड में अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद विदेश मंत्री यूक्रेन जाएंगे, जहां वे यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से बातचीत करेंगे। भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों और जीवंत आर्थिक गतिविधियों से चिन्हित हैं। भारत कनाडा विदेश कार्यालय की वार्षिक परामर्श बैठक आज नई दिल्ली में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन और कनाडाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के उप विदेश मंत्री अरुण थंगराज ने किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति, प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग और दोनों देशों के बीच मजबूत संस्थागत जुड़ाव का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच नई रणनीति अपनाने की चेतावनी दी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रिजई ने आज सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध के मैदान, कूटनीति और आर्थिक नाकाबंदी से निपटने के लिए तैयार की गई ईरान की नई रणनीति विरोधियों की नींव हिला देगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के अनुसार ये हमले अमरीकी सैन्य अभियानों के जवाब में किए गए हैं और इनमें 18 लोग मारे गए हैं। इन नए हमलों से 6 महीने से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए किए जा रहे कूटनीतिक प्रयास और जटिल हो गए हैं। ईरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर दबाव बनाए हुए है, जबकि अमरीका ईरान के बंदरगाहों को निशाना बनाकर नाकाबंदी कर रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार।

0: कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सऊदी अरब की राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी बहरी के एक तेल टैंकर पर ईरानी हमले में फिलीपींस के दो नाविक मारे गए। कंपनी ने अपने जहाज सिद्र पर हुई मौतों की पुष्टि की है। सऊदी अरब ने टैंकर को निशाना बनाने की ईरान की कार्रवाई की निंदा की है। कुवैत ने भी सऊदी टैंकर पर ईरानी हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन और समुद्री नौवहन, अपनी सुरक्षा तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए सीधा खतरा बताया। कुवैत ने तनाव बढ़ाने वाली सभी कार्रवाइयों को तत्काल रोकने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को आपातकालीन सामग्री की पांचवीं खेप भेजी। मृतकों की संख्या 1200 से अधिक हुई, 4000 से अधिक लोग अभी भी लापता। भारत ने रुपये को मजबूत करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय योजना द्वारा 136 अरब डॉलर जुटाए। मजबूत आर्थिक विकास को देखते हुए जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की संप्रभु रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्ड डी वेवर 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे और ईरान ने अमरीका के खिलाफ तनाव बढ़ने के बाद नई रणनीति अपनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll crosses 1,200 with over 4,000 people still missing. India draws $136 billion through forex swap scheme to bolster rupee. Japanese credit rating agency upgrades India's sovereign rating to A- from BBB+ amid strong economic growth. Belgian Prime Minister Bart De Wever to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. And Iran vows new strategy against US following latest escalation between two sides. And now the news in detail. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. We have a report.
3: The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The death toll from devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,204, with over 4,200 people still missing as rescuers battled rain and debris to trace those believed to be trapped in the tunnels along the course of the Bhote-Koshi River and underground powerhouses. The 11 rescue experts from India have moved close to Trishuli Bazaar along with specialized equipment. They are expected to commence their work from tomorrow in coordination with the Nepal Army. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Swati Rakheja for World News.
2: Finance Minister Nirmala Sitharaman met World Bank President Ajay Banga on sidelines of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting at Asheville in the United States. The two leaders discussed further strengthening the India-World Bank Group partnership. The discussions also covered a sector-based, programmatic approach to credit enhancement for infrastructure. In an interview after the talks,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हो गया है 10:31 और 1 सेकंड। आज के हर श्रृंगार में अर्पणा आप सभी का स्वागत करती है। प्यार भरा नमस्कार मेरा स्वीकार करें और आज का हर श्रृंगार शुरू करते हैं साजन फिल्म के गीत के साथ। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज हर श्रृंगार में।

दिल तो दोस्तों पागल ही होता है, प्यार तो करता है लेकिन कुछ कहने से डरता है। और हम सभी जानते हैं कि जब मोहब्बत होती है तो हर सुबह हमारी उसकी याद से शुरू होती है और हर रात उसी की याद से खत्म ही होती है। हर खुशी उसी से पूरी होती है और जब उसका जिक्र हो जाए ना कहीं भी दिन भर में, तो हमें लगता है कि बस आज तो हमारा दिन बन गया। और जब वो हर पल हमारे साथ होता है तो कोई भी पल हमारा अधूरा नहीं होता। ऐसा ही होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब इश्क हो, मोहब्बत हो, प्यार हो तो कैसा लगता है, बागी फिल्म से अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल भी कुछ ऐसा ही पूछना चाहते हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

10:45 और 8 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। हर श्रृंगार में आज अर्पणा है आपके साथ। पापा कहते हैं फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत आप सभी के लिए।

ना सवाल बन के मिला करो, ना जवाब बन के मिला करो, मेरी जिंदगी मेरा ख्वाब है, तुम मुझे ख्वाब मिलकर मिला करो। और ख्वाब बनकर मिलना तो तभी होगा ना जब नींद आएगी, और मोहब्बत हो तो ये नींद तो बस गायब हो जाती है। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ दिल फिल्म से ये गीत होगा, और आप खुद सोचिए जब नींद नहीं आती तो क्या होता है।

मेरी धड़कन तू मेरा सुकून है, तू मेरी धड़कन तू मेरा सुकून है, तेरा साथ हो तो हर लम्हा खूबसूरत है, तेरे बिना ये दिल अधूरा सा लगता है, तेरे बिना ये दिल अधूरा सा लगता है, तू मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी जरूरत है। और ये दिल तो धड़कता ही नहीं जब कोई प्यार करने वाला आपके पास नहीं होता, और जब प्यार करने वाला पास हो ना तो दिल धड़कता भी बहुत तेज है, ये तो सच है। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में धड़कन फिल्म से अगला गीत होगा। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार, 11:10 पर होगा मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण, और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत में एक बार फिर से मैं अर्पणा रहूंगी आपके साथ। 10:55 हो चुके हैं, फिलहाल लीजिए इस गीत का आनंद, और गीत के बाद जरूर सुनिएगा एफएम गोल्ड पर समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसकी प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: नमस्कार.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: Benchmark domestic stock market indices declines for the third straight session. Sensex falls nearly 400 points. Nifty settles below 24,000 level. World Bank chief Ajay Banga praises India's economic growth, says it has potential to grow beyond 8% despite global economic headwinds, and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 400 अंक गिरा, वहीं निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ. वर्ल्ड बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा ने भारत की आर्थिक विकास वृद्धि दर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इसमें 8% से अधिक विकास करने की क्षमता है. और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम घटे.

0: And before we take on our main stories, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं, अब जान लेते हैं शेयर बाजार की हलचल, यानी कि आज दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत लुढ़के। इससे लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 141 अंक लुढ़ककर 23,914 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले वैश्विक बाजार से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच बाजार गैप डाउन के साथ खुले। दोनों सूचकांक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे और पूरे दिन दबाव में नजर आए। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद उन्होंने नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई भी की।
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today, extending their losing streak to a third consecutive sessions. Sensex declined by 374 points to close at 76,570, while Nifty fell 141 points to settle at 23,914. In the broader market, Nifty Mid-Cap 100 index slipped 0.5%, while Nifty Small-Cap 100 index declined 0.4%. Elevated crude oil prices, rising global bond yields, and future inflation concerns dented the Lal Street sentiment.

0: Earlier, the markets opened with a gap down amid negative global cues. Both stock market indices traded within a narrow range and remained under pressure throughout the day. However, they paired some of the losses after the closing auction session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं. इनमें लगभग 1.5% की गिरावट आई. वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.3% का नुकसान दर्ज हुआ. इसके उलट अडानी पोर्ट्स में 1.5% से अधिक की बढ़त हुई. बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड और एनटीपीसी में 1% की तेजी आई और टाइटन 0.7% बढ़ा.
0: In the sectoral indices in the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, auto declined by 1.7%, IT declined 1.2%, and insurance as well as capital goods dipped 1.1%. In contrast, utilities rose 1.4%, housing finance as well as energy gained 0.7%, and power added 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,560 companies declined, 1,799 companies advanced, and 217 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा में बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे कमजोर होकर ₹94.98 पर बंद हुआ. प्रकाश, हम देख पा रहे हैं कि भू राजनीतिक तनाव जो है वो बढ़ रहा है इस बीच, और उसका जो एक पूर्ण संकेत है वो हम बाजारों पर हम देख पा रहे हैं. मगर अगर हम आज के संदर्भ में बात करें कि आज जो बाजार में गिरावट आई है, इस पक्ष के अलावा और क्या ऐसे पक्ष रहे और क्या ऐसे कारण रहे जिसने एक तरीके से पोषित किया इस गिरावट को?
2: देखिए, 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से, एक्चुअली कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से बाजार लगातार गिर रहा है, एक रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है. और आज तो जो मेन कारण है वो यही है कि दोबारा से एक युद्ध जैसी स्थिति आ गई मिडल ईस्ट में. मतलब कि अटैक्स और काउंटर अटैक्स दोबारा से शुरू हुआ. यू कैन सी इट हैपनिंग. उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे पड़ रहा है. कच्चे तेल का प्राइसेस पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा देता है जब कच्चे तेल का प्राइसेस बढ़ता है. और फिर आपका
1: जिसका सीधा इम्पैक्ट भी हम देख पाते हैं.
2: हाँ, जैसे जो इम्पोर्टिंग मुल्क होते हैं उन पे तो बहुत ज्यादा
1: इम्पैक्ट.
2: और हम लोग इम्पोर्ट करते हैं एनर्जी का, पूरा क्रूड का 85% हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है. और फिर आपका एविएशन, अब जैसे मैं रिपोर्ट्स अभी पढ़ रहा था कि जो अभी वार दोबारा एस्केलेट हो गई है ईरान और यूएस के बीच में, और उसका नतीजा ये कि फ्लाइट्स दोबारा डिसरप्ट होने लगी. जो फ्लाइट्स
1: यानी तेल से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं.
2: हाँ, तेल से एक तो तेल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू है. जो आपका रूट्स हैं, तो ये सारा बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है. इस अच्छी खबर के चलते बाजार गिरा. सुबह तो काफी गिरा हुआ था, फिर थोड़ी रिकवरी आई फॉर सेवरल टेक्निकल रीजंस. बाजार ने शायद, बिकॉज अभी तक बाजार जो था ना थोड़ा यूज तो हो रहा था मिडल ईस्ट में, ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई अब दोबारा से एस्केलेट नहीं होगा. लेकिन जो पिछले 2 दिन में और आज सुबह खासतौर पे जो हुआ वो फिर काफी चिंता का एक कारण बना बाजार के लिए. एंड वो आपके सामने जो हुआ
0: प्रकाश जी, ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज phenomenon in the market today. DIIs and FIIs were the net buyers in the market. We also saw positive sales data for the month of August by the auto sector. Yet, both the auto index fell by 1.7%. And of course, Nifty and Sensex also declined. How did that happen? Because, you know, FIIs and DIIs are the major buyers in the market. They move the market. Yet, we saw a decline today.
2: Well, Arjun, it's all the game of sentiment. You know, sometimes technicals tell you something. The overall sentiment is so dampening. There's no confidence, right? So when there's no confidence, the momentum gets lost. And, you know, the market comprises of mainly of trading. The traders, they are the nerve center of the market. They are the matchmakers.
0: We talk about retail segments and day traders?
2: No, not the day traders do

0: not comprise only retail, the big guys, the big institutional investors. So the and across the continent after continent, you don't find any sentiment. Even futures now, US futures don't give us a kind of comforting situation. So where do you go and hide, so to speak? So the technical data sometime may point otherwise, but the real fact is the sentiment is disrupted and it doesn't really augur well for the market.
1: We saw the IT index also fall, correct, in fact, today. What is the future for the IT sector? Because it's all linked to not only the European, but the US market as well.
0: Well, IT, when it comes to Indian IT, it is somehow conversely related to the entire AI play.
1: Also, the US dollar to the rupee, the exchange rate is very important in terms of their revenue.
0: Well, it provides them some kind of a advantage because of the currency arbitrage. But that said, it cannot be the only your profit center. You can't play on only on currency arbitrage. You need to have a bottom line. And the bottom line, so far as the IT is concerned, there was some kind of reassurance again emerging, as if the AI play, in which we have not, or at least Indian IT firms have not been able to participate aggressively, or really not to the extent we would like it them to do it. But somehow AI play is not seem to be, doesn't seem to be damaging so much as it was feared earlier. So let's see how it plays out in future.
2: प्रकाश, क्योंकि हम लोग क्षेत्र विशेष बात कर रहे हैं, तो ऐसे कोई चुनिंदा क्षेत्र आप बताना चाहें जो इस वक्त जो आम निवेशक हैं उनके लिहाज से निवेश करने के लिहाज से जो थोड़ा सा सेफ हो, इतनी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और अनसर्टिनिटीज हैं इस बीच भी.
0: आम निवेशक को बहुत सतर्क रहना चाहिए. उसको ऐसी कोई मजबूरी नहीं आज ही जाके.
2: सतर्क किस लिहाज से?
0: हाँ, सतर्क मतलब अब देखो क्या होता है, मेरे पास अगर 2 लाख रुपए पड़ा है, 4 लाख रुपए पड़ा है, मुझे कोई जल्दी नहीं कि जाके कल ही 4 लाख की खरीद कर लूं. मैं स्टैगर तरीके से खरीदूं, कभी 10,000 रुपए खरीदूं, फिर उस शेयर्स की प्रोफाइल देखूं. अगर मैं खुद करना चाह रहा हूँ, अगर म्यूचुअल फंड के रास्ते से मैं नहीं जा रहा, तो अगर मैं खुद करना चाह रहा हूँ और आम निवेशक हूँ और मेरे पास अगर 4 लाख रुपए पड़ा भी है, तो मुझे एकदम से नहीं जाना चाहिए. किसी ने बोल दिया, देख लिया, कुछ कर लिया, एंड आपको ये भी कई बार लालच आ जाता है कि यार मार्केट बहुत गिर गई है, हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी. आपको बड़े एनालिस्ट भी ऐसे मिल जाते हैं कि आई बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है. तो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी तो पिछले 2 साल से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन 2 साल से निफ्टी तो नहीं खिसका. तो यही सब दे, आपको जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो अब मैच्योर होने लगा है, वो भी हेडलाइन पढ़ता है, वो भी देख रहा है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है. तो वो आम निवेशक अब देखिए ना, वो जा रहा किस रास्ते से, सिप के रास्ते से जा रहा है, म्यूचुअल फंड के रास्ते से जा रहा है. दूसरी वजह जो हमारी मार्केट में ये भी है, जो अब लोगों को नजर आने लगी है, कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है, मार्केट में वो इम्पोर्टेंट अहम रोल प्ले करती है
2: जी.
0: और उस लिक्विडिटी को काफी हद तक सोख लिया जा रहा है. किससे? हमारे आईपीओ से. हमारे प्रमोटर्स रोज ब्लॉक डील्स हो रही हैं 7,000 करोड़ की. वो कौन बेच रहा है? हमारा प्रमोटर बेच रहा है. हमको ये लगता है कि एफआईआई छोड़ के भाग रहा है, लेकिन हमारा प्रमोटर जो है कहीं ना कहीं उसको भी लालच है, या ही वांट्स टू मेक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो वो भी बेच के अपना वो कर रहा है. तो इन द
2: प्रोसेस एफआईआईज तो आ ही रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हुए.
0: नहीं, एफआईआईज तो मोस्टली जा रहे हैं, ट्रेंड लाइन तो यही बता.
2: नहीं, जब आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज देख कर आते हैं.
0: ये हमारा जो प्रमोटर है तब का है, जो प्राइवेट इक्विटी के रास्ते से आया और फिर आईपीओ के रास्ते 6 महीने बाद ही वांट्स टू सेल इट. तो उसके उससे भी आपको सावधान रहना है भाई. अगर प्रमोटर का स्टेक नीचे जा रहा है, अंग्रेजी में बोलता है स्किन इन द गेम, तो प्रमोटर का स्किन इन द गेम है कि नहीं आपको देखना है. सारी चीजों में आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा.
1: Well, let's move on to some more news now from the macroeconomic front. In an interview, World Bank President Ajay Banga said India has the potential to grow beyond its current 7 to 8% trajectory. Mr. Banga described the country's latest economic performance as robust despite global energy pressures, trade uncertainty, and impact.

0: pressure earlier on rupee and in the forex market, the RBI and the government thought it fit to somehow give higher interest rate to the NRIs and then protect them from currency changes or depreciation. Oh, that involves cost. So it was not really, the banks would not come forward to take the risk of currency depreciation. So the RBI took upon itself telling banks that you go ahead, raise the funds, whatever the currency costs are there, bank will, RBI will bear it. And more than expectations, what happened was there was a huge response from the NRIs. They thought, because who will give them 6% plus interest rates and their in the foreign currency, and it is their home market, home country. So there's a huge response, and this is how it worked. Let's hope that things will now we'll see somehow stabilize in the forex market.
1: अन्य खबरों में, श्रोताओं, जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरन रेटिंग को BBB प्लस से बढ़ाकर A माइनस कर दिया है। एजेंसी ने इसके लिए देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि, निजी खपत और सरकारी निवेश के साथ साथ वित्तीय प्रणाली की मजबूती में सुधार का हवाला दिया है। आज एक आधिकारिक बयान में JCRA ने कहा कि मजबूत निजी खपत और सरकारी निवेश के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7% से ज्यादा की तेज विकास दर बनाए रखी है। एजेंसी ने कहा कि सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास में मदद करने वाली नीतियां लागू की है। प्रकाश जी, इसकी क्या महत्ता है भारत के लिए?
0: जैसे इट्स अ काइंड ऑफ एंडोर्समेंट हुई है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, जैसे वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा ने जी ने कहा, तो एक तरह के एंडोर्समेंट है कि हमारे मैक्रोज जो है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो इन प्लेस हैं, कोई वो है, तो इसलिए तो इम्प्रूवमेंट हुई हमारी सोवरेन रेटिंग में। इससे अच्छा संकेत जाता है, खास तौर पे उस टाइम जब दिक्कतें आ रही हैं इधर से उधर से।
2: In more news, India's current account deficit widened to $4.2 billion, or 0.5% of GDP, in the first quarter of the current financial year. It was 0.4% of GDP in the same quarter a year ago. According to RBI preliminary data, the merchandise trade deficit rose by around $17 billion to over $86 billion during the same period. On the other hand, net services receipts increased by $3.5 billion to over $51 billion. Personal transfer receipts, mainly remittances from Indians working overseas, rose around $10 billion. On the investment front, FDI inflows improved to $6.1 billion. However, foreign portfolio investors have pulled out over $9.5 billion, compared with an inflow of over $1.5 billion in the same quarter last year. During the quarter, India's foreign exchange reserves depleted by $8.1 billion on the balance of payments basis. Your brief comments on this. We know that FDI investments have actually gone up. FPI have been withdrawing, which is why it has been affecting the Sensex Nifty to some extent, offset by the DIIs. But do tell us about our current account deficit because of what's happening to the Strait of Hormuz.
0: Well, Arjun, as per the data that you read out, 0.5% of GDP current account deficit, even after widening, it's not an alarming thing. It's manageable. Given the size of our economy, given the growth potential, growth that we are witnessing, and the potential of growth that is around, so this much any developing country, for any developing country with appetite for growth, this kind of a current account deficit is not a kind of a cause of concern.
1: आइए अब रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4% गिरा, जबकि जापान का निकेई 2.8% नीचे आया। आर्थिक मोर्चे पर डेटा और सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार दक्षिण कोरिया का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त में सालाना आधार पर 3% से अधिक बढ़ा, जो जुलाई में 2.8% था। वहीं कोर महंगाई, जिसमें खाने पीने की चीजों और ऊर्जा की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता, अगस्त में सालाना सालाना आधार पर लगभग 3.5% बढ़ी, जो जुलाई में 2.5% से

0: ठीक थी प्रकाश जी. कॉस्पी 4% गिरा, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, और निके में 2.8% की हमने देखी कि गिरावट दर्ज की गई है. अगर हम बात कॉस्पी की करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई है उसमें भी जो है बहुत ही इम्प्रेसिव तो ऐसा कुछ नहीं रहा है. तो किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या ये वही जियोपॉलिटिकली जो चीजें हैं वो केवल वही इम्पैक्ट कर रही है?
1: कंटेजियस है ना ये, हर तरफ गिरावट ही गिरावट है. कहीं तो आपको हरा नहीं नजर आ रहा, आप पूरा भूगोल देख लीजिए, हर तरफ लाल ही लाल नजर आएगा.
0: अपनी तरफ भी इनकी अपनी तरफ भी महंगाई.
1: तो हम लोग तो मिडल में रहते हैं. आप सुबह एशिया देखिए, फिर आप हमारे हम भी एशिया में आते हैं, एशियन मार्केट, उसके बाद यूरोप चले जाइए, फिर आप अमेरिका चले जाइए, हर जगह लाल ही लाल नजर आएगा. तो आज तो लाल ही छाया हुआ है. उसके रीजंस हैं, मैं अर्जुन जी से पहले बात कर रहा था कि जो स्क्रिप्ट है, जब से ये वार चली है स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रही है. एक तरह के फंसा हुआ है पूरा मार्केट. और कुछ हालांकि कुछ मार्केट से कोरिया वॉज डूइंग वेल अ फ्यू मंथ्स अगो, अ फ्यू वीक्स अगो, थैंक्स टू एआई प्ले. तो लेकिन अभी तो सिचुएशन कुछ खराब ही है ना.
0: तो 8% तक की बढ़त देखी है.
1: हाँ, तो उनके लिए तो गिरावट है कोई, लेकिन आज जो गिरावट है कोई अचंभा थोड़ी है. कोई बड़े की एक्सपर्ट्स की जरूरत भी नहीं है कि बोलने के लिए. तो इट्स सो ऑब्वियस.
0: नहीं, शायद सीबीआई का जो डेटा आया है वो भी.
1: उन्हें सीबीआई डेटा क्या बता रहा है कोरिया में क्या, वो मैंने जैसे मैं अर्जुन जी से बता रहा था कि सेंटिमेंट जो होती है ना वो मैटर करती है. जो भाव है ना, खबरों का जो भाव इतना ओवरवेलमिंग है,
0: प्रवाह है
1: भाव है, उसने आपको सब स्वे अवे कर दिया सब कुछ.
0: आगे बढ़ते हैं. भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक जुटकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्टॉक बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी. कल G20 सम्मेलन में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई.
2: Moving on to the group, global crude oil market. Global crude oil prices fell today. Brent crude was trading 1% down at $93.73 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 1% lower at $89.24 per barrel when reports last came in. How concerned are we about what's happening when it comes to crude oil prices spiking?
1: That's the most important concern. It's the gravest concern for us and for the rest of the world. And I think some reports suggested that we have increased our strategic oil reserves, and countries are going for that. And let's see how it plays out. I think it's a challenge again. We thought ki things are easing. But now it has again resurfaced. It's a matter of concern, sure enough.
0: सराफा बाजार में सोना 1.3% की गिरावट के साथ 151,184 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 0.9% लुढ़ककर 228,396 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए, मेरे और अर्जुन के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices declined for the third straight session. Sensex falls nearly 400 points. Nifty settles below 24,000 level. World Bank Chief Ajay Banga praises India's economic growth, says it has potential to grow beyond 8% despite global economic headwinds, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

11:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 7.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत, और आज आपके संग है अर्पना। शुरुआत करते हैं गीत मेरे मनमीत की खयाम के संगीत के साथ। आवाज़ है लता मंगेशकर और तलत अजीज की, फिल्म का नाम है बाजार, और इस फिल्म के गीत के बाद अगला गीत होगा आर डी बर्मन का संगीत है, आशा जी की आवाज़ है और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, और इस फिल्म का नाम है इजाजत। तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, गीत मेरे मनमीत में संग है आपके अर्पना। एक बार फिर से घड़ी मिला ले, 11:41 और 42 सेकंड।

11:51 और 55 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 MHz पर। येसुदास की आवाज होगी, हेमलता का साथ होगा, रविंद्र जैन का ही संगीत है और आप ही के लिखे बोल है। फिल्म चित्त चोर से ये गीत है।

11:56 और 8 सेकंड हो चुके हैं। गीत मेरे मनमीत में आज का आखिरी गीत होगा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा से। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार अर्पना को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर देते हुए लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल कर स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन तथा इसके प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवा विमान कल राहत और बचाव सहायता लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने कल संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमरीका, जापान, एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी में जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकेन भी आ रहे हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की यह भारत की पहली यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्र, सिक्किम

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन सकते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आज अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूँ निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ अल्फाज। तेरी मेरी जिंदगी का सफर एक हसीन गीत जैसा है, तेरी मेरी जिंदगी का सफर एक हसीन गीत जैसा है, जिसमें हर मोड़ पर प्यार का एक नया संगीत बरसता है।

गुनगुनाओ तो एक नया एहसास जाग उठता है, तुम गुनगुनाओ तो एक नया एहसास जाग उठता है। तेरी मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा एक साज बन उठता है।

रुक जाए वक्त वहीं जब तुम आंखें झुकाती हो, रुक जाए वक्त वहीं जब तुम आंखें झुकाती हो, अपनी पलकों के साए में तुम पूरी कायनात छुपाती हो।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लोग लिखते होंगे किताबों में मोहब्बत के किस्से, लोग लिखते होंगे किताबों में मोहब्बत के किस्से, हमारी कहानी तो जमाने की रग रग में बसी है।

झुक जाए सारा जहां जिसके आगे, झुक जाए ये सारा जहां जिसके आगे, मेरी मोहब्बत तो बस तेरी एक नजर के आगे हारना चाहती है।

मगर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी हम लौटेंगे कुछ ही समय बाद 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुहाने के साथ, क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की और जोर देकर कहा कि इस शिखर सम्मेलन से उपजे कार्रवाई योग्य और संबद्ध कार्य बिंदुओं को निरंतर समीक्षा और सीखने की प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की कार्रवाई जरूरी है। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल कर स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की पांचवी उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। विनाशकारी बाढ़ से 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने के लिए कम कर दिया गया। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष मंत्र नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse of an avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Birendra Shah, while speaking in Parliament yesterday, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. The death toll from devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash flood stands a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivers for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. In Uttar Pradesh, former commander of Western Air Command, retired Air Marshal Jitendra Mishra, was appointed as first CEO of Sriram Janmabhoomi Kshetra Trust in Ayodhya yesterday. The appointment was announced after the meeting of trust held at Maniram Das Shivani in Ayodhya under the chairmanship of Trust President Nahant Nritya Gopal Das. Recipient of Ati Vishishta Seva Medal and Vishishta Seva Medal, Air Marshal Mishra retired on 30th April this year. He will be responsible for overseeing the administrative functioning of the trust and handling key operational responsibilities related to the Sri Ram Temple complex. Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will arrive in New Delhi today on a three-day visit to India. Prime Minister De Wever is being accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Franken. This will be Prime Minister De Wever's first visit to India since taking office in February last year. He will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi today to discuss the entire spectrum of bilateral relations, including trade and investment, defence and security, and renewable energy. External Affairs Minister S. Jaishankar reached Poland yesterday on an official visit aimed at enhancing bilateral ties. India's ambassador to Poland, Nita Bhushan, welcomed the minister at the airport in Warsaw. During his visit, Dr. Jaishankar will hold talks with the Poland Deputy Prime Minister, Radosław Sikorski. After concluding his engagements in Poland, the External Affairs Minister will travel to Ukraine, where he is scheduled to hold talks with his Ukrainian counterpart, Andrei Sybiha. In women's cricket, India will take on Hong Kong in the second Group A match in the 2020 Asia Cup 2026 at Dubai International Stadium in UAE today. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. The women in blue opened their campaign with a convincing 94-run win over Thailand in Dubai on Sunday. A victory over Hong Kong will help the Harmanpreet Kaur-led side secure a place in the semi-finals of the ongoing 8-team tournament. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, कार्यक्रम वही आपको मनपसंद जिसका नाम है गीत सुहाने। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, आग लगा दो चिलमन में, न ये झांके न वो झांके।

उनके हाथों में मेहंदी लगाने का फायदा तो ये हुआ, उनके हाथों में मेहंदी लगाने का फायदा तो ये हुआ कि रात भर उनके चेहरे से हम जुल्फे हटाते रहे।

कभी कभी लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी थी, कभी कभी लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी थी, मगर इस दिल की जिद के आगे मेरी चली ही कहां थी।

कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। धड़कने धड़कने दिल की सुनती रहें और वक्त धीरे धीरे ढलता रहे।

तुम्हें देखा तो लगा जैसे फूलों को मुस्कुराने का सलीका आ गया, तुम्हें देखा तो लगा जैसे फूलों को मुस्कुराने का सलीका आ गया, जो खोई हुई थी सदियों से बहारों को वो जीने का सलीका आ गया।

बहुत दिनों से दबा रखी है जो धड़कने सीने में, बहुत दिनों से जो दबा रखी है धड़कने सीने में, आज उन अनकहे जज्बातों को चलो गीतों से सजाते हैं।

तुम गुजरते हो जहां से वो राहें भी गुनगुनाती हैं, है लगता है कायनात की हर खूबसूरती तुम पर ही आकर रुकी हो।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 2:10 से फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है।

0: उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की और जोर देकर कहा कि शिखर सम्मेलन से उपजे कार्रवाई योग्य और समयबद्ध कार्य बिंदुओं को निरंतर समीक्षा और सीखने की प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की कार्रवाई जरूरी है। भारत से नेपाल पहुंची 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। बेल्जियम की प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रांकेन भी हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की यह भारत की पहली यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। भारत ने यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के एशविली शहर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और उन्नत प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच के प्रयास में अलग से कई द्विपक्षीय बैठकें की। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। 2020 महिला एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन बनाए। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a 5th tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday.

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 5 सेकंड। ये समय है कार गुजर गया। अब खत कहाँ लिखता है कोई, वो जमाना तो गुजर गया। कागज पर जज्बात सजाने का वो फसाना तो गुजर गया।

शीशा टूटे तो पूरी दुनिया सुनती है, शीशा टूटे तो उसकी झटक को पूरी दुनिया सुनती है, मगर जब दिल टूटता है तो बस एक बहता हुआ आंसू ही बहुत कुछ कह जाता है।

कहते तो हैं कि फासले कभी मोहब्बत को कम नहीं करते। तुम लाख दूर रहो पर रहोगे तो दिल के पास ही। दुआ है कि वक्त के साथ तुम बदलना नहीं।

एक कांच का टुकड़ा भी चुभता है तो दर्द होता है, एक कांच का टुकड़ा भी चुभता है तो दर्द होता है। तुमने तो जज्बातों से भरा पूरा दिल ही बिखेर दिया। कहो तो कि उन बिखरे टुकड़ों पर पैर रखकर क्या सुकून मिला तुम्हें।

दोस्तों अब समय है हमारे भी जाने का और स्टूडियो में आ चुके हैं भारती अगला कार्यक्रम लेकर। कार्यक्रम होगा हमराही जो 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ

0: कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रांकिन भी हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद पहली बार भारत पहुंचे प्रधानमंत्री डी वेवर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत ने यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के एशविले शहर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और उन्नत प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच के प्रयास में अलग से कई द्विपक्षीय बैठकें की। आर्थिक और वित्तीय मामलों के यूरोपीय आयुक्त वाल्डिस डोम्ब्रोस्किस के साथ बातचीत में दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण 4 सितम्बर को किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट के जरिए 4 सितंबर की सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। श्री नारायण ने कहा कि EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और यह भू समकालिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। 2020 महिला एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन बनाए। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a 5th tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to the affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Birendra Shah, while speaking in the Parliament yesterday, thanked India for its quick response to the

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और आप सबका भी मैं स्वागत करती हूं कार्यक्रम में। किसी खास इंसान का जिंदगी में आना कभी कभी सचमुच रोशनी जैसा होता है। उसके होने से वही रास्ते आसान लगने लगते हैं, वही रातें खूबसूरत और वही जिंदगी थोड़ी ज़्यादा अपनी लगती है।

रात के इस सन्नाटे में कभी कभी दिल को सिर्फ इतना भरोसा चाहिए कि कोई अपना है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप वही है जहां साथ पाने की खुशी से ज्यादा किसी के साथ होने का सुकून महसूस हो।

दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, किसी खास इंसान की याद मन में किसी कोने में चुपचाप चलती रहती है और रात होते ही वही यादें और गहरी हो जाती हैं, जैसे खामोशी में कोई अपना धीरे से दिल को पुकार रहा हो।

कुछ रिश्तों में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल खुद रास्ता ढूंढ लेता है। सच्ची मोहब्बत दूरी से कम नहीं होती, बल्कि कभी कभी दूरियां ही एहसास करा देती हैं कि कोई हमारे लिए कितना खास है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कुदरत और मोहब्बत का रिश्ता भी कितना सुंदर है। पहाड़, हवा, बारिश और चांदनी, सब कुछ तब और खूबसूरत लगता है जब दिल में किसी की याद का उजाला हो।

दिल को खुश रखने के लिए हमेशा बड़ी खुशियों की जरूरत नहीं होती है। कभी किसी की मुस्कान, कभी कोई पुरानी याद और कभी साथ बिताया एक छोटा सा पल ही जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। बस दिल में प्रेम का संगीत बना रहता है।

रिश्तों में रूठना भी कभी कभी प्यार का हिस्सा होता है, लेकिन मनाने वाला दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है। जहां अहंकार छोटा और रिश्ता बड़ा हो, वहां छोटी सी नाराजगी भी प्यार को और गहरा बना देती है।

0: कुछ सपने आंखें खुलने के बाद भी दिल में बने रहते हैं। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही है, एक खूबसूरत एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल है शायद, मगर महसूस किया जा सकता है।
1: एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनो।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
2: तुमसे नहीं,

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

उदासी की रातों में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे की जो उसे भीतर से संभाल सके। कोई पुरानी याद, कोई प्यारा चेहरा या किसी अपने की आवाज, कभी कभी इतना ही दिल को फिर से मुस्कुराने के लिए काफी होता है। दोस्तों, रात गहरी है, हवाएं खामोश हैं और यादों का कारवां धीरे धीरे दिल के करीब आ रहा है। आप जहां भी हैं, जिसे किसी को याद आपके चेहरे पर मुस्कान ला रही है, उस एहसास को आज की इस रात संभाल कर रखिए, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसासों से जिए जाते हैं। और मैं आपसे मिलूंगी 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। और छोड़ के जा रही हूँ आपको इस प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल हैं। 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच फंसे लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। भोटेकोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस आपदा में 583 विदेशी नागरिक लापता हैं। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टरों और जमीनी मार्गों से अब तक 11,993 लोगों को बचाया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रांकेन भी हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद पहली बार भारत पहुंचे प्रधानमंत्री डी वेवर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिनमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलू पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट के जरिए 4 सितंबर की सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और शिखर बैठक के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब रूस यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर काम करने को तैयार हों। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि अमरीका का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छा संबंध बने। उन्होंने तर्क दिया कि बेहतर संबंध व्यापार के लिए भी लाभकारी होंगे। 2020 महिला एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन बनाए, जबकि इंडोनेशिया की पारी 18 ओवर 3 गेंदों में सिर्फ 49 रन पर सिमट गई। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना हांगकांग से होगा। भारत पहली बार हुंडई विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज की मेजबानी करेगा। ये प्रतियोगिता 5 से 9 सितंबर तक अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में आयोजित की जाएगी। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday. The aircraft carrier, an 11-member rescue team, is equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in the northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in the operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah, while speaking in the parliament yesterday, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue team continues searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. The death toll and from devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share the responsibility for mitigating its impacts. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing a similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Japan Credit Rating Agency, JCR, has upgraded India's long-term foreign currency and local currency issuer ratings by one notch from BBB+ to A- while maintaining the stable outlook. JCR has also raised India's country ceiling by one notch to A. Finance Ministry said that the upgrade reflects India's solid economic growth, the effectiveness of economic policies in strengthening the foundations for growth, and the improved soundness of the financial system. The ministry said that the upgrade comes against the backdrop of a challenging global environment and underscores the continued strengthening of India's economic fundamentals, supported by sustained growth, effective economic policies, improved fiscal quality, and a stronger financial system. India has unequivocally condemned the act of vandalism of a century-old Hindu temple in Pakistan. In response to media queries regarding the reported demolition of the temple in the village Siraj, Narowal, Pakistan, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal termed the vandalism against a century-old minority place of worship as reprehensible. He said the apparent apathy of authorities and failure to protect the century-old temple is alarming. The India Meteorological Department has issued red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. Heavy to very heavy rainfall will prevail over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbha and West Uttar Pradesh today. In women's cricket, India will take on Hong Kong in the second Group A match of the 2020 Asia Cup 2026 at Dubai International Stadium in UAE today. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. The women in blue opened their campaign with a convincing 94-run win over Thailand in Dubai on Sunday. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की नई दिल्ली फिल्म के इस गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और उनके साथियों ने, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म नया दौर से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार ओपी नायर।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: हजार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म मौसम से भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार गुलजार, संगीतकार मदन मोहन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म आखिरी गुलामी से आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज में, संगीतकार बप्पी लहरी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म आग और शोला से लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन।

समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए, 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी भारत दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार यह यात्रा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करने तथा व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण साब बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल और तिब्बत में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। भोटेकोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस आपदा में 583 विदेशी नागरिक लापता हैं। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टरों और जमीनी मार्गों से अब तक 11,993 लोगों को बचाया है। नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्योरांग काउंटी में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 541 लोग लापता हैं। नेपाल को एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदारों ने सहायता का आश्वासन दिया है। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और शिखर बैठक के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब रूस यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर काम करने को तैयार हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि अमरीका का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध बने रहें। उन्होंने तर्क दिया कि बेहतर संबंध व्यापार के लिए भी लाभकारी होंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। महिला एशिया कप 2020 में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। यह मैच यूएई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivers for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations, as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a three-day visit to India. Prime Minister De Wever is being accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in the northern and central Nepal on the 26th of last month.

0: एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। कृष्ण प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चे संबंधों में विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ भाव सबसे बड़ा धन है। आज अपने भीतर प्रेम और करुणा जगाइए और किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशी जरूर बांटिए।
1: यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है, तब गोपियां सुध बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी, मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण सी गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी बजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी प्रीत हमारी।

प्रकृति का यही संदेश है, कोई रात हमेशा नहीं रहती। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, इसलिए बीती हुई परेशानियों को वहीं छोड़ दीजिए और आज को एक नई उम्मीद के साथ अपनाइए। हर सुबह जिंदगी हमें फिर से शुरुआत करने का अवसर देती है।

0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं।

0: सुबह की पहली किरण जैसे धरती को जगाती है, वैसे ही हमारे भीतर का विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कदम छोटे हो या बड़े, जरूरी ये है कि वे रुके नहीं। आज का दिन कल से बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाइए।
1: उठ सबके कदम, देखो रंग।

जब प्रकृति जागती है तो उसकी हर आवाज जीवन को उत्साह बन जाती है। कोयल की मीठी बोली हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्द भी किसी के दिन को सुंदर बना सकते हैं। आज कोशिश करें कि आपकी आवाज में मिठास और आपके व्यवहार में अपनापन हो।